ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोवाट्स तक सवाई तुम आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश से बुझ सकता है। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ हन तरह थोड़ी देर में तुम हमेशा भगत करम साहब के बुधा तैखा तफसरो प्रोग्राम नशर कर वो जैन तो खबर कड़ी खास खास खबरों प्रोग्राम के आखिर में नशर कई वेंदियों यहाँ प्रोग्राम की तफसील तुम आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा हिंसर अचो तो भगत करम साहब के बुधूँ।

स्वीडन गोथेनबर्ग में 17 मई 2026 ते पहुतो। पंजन मुल्कन जी यात्रा दौरान यो संदस टियों मुल्क हो। जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हवाई जहाज मुल्क जी एयर स्पेस में पहुतो त स्वीडिश ग्रेपसन लड़ाकू हवाई जहाजन खेस स्कॉट कयो। संदस स्वीडिश सानी श्री उल्फ क्रिस्टनसन हवाई अड्डे से संदस पुरजोश आजा कई ए संदस रस्मी आजा कई हुई। भारतीय कौम पिण भारतनाट्यम डांस जरिए प्रधानमंत्री जी आजा कई। एक खास कार्रवाई तहत क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया स्वीडन की जी है तें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजो जो स्वीडन जो तमाम ही कदीम एध में वध बेहतरीन इज्जतदार अवार्ड है जैसे 18वीं सदी में शुरू किया वो। यो अवार्ड स्वीडन जो वध में वध इज्जतदार अवार्ड है जो पड़े मुल्क के सरकार के सदन खास अवामी सेवा लाए ए स्वीडन से रिश्तन के सगारो बनने लाइ दिनों वो है। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया की कार्रवाई से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्राना अदा किया ए स्वीडन वासन जहा पिण इन इज्जत लाए उनो इनाम अवार्ड जो है सो 104 बिलियन भारतवासियों के डेडिकेट किया जिन भारत ए स्वीडन मंज दोस्ती के बरकरार रखो है। प्रधानमंत्री ध्यान से कर रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार भारत ए स्वीडन मंज इतिहासिक ए सकाफती लागापन जी पक्का है ए बिन्हीं मुल्क मंज बिन्हीं मुल्क के अवाम मंज पुरजोश रिश्तन के एक ट्रिब्यूट है श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर्यों एशियन अगवान है जैसे इन अवार्ड से नवाजे वो है। स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टनसन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बे के सुखणी पण डिन तीन सुखड़न में गुरुदेव टैगोर से वाबस्ता शूं। स्वीडन के प्रधानमंत्री जी शन तैमें वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हथ अखरी लिखल एपिग्राम्स तेजी रिप्लिकास हुई होड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्रिश्चन के जेके सुखड़ी डिन्हीं तैमें एक खास हथ से तैयार कल शांति निकेतन की बैग हुई जैमें गुल फुल लगल हा छोजो गुरुदेव जो अकीद हो कि मकानी कारीगरन के ताकतवर बनाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री से गडोग क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया से पिण घन मुद्दन से गालू क्यों। इन अलावा प्रधानमंत्री राजा कार्ल 16 गुस्टाव ए रानी सिल्विया से पिण मुलाकात कई ए राजा के संदस 80 जन्मदिन जो वाधाय पण डिन बिन्हीं अगवान भारत स्वीडन लागापन के लागापन जो जायजो वरतो। इन अलावा घणन ही खेत्र में वधंदड़ बाहमी लागापन के पण मनो से खेत्र सीड़प इनोवेशन ग्रीन ट्रांजेक्शन उभरदड़ टेक्नोलॉजी बचाव ए सुरक्षा डिजिटलाइजेशन एसएमईस स्पेस खोजना तैलीम सकाफत ए माणन जी माणन सा मट सटा इन कारण मनो त भारत स्वीडन लागापन के हिकमत अमली भाईवारी में तब्दील किया वो या हिकमत अमली भाईवारी चैन मुख्य अनासर से हलंदी सो है दायमत ए सुरक्षा ला हिकमत अमली गाल अलावा इंदड़ पीढ़ी की माली भाईवारी उभरदड़ टेक्नोलॉजी ए भरोसेमंद गांढ़ापो बिन्हीं घणन ही इलाकई ए आलमी मुद्दन से पिण वीचार की मट सटा कई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दहशत खिलाफ स्वीडन के मजबूत हिमायत की सराह कई बिन्हीं गान बीहर दोहरा तो अमन दायमत रिसालेंट सप्लाई चेन्स ए बरकरार रहंदड़ मालीवाद के हिमायत दींदा रहंदा। श्री मोदी जाचो तो भारत ए यूरोप बई गड़जी कम करे रिसालेंट ए डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स के

अढ़ सघंदा आहिनि। हुन यूरोपियन हुनरी अॻवाननि खे भारत में सीड़प करण लाइ सॾु ॾिनो, जहिड़ो की टेलीकॉम ऐं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐं डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग। इन खां अलावा ग्रीन ट्रांज़ेक्शन ऐं साफ़ तवानाई, बुनियादी ढांचो, मोबिलिटी ऐं शहरनि में तब्दीली आणणु, तंहिंखां सवाइ सिहत सेवा ऐं लाइफ साइंसिस। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सजन तोखे खबर कहड़ी।

सजण तोखे ख़बर कहिड़ी सामिनी प्रोग्राम खणी करे मुंहिंजी ख़िस्मत में हिकु दफ़ो ॿीहर खां हाज़िर थिया आहियूं। जंहिं बि मुल्क में मंशियात यानी कि ड्रग्स जो वाहिपो थींदो आहे, उते जेको नौजवान पीढ़ी आहे, नौजवान समाज आहे, सो बर्बादु थी वेंदो आहे ऐं मुल्क अॻिते तरक़ी करे कोन सघंदो आहे। हीअ असांजे हथ में ख़बर आहे सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल, जंहिंजो एडिटर आहे, जंहिंजो टाइटल आहे सिंध में मंशियात जो नेटवर्क। सिंध में ड्रग्स सां वाबस्ता एडिटोरियल में लिखियलु आहे कि सिंध में विकिरो थींदड़ मंशियात जे हवाले सां अनमोल उर्फ पिंकी नेटवर्क वाइको थियो आहे। सिंध में मंशियात हर सतह ते मौजूदु आहे, तंहिंजा वाइपेदार बि हर जमार जा माण्हू आहिनि। गुज़िर केतिरनि सालनि खां सिंध में ड्रग्स जो कारोबार हली रहियो आहे, तंहिंमें लॻभॻि हर तबिके जो माण्हू शुमारु आहे ऐं समाज में मंशियात जहिड़ो ज़हर पकड़ण में घणाई माण्हू पंहिंजो रोल अदा करे रहिया आहिनि। तंहिंमें अनमोल उर्फ पिंकी जी गिरफ़्तारी खां पोइ इहा ख़बर पई आहे त इहो नेटवर्क तमामु ई घणो वसी ऐं ख़तरनाक आहे ऐं पिंकी जहिड़ा ॿिया घणाई किरदार आहिनि जेके इन धंधे में सालनि खां वठी जुड़िया पिया आहिनि पर कानून जी पकड़ खां परे आहिनि। सिंध में ड्रग्स स्कूलनि, कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी शागिर्दनि ताईं पहुची चुकी आहे, तंहिंमें आइस जो नशो तमामु घणो ख़तरनाक आहे, जेको इंसानी ज़िंदगीअ खे ॻारे थो छॾे। एडिटोरियल में अॻिते लिखियलु आहे कि पिंकी जी गिरफ़्तारी खां पोइ जेके तफ़सील आहिनि से हलाक कंदड़ आहिनि। पिंकी जा 800 ग्राहक आहिनि जेके ख़ासि ड्रग्स वठंदा आहिनि। हिकु महीने में 2 करोड़नि जी ड्रग्स जो विकिरो कंदी आहे। गुलिस्तान जोहर ऐं पुलिस जी कार्रवाई खां पोइ पिंकी जा अकाउंट संभालींदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वियो। कोकीन क्वीन जे अॻूणे मुड़ुस जे ॻुझे इदारे सां संदसि लाॻापा रहिया ऐं संदसि गिरफ़्तारी खां पोइ उन्हनि माण्हुनि जा नाला अची रहिया आहिनि जेके ख़ासि ड्रग्स वठंदा रहिया, तंहिंमें के मशहूरु शख़्सियतूं पिणु आहिनि। पर सुवाल इहो आहे त पिंकी खे एतिरी छूट कंहिं ॾिनी जो इहे वॾी आज़ादी सां पंहिंजो नेटवर्क कराची सूधो सॼे सिंध में पई हलाईंदी रहे। सिंध में मंशियात विकिरो कंदड़नि खे जेका छूट मिलियल आहे, इहा सिंध जे नौजवाननि खे तबाह करे रही आहे, जंहिं सबबु हज़ारे नौजवान पंहिंजूं ज़िंदगियूं तबाह करे रहिया आहिनि। इन सॼे नेटवर्कर में न फ़क़ति पुलिस पर कानून लागू कंदड़ इदारनि जा अहलकार, वकील ऐं साफ़ी पिणु शुमार आहिनि। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटर ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो सिंध में मंशियात जो नेटवर्क।

क्लाइमेट चेंज सबब घणी तब्दीलियूं अची वियूं आहिनि। हेॾां वरी एल नीनो जो इफेक्ट हली रहियो आहे, तंहिं सां वाबस्त सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल शाया थियो आहे जंहिंजो टाइटल आहे अणलभ जानवरनि जो शिकार। लिखियलु सिंध में झंगली जीवत सदाई बंदूकुनि वसीले शिकार थींदी रहंदी आहे। नायाब नसल जा हिरण, फाड़ा ऐं ॿिया जानवर शिकारी मारण में देरि कोन कंदा आहिनि। जॾहिं त सिंध में नायाब नसल जे जानवरनि जे शिकार ते पाबंदी आहे, तंहिं हूंदे बि न फ़क़ति शिकार थो थिए पर शिकारियुनि ख़िलाफ़ का कारवाई पिणु नथी थिए। ईअं थो लॻे ॼण शिकारियुनि खे नायाब नसल जा जानवर माराइण जो लाइसेंस मिलियल आहे। इहो सिलसिलो लंबे अरसे खां आहे। थड़ वारे पासे दुर्लभ हिरणनि जो शिकार साल में घणाई भेरा थींदो आहे ऐं हेल ताईं घणाई हिरण मारिजी विया आहिनि। होॾां वाइल्ड लाइफ खाते जी ज़िमेवारी आहे त न फ़क़ति जानवरनि खे सेफ्टी मैसर कराए पर हिन जी संभाल पिणु करे। पर हिते सिंध में हिन जे उबतर थी रहियो आहे। शिकारी वाइल्ड लाइफ खाते जे कंहिं बि कानून खे मञण लाइ तयारु कोन्हनि ऐं जिते सदन दिलि थींदी आहे उते हू शिकार कंदा आहिनि। ताज़ो रिपोर्ट में ख़बर मिली त वर्कशॉप वेझो शिकारी नायाब नसल जे टिनि फाड़नि खे मारे रखियो। वर्कशॉप वारे

इलाइक़े में पीर पागाड़े जे महाड़े में शिकारियुनि सरेआम कुतनि जी बछ कराए नायाब नसल जा टे फाड़ा मारे रखिया। ओठाण जो चवण आहे त मरियल फाड़नि में हिकु गुहारी मादी पिणु हुई। ओठाणनि हकलियूं कयूं जंहिं ते शिकारी ॿ फाड़ा पाण सां खणी भॼी विया। ओठाणनि जो चवणु आहे त हुननि वाइल्ड लाइफ खाते खे इतलाउ ॾिनो, पर का बि कार जवाबु न मिलियो आहे ऐं वाइल्ड लाइफ ऐं ॿियनि बासरनि जे पुठभराई सबबि शिकारी सरेआम दुर्लभ जानवरनि जो शिकार करे रहिया आहिनि। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शायदि एडिटर ॿुधी रहिया, टाइटल हो अणलभ जानवरनि जो शिकार।

निरपेशन खास खास खबरों। प्रधानमंत्री पंहिंजे पंजनि मुल्क़नि जी यात्रा जे आख़िरी हिसे तौरु अॼु रोम में पहुचंदो ऐं उते इटली जे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सां ॿितरफियूं ॻाल्हियूं कंदो। नई दिल्ली ऐं ओसलो क़बूलियो आहे त बाहिमी लाॻापनि खे ग्रीन हिकमत अमली भाईवारी में तब्दील कंदो, तंहिंमें ख़ासि ध्यानु साफ़ तवानाई ऐं ब्लू इकानॉमी ते ॾिनो वेंदो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत नॉर्वे वापारी ऐं रिसर्च समिट में हिसो वरितो, जेका ओसलो में थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त हुन ईरान ते हमिलो नारवारनि मुल्कनि जे अर्ज़ ते रोके रखियो आहे ऐं सरकार हवाई ऐं सामूंडी बंदरगाहनि ते चकास इबोला महाबीमारी सबबि सर्वेलेंस ऐं तयारी जे क़दमनि खे शुरू कंदी।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाईं कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइज

0: Hyderabad overhaul the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है संगीतिका। आज के संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे वीना पहाड़ी द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष।

0: इसी के साथ कार्यक्रम संगीतिका यहीं संपन्न होता है। संगीतिका के अंतर्गत आप सुन रहे थे वीणा पहाड़ी द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:32 और 10 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर ढेर सारे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। जी हाँ, लेकर आई हूँ बहुत सारी खास बातें और बहुत सारी बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छे मार्क्स हों, अच्छी नौकरी हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, खूब सारे कहते हैं ना कि सफलताएं हो, या फिर अच्छा पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हो, ये सब चीज़ों को पाने की हमारी जो ख्वाहिश है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो ज़िंदगी है वो भागती दौड़ती तेज़ी से भागती चली जा रही है, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत जो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है, लेकर आए ढेर सारी खुशी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए। अपना पैसा बिल्कुल उसी तरीके से संभाल के रखिए जैसे आप अपनी सेहत का रखते हैं, और हम तो कहते हैं कि अपनी सेहत का भी ध्यान ठीक उसी प्रकार से रखिए जैसे आप अपने पैसे का ध्यान रखते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। लेकर आई हूँ ढेर सारे गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, RBI की माने और अपने दिमाग से चलें, दिल की सुने लेकिन दिमाग से चलें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, और सेहत का ध्यान रखें ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने पैसे का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, एक कहावत है ना कि अगर शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो हर सपना अपना लगता है, लेकिन अगर सेहत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो छोटी छोटी खुशियां भी अधूरी लगती है दोस्त। तो जरा सोचिए, सुबह की ताजी हवा, एक सुकून भरी नींद और मन की शांति, चेहरे की मुस्कान, इन सब का रिश्ता हमारी सेहत से है। तो ये सब चीजें हमारी सेहत के लिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो जरा ख्याल रखें अपनी सेहत का जनाब, क्योंकि लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर सेहत का ध्यान नहीं रखते, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज ना करने का सबसे फेमस बहाना पता है क्या है यार? इतना काम होता है, थक जाते हैं, मतलब मुमकिन ही नहीं होता कि एक्सरसाइज करा जाए, क्योंकि पूरा टाइम अगर हम काम करते रहते तो वो भी तो एक एक्सरसाइज होती है। ये एक जनरल बहाना है जो आमतौर पर आप लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो प्लीज इस बहाने को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें।

जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है पूरे 7:50 और बस कुछ ही पल और है आपके और हमारे साथ, लेकिन बात ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ गीत सुनवाएंगे। सुनिए

दोस्तों, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है और अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया ना तो धीरे धीरे जवाब देने लगता है और कहता है कि बस मुझे बख्श दो, क्योंकि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय अपनी सेहत के लिए भी निकालिए और उसे दुरुस्त कीजिए ताकि लंबे टाइम तक जो आपका शरीर है स्वस्थ तरीके से चलता रहे, बरकरार रहे। फिलहाल 7:55 और 42 सेकंड हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरा आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त भी हो चुका है। आप आई होप आप सभी को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से और भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पसंद आते रहते हैं, रहते होंगे। बहुत सारी बातें और बहुत सारे गीतों के साथ एक बार फिर से मिलने का वादा लिए आपसे इजाज़त चाहती है आपकी ये आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है।

0: तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस

0: सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein 100 billion dollar investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai aur Bharat mein aapke investment ko outcomes mein badalna main aapko vishwas se kehta hu.
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment Norway wealth fund ki bhi prathmikta hai. Main Norway ko Bharat ke clean energy future mein ahem hissedar banne ke liye aamantrit karta hu.
2: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative as both the countries are leading maritime nations.
4: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture, and greening of ports.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit today in Oslo, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from five Nordic countries, will attend the 3rd India-Nordic Summit today. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. The summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the president of Italy, Sergio Mattarella,

0: करोड़ बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तहत अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभाजाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के नफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जाँच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज़ में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। سرکاری حکم نامے کے مطابق مغربی بنگال کے گورنر آر این روی مجاز اتھارٹی کے طور پر ایف آئی آر کیس ریکارڈ اور حقائق کی جانچ سے مطمئن ہیں اور اس بات کے حق میں ہیں کہ کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے اس وقت کے پرنسپل سندیپ گھوش پر عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔

0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मुशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत ख़त्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ़ुज़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतालिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज़ होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में RG कर मेडिकल कॉलेज के सबक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे दिव्यांश श्रीवास्तव द्वारा संतूर पर बजाया राग, राग बसंत मुखारी। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सचिन शर्मा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्यांशु श्रीवास्तव का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। तबले पर संगति कर रहे थे सचिन शर्मा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का।
1: विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका

0: कुल परिव्यय 1,00,000 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को उच्च प्रभाव वाले शोध, तकनीकी विकास और नवाचार, डीप टेक और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड योजना के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि भारत में ऐतिहासिक रूप से ये निवेश कम रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उन उच्च जोखिम वाली और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का समर्थन करना जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये योजना मुख्य रूप से कोई अनुदान या छोटी अवधि का लोन नहीं है, बल्कि ये उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों वाली परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। ये फंड 2-स्तरीय तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। विशेष प्रयोजन कोष यानी SPF, इसका प्रबंधन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा किया जाता है। द्वितीय स्तरीय फंड मैनेजर यानी SLFMS, इसके तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, वेंचर कैपिटल और अन्य वित्तीय संस्थाएं AIFS, NBFCs आती हैं, जो इन फंड्स के जरिए रियायती दरों पर लंबी अवधि का वित्त पोषण यानी लोन या इक्विटी के रूप में प्रदान करती हैं। वित्त पोषण आमतौर पर आकलित परियोजना लागत यानी असेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% तक कवर किया जाता है। 13 मई 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्कीम के तहत पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड डिसबर्समेंट जारी किया गया। RDI स्कीम की स्टेटस रिपोर्ट पर एक संग्रह जारी हुआ और क्वांटम सेफ इकोसिस्टम इन इंडिया पर एक रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने RDI पहल के तेजी से संचालन पर जोर दिया और कहा,
1: हमने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से गुजारिश की थी कि हमें 5,000 करोड़ दिया जाए, हम इसे 3 साल में खत्म करेंगे, मतलब कमिट करेंगे। तो सबको ये लगता था TDB कैसे 2,000 करोड़ खर्च कर लेगा। जब हमने कॉल लॉन्च की थी तो अपने दिल की बात कही थी, ये 2,000 करोड़ मेरी आशा है कि हम 1 सितंबर जब हम अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हों तब हम खर्च करें। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भाई ये देख लो कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया। हमने पिछले 1-2 महीने में कोई संडे ऐसा नहीं था कि हमने 8 घंटे मीटिंग न की हो IC की। क्वालिटी तो ऐसा है कि अब जो IIT बॉम्बे में मैं गया था अभी जो भारत इनोवेट के उस देखने के लिए, तो मुझे ये लगा कि जो हमें 22 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे, करीब 15-16-17 के करीब हमारे स्टार्टअप वो भारत इनोवेट में जा रहे हैं। उसमें भी देखा जाए तो लिस्टेड कंपनी भी हैं, MSME भी हैं और स्टार्टअप भी हैं। फंडिंग का रेंज 3 करोड़ से लेकर के 285 करोड़ तक की फंडिंग की रेंज है, तो काफी वाइड रेंज की फंडिंग है। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिली है इस पूरे RDI स्कीम के तहत। विद इन 3 मंथ वी गॉट 124 प्रोजेक्ट प्रपोजल, मोर देन 25,000 करोड़ प्रोजेक्ट वर्थ एंड मोर देन 10,000 करोड़ आस्क फ्रॉम RDI फंड। RDIF फंड आज की तारीख में 9-10 महीने के अंदर 1 जुलाई में ये पूरा कैबिनेट अप्रूवल के बाद आज फंड डिसबर्स कर रहे हैं। ये पहली बार 2024 में अनाउंस हुआ था, तो हम लोगों की ये थी कि इसको TDB एज ए फंड मैनेजर लेके आए, लेकिन ANRF में आए हम सेकेंड लेवल फंड मैनेजर उसके साथ जुड़े। लेकिन जो जर्नी हमने 1 जुलाई से शुरू की, मुझे अभी भी वो सारी डेट्स कंठस्थ याद है। 7 जुलाई को जब हमने पहली स्टेक होल्डर मीटिंग की थी, उसके बाद हमें ये टारगेट दिया गया था कि 10 दिन के अंदर में हमें पूरी स्कीम की गाइडलाइंस बनानी है। हम लोगों ने फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस करके बनाई, हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क किया हुआ था, 3-4 दिन के अंदर में हम लोगों ने SFR भी बना ली। और जब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजे तो वहां से करीब 75 क्वेरी हमको पहली बार आई थी, जिसमें SFR पे 3-4 क्वेरी ही थी, बाकी सारी क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस और जो हमारा SGMT डॉक्यूमेंट था उस पे थी। खैर जब ये बन गया तो 3 नवंबर को लॉन्च होना, अब NIA डॉक्यूमेंट पे काम करो। तो पहली बार तो किसी को पता ही नहीं था ये नई चीज है, इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के लगेगी। नॉर्मली हम लोग NIT निकालते हैं टेंडर, इसमें टेंडर है नहीं। RFP निकालते, RFP इसमें है नहीं, क्योंकि RFP का वो हमें पता है कि क्या आउटकम है, देन वी जीरो डाउन कि NIA डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो NIA का कोई हवा ही नहीं, NIA डॉक्यूमेंट बनती क्या है, कैसे बनेगी। और था कि 3 नवंबर तक इसको प्रधानमंत्री जी से वहां पर लॉन्च कराना है। दैट्स द काइंड ऑफ टाइमलाइन वी वर्क। NIA डॉक्यूमेंट भी हम लोगों, चूंकि हम टेलीकॉम में काम किए थे, तो उसकी NIA डॉक्यूमेंट का मेरे पास थोड़ा आइडिया था, हमने उससे स्टार्ट किया, बाद में वो

0: आरडीआईएफ जर्नी में हम लोगों ने बहुत ही एक उसको कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है कैसे एक प्रोजेक्ट को एक पूरे स्कीम को इस लेवल पे लेके आना, जब आप देखेंगे 22 कंपनी उन कंपनियों को तो आपको लगेगा कि हमने क्या अचीव किया है। जैसे पहले अश्वमेध जग होती थी, चक्रवर्ती सम्राट हम तभी बनते थे कि जब उसका घोड़ा दौड़ता था उसको कोई पकड़ा नहीं आगे। जो हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो एक यज्ञ है। उसको यदि अश्वमेध जग से हम तुलना करें तो वो जो दौड़ने वाला घोड़ा है आरडीआई ही है। यदि ये संघ से चल गया, ये घोड़ा आपने खड़ा कर दिया, अब इसे आगे दौड़ना है, बहुत सारी बाधाएं आएगी, इंटरनल बाधाएं भी होंगी एक्सटर्नल भी होंगी। जिस कंपनी को हमने फंड किया पता चला उसको एक्वायर करने की एक वो एक्सटर्नल बाधाएं होंगी। यदि ये आरडीआई रूपी घोड़ा दौड़ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को विकसित भारत 2047 तक बनने से कोई नहीं रोक सकता।
1: टीडीपी इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट प्रस्ताव कॉल लॉन्च करने, अग्रीमेंट साइन करने और फंड जारी करने वाला पहला सेकंड लेवल फंड मैनेजर बन गया। उन्होंने बताया कि इस पहल को कम समय में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 124 प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिले। चुने गए प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और स्वास्थ्य, ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों की लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई फंड के तहत फंडिंग के लिए टीडीपी द्वारा चुनी गई 22 कंपनियां देश के कुछ बेहतरीन स्टार्टअप्स में से हैं और उनमें से कुछ 15 को भारत इनोवेट्स 2026 के हिस्से के तौर पर देश भर में खोज के जरिए चुना गया है, जो कि जून में फ्रांस के नीस में होने वाला भारत के टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक ग्लोबल शोकेस है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टीडीबी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों को वाणिज्यिक उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित करना है ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। बोर्ड स्टार्टअप्स, औद्योगिक चिंताओं और अनुसंधान संस्थानों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने या आयातित तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुदान, सॉफ्ट लोन, रियायती ऋण और इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, चिकित्सा उपकरण, कृषि, रक्षा, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में तकनीकी उद्यमियों का समर्थन करता है। अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए ये बोर्ड फिनलैंड, स्पेन, इसराइल, UK, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति, विशेष रूप से 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति और स्वदेशी हंसा 3 विमान की पहली उड़ान को याद करने और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता देने के लिए है। इस वर्ष इसे नई दिल्ली स्थित ब्रिक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII में आयोजित विज्ञान टेक 2026 नामक एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत में हमेशा से वैज्ञानिक प्रतिभा और सक्षम मानव संसाधन मौजूद रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद विज्ञान और नवाचार को अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में तीव्र तकनीकी प्रगति हुई है। भारत का स्टार्टअप परितंत्र 2014 में मात्र 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर आज 200,000 से अधिक हो गया है, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र बन गया है। भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 80 से सुधर कर 38 हो गई है, जबकि देश आज पेटेंट के मामले में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है, जहां 1,00,000 से अधिक पेटेंट दर्ज किए गए हैं। इनमें से 55% से अधिक पेटेंट भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों और नवाचार आधारित अनुसंधान में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। पिछले दशक में शुरू की गई कई महत्वपूर्ण पहलों की वजह से भारत को अग्रणी वैज्ञानिक देशों में स्थान मिला है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत AI मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार पहल, महिला वैज्ञानिकों के लिए वाइज, किरण योजना और स्टार्टअप के लिए निधि कार्यक्रम ने नवाचार, उद्यमिता और समावेशी वैज्ञानिक विकास के अवसरों का लगातार विस्तार किया है।
2: हम सब जानते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल DST द्वारा मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में ये समारोह आयोजित किया गया है। हमारे साथ है RCB फरीदाबाद, जो कि DBT की एक अनुसंधान संस्था है और उसके साथ

0: हैं हमारे वैज्ञानिक, हम इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में और इनका जो यहाँ प्रदर्शित उत्पाद है उसके बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है, मैं फोर्थ ईयर PhD स्टूडेंट हूँ RCB फरीदाबाद में और हम लोग काम करते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर, जैसे कि फिनाइल किटिनूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि जन्म के साथ ही होती है, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, जिसमें आपको जो प्रोटीन होता है नॉर्मल प्रोटीन आप नहीं ले सकते, जैसे दाल चावल या फिर ये चीज आप नहीं खा सकते, तो आपको एक स्पेशल डाइट चाहिए होती है पे हम काम कर रहे हैं। अगर ये डाइट ना मिले तो जो बेबी होता है, जब उसको बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको IQ प्रॉब्लम, उसको मूवमेंट, चलना फिरना और कॉग्निटिव फंक्शन जैसे संतुलन वाले जो भी काम करने होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल फूड बना रहे हैं जो कि वो प्रोटीन से ले सके। तो उसके लिए हम एक एंजाइम यूज कर रहे हैं जिससे हम नॉर्मल प्रोटीन जो होता है, जैसे सोया प्रोटीन हो गया या फिर आपका मिल्क प्रोटीन हो गया, उससे हम उस जो माइनो एसिड जो प्रॉब्लम करता है, फिनाइल एलानिन प्रॉब्लम करता है उसमें, उसको हम रिमूव करते हैं जिससे वो आप फिर पेशेंट को दे सके, जिससे कि वो आराम से नॉर्मल जिंदगी जी सके थ्रू आउट एज अ नॉर्मल किड।
0: क्या इसका कुछ पेटेंट वगैरह किया गया है या इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ट्रांसफर किया गया है, लोगों को कैसे मिलेगा?
1: जी, हमने एक्चुअली इसको पेटेंट करा दिया था। पहले इसमें प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स करे हमने और माइस के ऊपर, जो कि इनका PKU जो फिनाइल किटिनूरिया डिसीज है उसी का माउस मॉडल होता है, उस पर हमने हमारी जो बनाई हुई डाइट है वो टेस्ट करी, जिसमें हमने देखा कि काफी इंप्रूवमेंट था, जो नॉर्मल फंक्शन थे माइस के कंपेयर टू जो माइस नॉर्मल डाइट पे थे उनसे काफी ज्यादा बेटर थे। और उसके बाद फिर हम अब उसको जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लाइक जैसे FSSAI, वहां से हम अप्रूवल पे उसमें जा रहे हैं, जिसमें हम लार्ज प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एम्स जैसी जगह पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेंगे, उसके बाद हम इसको पैकेज कर एज अ नॉर्मल फूड सप्लीमेंट, जो कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट और ये सब होता है, वैसे प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी इंडिया में था बट वो बाहर से इम्पोर्ट होता था, इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, बट हमारा वाला जो इसके हमने साइंटिफिक पब्लिश भी करा और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट भी करा है, तो इसकी कॉस्ट उससे 8-10% सस्ती है। फिर बाद में इन द एंड आपको एज अ फूड सप्लीमेंट ही अवेलेबल होगा एज अ स्पेशल मेडिकेटेड फूड।
2: मैं सुमन गुर्जर, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। हमने मल्टी हजार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है, इसी के अंतर्गत हमारे पास में एक और पोर्टल है जिसे हम मौसम ग्राम के नाम से जानते हैं। यदि आप उसे गूगल में मौसम ग्राम टाइप करेंगे तो आपको पहला लिंक जो मिलेगा वो मौसम ग्राम ही मिलेगा। इस पे आप अपने किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मैप पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको आवरली, 3 आवरली, 6 आवरली, जो अगले 5 दिन, अगले 10 दिन और अगले 1 घंटे में आपकी जगह का कैसा मौसम होने वाला है उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप इसमें अपनी ग्राम पंचायत तक को जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पे क्लिक करके आप वहाँ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: मैं अंशुल चौहान, वैज्ञानिक। इस प्रदर्शनी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हम लोग मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शोकेस कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली आत्मनिर्भर और पूरी तरीके से IMD द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें हमने डिफरेंट सेक्टोरियल एप्लीकेशन बनाया है, जैसे मरीन के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग है, एविएशन के लिए अलग है, इंडियन रेलवेज के लिए अलग है, नेशनल हाईवेज के अलग है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक टूल हमने बनाया। रिसेंटली हम चारधाम पोर्टल को भी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, जिसमें हमने रूट फोरकास्ट दिया है, जिससे यात्री एडवांस में 5 दिन पहले आपको वार्निंग देख के अपने टूर और उस तरीके से यात्रा को प्लान कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है, more than 250 crore पैसा हमने इसमें सेव किया है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, ऑटो फोरकास्ट एंड AI एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑलरेडी इसमें

0: आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के ज़रिए। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 19 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। स्पेनिश विजेता मिगुएल लोपेज डी लेगा जपी ने मनीला शहर की स्थापना की। इसे स्पेनिश ईस्ट इंडीज की राजधानी घोषित किया गया।
2: In 1743, French scientist Jean-Pierre Christin developed the Lyon thermometer, introducing the centigrade scale based on the freezing and boiling points of water.
1: 1780 में आज ही के दिन न्यू इंग्लैंड का काला दिन तब हुआ जब दोपहर के समय अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा गया। इसकी वजह संभवतः बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग और घना कोहरा था।
2: In 1862, President Abraham Lincoln signed the Homestead Act, allowing citizens to claim 160 acres of surveyed government land. And in 1919, Mustafa Kemal Atatürk landed at Samsun, launching the Turkish War of Independence and beginning the creation of modern Turkey.
1: 1911 में आज ही के दिन डोमिनियन पार्क्स ब्रांच या पार्क्स कनाडा की स्थापना हुई, जिससे ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान सेवा संगठन बना। 1950 में आज ही के दिन मिस्र ने इसराइली जहाजों के लिए स्वेज नहर बंद कर दी, जिससे पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया।
2: In 1959, the North Vietnamese Army established Group 559 to build and maintain the strategic Ho Chi Minh Trail.
1: 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपना पहला पनडुब्बी बेस INS वीर बाहु शुरू किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
2: फ्रेडरिक ऑग्डन नैश वॉज एन अमेरिकन पोएट वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्स, ऑफ विच ही रोट मोर देन 500 पीसेस विद हिज अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स। ही वॉज डिक्लेयर्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स टू बी द कंट्रीज बेस्ट नोन प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोएट्री। इफ दैट डजंट मेक यू स्माइल, आई एम श्योर दिस पोएम बाय ऑग्डन नैश विल स्प्रिंकल सम ह्यूमर टू मेक योर मॉर्निंग ब्राइट।
3: How wise I am to have instructed the butler to instruct the first footman, to instruct the second footman, to instruct the doorman to order my carriage. I am about to volunteer a definition of marriage. Just as I know there are two Higgins, Walter and Copen, I know that marriage is a legal and religious alliance entered into by a man who can't sleep with the window shut and a woman who can't sleep with the window open.
1: आज पुण्यतिथि है विजय तेंदुलकर की। उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका नाम आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में अग्रणी है। 5 दशक से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियां और उपन्यास भी लिखे। विजय तेंदुलकर ने 50 से भी अधिक नाटकों की रचना की है। हिंदी में उनके 30 नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है। खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, सखाराम बाइंडर, जात ही पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, कन्यादान, कमला आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई वो मराठी नाटककार की ही सीमा में बंधकर नहीं रह सकी। निशांत आदि कई समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की पटकथा उन्होंने लिखी। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव आदि से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका नाटक शांतता कोट चालू आहे का संवाद।
4: आरोपी मिस लीला बेणारे, तुमच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप तुम्हास मान्य आहे की अमान्य?
5: तुमच्यावर तो ठेवला तर तुम्ही मान्य कराल।
4: ऑर्डर ऑर्डर, कोर्टाचा आदर कोणत्याही परिस्थितीत राखला गेला पाहिजे।
6: कोर्टाचं काम
5: की भ्रूण हत्येचं कामकाज, त्यापेक्षा तुम्ही माझ्यावर सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहाराचा का नाही आरोप?
2: टुडे इज द बर्थडे ऑफ अ बॉन्ड, Ruskin Bond, the bond of words and books in the literary sense.

0: lovingly addressed as Rusty. He is an Indian author and poet. Bond has authored more than 500 short stories, essays and novels, which include 69 books for children. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dera. He was awarded the Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014. He attended Bishop Cotton School in Shimla, graduating in 1951. There he won several writing competitions, including the Irwin Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He has written essays and novels including The Blue Umbrella, Funny Side Up, A Flight of Pigeons and more than 50 books for children. Coming from Rusty, every word is a pearl of wisdom to be remembered and be joyous and happy. His books are a delightful, unputdownable read. His style may be simple but carry the depths of the most sought after thing of called happiness. So let's hear from the Bond.
1: As I walked home last night, I saw a lone fox dancing in the bright moonlight. I stood and watched, then took the low road, knowing the night was his by right. Sometimes when words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew.
2: आज पुण्यतिथि है शंभू मित्रों की। उनका जन्म 22 अगस्त 1915 को हुआ था। वे रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। उन्हें मुख्य रूप से बांग्ला थिएटर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1939 में व्यावसायिक रंगमंच में प्रवेश किया। 1948 में उन्होंने मनोरंजन भट्टाचार्य के नेतृत्व में बहुरूपी नामक रंगमंच मंडली की स्थापना की। 1949 से 1971 तक बहुरूपी ने उनके निर्देशन में रविन्द्रनाथ टैगोर, सोफोक्लीज, हेनरिक इप्सन, तुलसी लाहिड़ी और अन्य प्रमुख नाटककारों की रचनाओं का मंचन किया। शंभू मित्रा को उनकी फिल्मों धरती के लाल और जागते रहो से विशेष तौर पर पहचान मिली। उन्हें पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका कविता पाठ।
3: हावा बॉय शनशन तारारा कांपे, हावा बॉय शनशन तारारा कांपे, हृदय की जंग धरे पुरोनो खापे, कार चूल एलो मेलो किवताते एलो गेलो, कार चोखे कत जल केवता मापे, हृदय की जंग धरे पुरोनो।
0: सिद्धार्थ Sid Sriram is an Indian Carnatic musician, music producer, playback singer. He's an R&B songwriter and has been working in the Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi and English music industry. He regularly collaborates with his sister Pallavi Sriram, a Bharatanatyam dancer and music director. Let's listen to this melodious song sung by Sid Sriram.
4: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है। हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत एफ्टा मुहाले के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 100 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेस इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी के को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सबक प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास

0: गज़ल के साथ ही आज का हुस्न गज़ल प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको मणिपुर की कला से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मणिपुर की कला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रही है और हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एक खास प्रदर्शनी में मणिपुर की पुरातन कला को प्रदर्शित किया गया, जहां पर बहुत से आगंतुकों ने मणिपुर की कला को जाना। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुरी कला अपना जादू बिखेर रही है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आइए सुनिए।
3: मणिपुर की एक पारंपरिक कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन रही है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित द रिवाइवल ऑफ द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ मणिपुर एन एग्जीबिशन ऑफ मॉडर्न सुबिका आर्ट नामक प्रदर्शनी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें मणिपुरी समुदाय के लोग, कला प्रेमी और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार कई मणिपुरी परिवारों ने खुशी जताई कि मणिपुर की इस पारंपरिक कला को वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शित और समझाया जा रहा है। इससे लोगों में अपनी संस्कृति से जुड़ाव की भावना मजबूत हुई है। प्रदर्शनी में आए लोगों ने चित्रों को ध्यान से देखा और उनके साथ दिए गए विवरणों को भी पढ़ा। इन विवरणों में चित्रों का इतिहास, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व बताया गया है, जिससे दर्शकों को कला को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। इस प्रदर्शनी में कलाकार डॉक्टर युमनाम सापा की 20 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी का क्यूरेशन वांगम सोमोरजीत ने किया। इसका आयोजन द कलर बॉक्स द्वारा इम्फाल स्थित एडवांस्ड रिसर्च कॉन्सोर्टियम लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स यानी ARCLA के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सुबिका कला के प्रति लोगों की रुचि को फिर से बढ़ाना है। इसके लिए इस पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसकी मूल परंपरा और पहचान को भी सुरक्षित रखा गया है। इन कलाकृतियों में स्थानीय पौराणिक कथाओं, इतिहास, सांस्कृतिक यादों और क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। ये प्रदर्शनी वाशिंगटन डीसी के गैलरी 1610 में आयोजित की जा रही है और 19 मई 2026 तक चलेगी। उत्पल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए शक्ति सिंह।
2: श्रोताओं, सिक्किम लगातार अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करता जा रहा है, चाहे पहले ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में सिक्किम का नाम दर्ज होना हो या स्वच्छता के मामले में भी सिक्किम में की जा रही कई पहल हो। इसी तरह से एक और पहल के माध्यम से सिक्किम पहला वो राज्य बना है जिसमें न्यायालयों में कार्रवाई पेपरलेस तरीके से होगी। तो आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से सिक्किम में अब पूरी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया पेपरलेस होने जा रही है, यानी डिजिटल होने जा रही है।

सिक्किम ने डिजिटल न्याय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस घोषणा की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गैंगटॉक के चिंतन भवन में आयोजित कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन सम्मेलन में दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था तेजी से डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक खासकर पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बना रही है। अब मामलों की सुनवाई और प्रक्रिया बिना कागजी दस्तावेजों के आगे बढ़ सकती है और लोग तकनीक के माध्यम से अदालतों से आसानी से जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसे सिक्किम के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि राज्य की डिजिटल गवर्नेंस और न्यायिक सुधारों के प्रति वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है और सभी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और सुलभ बनाएगी। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि डिजिटल युग में न्याय तक पहुंच की परिभाषा बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी और संस्थागत सुधारों का उद्देश्य लोगों को वास्तविक और प्रभावी न्याय दिलाना होना चाहिए। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक ने कहा कि ये पहल सिर्फ डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना, काम का बोझ कम करना और लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक आसान बनाना है। कानूनी समुदाय के सदस्यों ने भी इस पहल का स्वागत किया। सिक्किम हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ताशी राप्तेन बार फोंगपा ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वकीलों को ई कोर्ट प्रणाली को लेकर संकोच था, लेकिन समय के साथ इसकी कार्यक्षमता बढ़ने पर लोगों ने इसे अपनाया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अदालतों से पारदर्शिता बढ़ती है और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के लोग भी ऑनलाइन सुनवाई और केस फाइल कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जोरगे नामका ने कहा कि ये उपलब्धि सिक्किम के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, वकीलों और सरकार के सहयोग से ये बदलाव संभव हो पाया है। इस उपलब्धि के साथ सिक्किम ने भारत में एक अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी आधारित न्याय व्यवस्था की दिशा में खुद को आगे स्थापित किया है। उत्पल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार।

दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल आयोजित किया जाता रहा है और इस बार इस फेस्टिवल का ये 3रा संस्करण था। बीते 15 मई को नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस फेस्टिवल में जहां एक तरफ किसान अपनी फसलों के साथ अपने बाजार को तलाशते हैं, वहीं आने वाले लोग भी आलू की अलग अलग किस्मों से यहां परिचित होते हैं। तो किस तरह से आयोजित हुआ इस बार का पोटैटो फेस्टिवल, हमारी संवाददाता असुनो की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।

0: नागालैंड पोटैटो फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण 15 मई को कोहिमा जिले के जाखामा गांव के स्थानीय मैदान में एग्री ट्रेड पोटेंशियल विषय के साथ आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य कृषि को लाभदायक और टिकाऊ क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना था, ताकि किसानों को बाजार, नई तकनीक और व्यापार के अवसरों से जोड़ा जा सके। कोहिमा जिले के जाखामा गांव में आयोजित पोटैटो फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल हुए और इसने नागालैंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बढ़ते महत्व को उजागर किया। जाखामा विलेज काउंसिल द्वारा आयोजित इस उत्सव में गांव के सभी 8 खेलों के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोग भी इसमें शामिल हुए। मोकुकचुंग और फेक जिलों से आए किसान और प्रदर्शक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस उत्सव का उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना और जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों तथा प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाना था। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, मेडफिजेमा स्थित बायो फर्टिलाइजर लेबोरेटरी, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और नागालैंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत कई सरकारी विभागों और संस्थाओं ने भाग लिया।
1: This year we'll be having a number of seminars, demonstration on usage of biofertilizers by BioLab Medzipema. A group of experts from UNET will be there and give training on how to give access to government schemes and financial benefits. ATMA under Agriculture Department will be giving a demonstration on banana chips, a workshop on coffee plantation and economic point of view by the Land Resources Department, and Entrepreneurship Awareness Program with special reference to CMMFI by IDEN.
0: इस वर्ष कुल 64 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें जैविक उत्पाद, पारंपरिक खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए। उत्सव के दौरान लगभग 20,000 किलोग्राम आलू प्रदर्शन और बिक्री के लिए लाए गए थे। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम

0: करीब 5 से 7 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। उत्सव में पारंपरिक खेल और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला। फेस्टिवल के पहले संस्करण में किसानों ने आलू बिक्री से लगभग 32 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं पिछले वर्ष सूखे मौसम के कारण खराब फसल होने से कमाई घटकर लगभग 15 लाख रुपए रह गई थी। हालांकि इस बार अच्छी बारिश होने से किसानों को बेहतर फसल और ज्यादा बिक्री की उम्मीद रही। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये उत्सव किसानों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों के लिए कृषि व्यापार और टिकाऊ खेती के नए अवसर तलाशने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। कोहिमा से आसनो की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए वैष्णवी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से एक खास आयोजन में उड़ने दो नाम का एक नाटक प्रस्तुत किया गया था और अगरतला में हुई इस प्रस्तुति का आगंतुकों ने आनंद लिया और इस नाटक की प्रस्तुति से भाव विभोर हुए। तो हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने इस नाटक की प्रस्तुति के संबंध में एक खास रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: बचपन में हम सब उड़ना चाहते थे। कोई आसमान में उड़ना चाहता था, कोई अपनी कल्पनाओं में और कोई अपने ही दिल की गहराइयों में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हम अब भी सितारों से बातें कर सकते हैं, बादलों पर कहानियां लिख सकते हैं और एक छोटा सा दिल भी पूरी दुनिया बदल सकता है। इसी भूले हुए सपने को रंग, संगीत, भाव और अर्थ दिया है उड़ने दो नाम के नाटक ने, जिसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर इन एजुकेशन विंग त्रिपुरा द्वारा अगरतला में प्रस्तुत किया गया। ये निमंत्रण सबके लिए था, स्कूल के बच्चों के लिए, माता पिता और अभिभावकों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और रंगमंच से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के लिए। एक ऐसा निमंत्रण जो सोच की नई खिड़की खोलता है। थिएटर की रंगीन दुनिया में उड़ने दो एक भावनात्मक संदेश लेकर सामने आता है, एक ऐसी अपील जो इंसान के मन को खुलकर उड़ने देने की बात करती है। उस दुनिया में जहां हर तरफ प्रतियोगिता, तेज रफ्तार और एक जैसी सोच का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगरतला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर इन एजुकेशन विंग द्वारा तैयार किया गया ये नाटक फ्रांसीसी लेखक एंतवान द सेंट एग्जुपेरी की मशहूर किताब द लिटिल प्रिंस से प्रेरित है। इसका हिंदी रूपांतरण रंगकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पूर्व छात्रा श्वेता श्रीवास्तव ने किया है। प्रकाश परिकल्पना, संगीत, अभिनय और मंचीय गतिविधियों के माध्यम से युवा रंगकर्मियों की टीम ने मंच को एक जादुई और भावनात्मक दुनिया में बदल दिया। इस प्रस्तुति का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अरुणा कुमार मलिक ने किया है। वे सपनों के एक संदेश वाहक की तरह दर्शकों को इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते हैं। अरुणा कुमार मलिक, निर्देशक, उड़ने दो। कहानी कुछ इस तरह है। एक छोटा सा राजकुमार था, वो एक दूर के छोटे से ग्रह पर रहता था जहां 3 ज्वालामुखी थे और एक अकेला गुलाब। ऊपर से ये कहानी बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर गहरे अर्थ छिपे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये हमें प्यार, अकेलेपन, दोस्ती और उस मासूमियत की याद दिलाती है जिसे हम बड़े होने के साथ खो देते हैं। और अंत में ये नाटक दर्शकों को एक गहरी भावनात्मक उड़ान के साथ छोड़ जाता है। अगर कभी सितारों के बीच तुम्हें किसी की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं अब भी उड़ रहा हूं। उड़ने दो सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सपने आज भी मायने रखते हैं, कल्पनाएं आज भी जरूरी हैं और हर बड़े इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक बच्चा आज भी उड़ने का इंतजार कर रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज।

0: श्रोताओं, हिमालयी राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार लगातार विशेष अनुदान का आवंटन करती रही है और इसी के तहत एक विशेष पहल केंद्र सरकार के द्वारा की जाती रही है, प्राइड ऑफ हिल्स। और प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पहल के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में इससे मदद मिलेगी, जिसका अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया है। तो आइए अपने संवाददाता मनोज से खास रिपोर्ट सुनते हैं कि किस तरह से प्राइड ऑफ हिल्स से अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में मदद मिलने जा रही है।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ये आभार केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने के बाद व्यक्त किया गया। ये आवंटन हाल ही में शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास संबंधी कमियों को दूर करना है। मुख्यमंत्री ने इस आवंटन को अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया, विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार, बुनियादी ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में। अधिकारियों ने बताया है कि प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिल स्टेट्स पहल इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता SASCI फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई थी। इसके तहत 9 पहाड़ी और हिमालयी राज्यों के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसके तहत 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए और नागालैंड को 3,880 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इससे पहले मार्च में इस योजना की घोषणा के बाद केंद्र के फैसलों का स्वागत करते हुए श्री खांडू ने इस पहल को समय और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया, जिनमें मुश्किल इलाका, कम आबादी, कमजोर कनेक्टिविटी और राजस्व कमाने की सीमित क्षमता शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आवंटन से राज्य को अपनी वित्तीय स्थिरता बेहतर बनाने के साथ ही राजस्व कमाने वाली संपत्तियां बनाने में और निवेश करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना को पहाड़ी राज्यों में होने वाली ढांचागत और भौगोलिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इन दिक्कतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा लागत, कम जनसंख्या, मुश्किल इलाका और कमजोर वित्तीय संकेतक शामिल है। पहल का उद्देश्य इन इलाकों में पूंजीगत खर्च को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि मौजूदा SASCI प्रावधानों के अलावा किया गया ये अतिरिक्त आवंटन पहाड़ी राज्यों को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने, सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, तय परियोजनाओं को पूरा करने और कुल मिलाकर विकास की गति को तेज करने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
0: श्रोताओं, हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्किम दौरा रहा और इस दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। आइए हमारी सहयोगी श्रेया और हमारे सिक्किम संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं।
2: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया सिक्किम दौरे में पर्यटन, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं पर खास फोकस देखने को मिला। दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम परियोजनाओं का निरीक्षण किया और सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सिक्किम दौरे के दौरान कई पर्यटन और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले हमें बताइए कि इस दौरे को राज्य के विकास के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3: जी सर, जैसे आपने बताया दोनों मिनिस्ट्री से स्वयं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 3 दिन के सिक्किम दौरे पर आए और इसी समय उन्होंने यहाँ शिक्षा के व्यवस्था को लेकर, पर्यटन को लेकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मुद्दे पर ध्यान दिया और यहाँ पे वो बहुत सारे चीजें देखने के। जैसे अगर मैं बताऊं कि नामची जिले में वो गैंगटॉक जब बागडोगरा से होके पहले वो नामची जिले में आए थे और नामची जिले के कई सारे परियोजना का उन्होंने एनालिसिस किया, रिव्यू किया। उसमें से कोई एक तो खास था जो वहां का स्टेट यूनिवर्सिटी, कांचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो देखने गए और वहां पे क्या प्रोग्रेस है उसका जायजा लिया। उसके बाद जो हम सब जानते हैं सिक्किम जिसके लिए मशहूर है

0: तेमी टीस थे जो पूरा देश भर में मिलते हैं, तेमी चाय के पत्ती। तो वो तेमी टी एस्टेट देखने गए और वहां कैसे काम करते हैं, लोगों से भी बातचीत किया जो चाय पत्ती तोड़ते हैं, वो वहां पे काम करने वाले महिला से भी बातचीत किया, वहां से भी बहुत चीजें जाने। और उन्होंने ये भी कहता है कि तेमी टी को जीआई टैग वो भी मिलना चाहिए। के बाद जो हम जानते हैं जो सिक्किम जिसके लिए पूरे देश भर में जाना जाता है पर्यटन क्षेत्र के लिए, वहां पे एक टूरिज्म सर्किट बन रहा है वो जो नामची तेमी और राबांगला के बीच, जो राबांगला है वहां पे एक बुद्ध पार्क है वो भी बहुत से सैलानी वहां भी देखने आते हैं। तो नामची तेमी राबांगला को जोड़ के जो डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है उसको बेसिकली पूरा उसको कहते हैं हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म। और उसी के साथ ये पर्यटन का क्या स्थिति है उसको देखने के लिए वहां गए और वहां भी वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर उन्होंने वहां का जायजा लिया और उस चीज को उन्होंने देखा। और उसके बाद अगर हम बताएं कि सिक्किम फुटबॉल के लिए भी जाने जाते हैं, जो अभी नामची में सिक्किम प्रीमियर लीग चल रहा था और जो स्टेडियम है वो वाइसुंग भुटिया के नाम से है, वो सिक्किम प्रीमियर लीग में भी गए हैं और वहां से खिलाड़ियों से बातचीत किया, खेल की फिट इंडिया के बारे में बातचीत किया। उसके बाद वो एक काईवॉक प्रोजेक्ट है वहां पे नामसी जिले में ही जो पीएम दिव्यांग स्कीम के तहत बन रहा है और उसमें डोनर मिनिस्ट्री का लगभग 200 करोड़ रुपया का लागत से ये बनाया जा रहा है और ये 3200 मीटर पर है। तो वो स्काईवॉक परियोजना का भी उन्होंने वहां पे रिव्यू किया। तो इस तरह से कई चीजें वो देखे। और कल जैसे हम जानते थे कि सिक्किम का स्टेटहुड दिवस था, 51 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड डे स्थापना का दिवस है सिक्किम का, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी आए थे, वहां भी उन्होंने शिरकत किया। और उससे पहले जो गैंगटॉक में मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ आए थे उन्होंने भी वो ऑर्किडेरियम पार्क देखा था, वहां भी गए, वहां पे कई सारे ऑर्किड है तो वो भी देखने के लिए गए। तो इस तरह से कई सारे चीजों को देखा जाना। और पूरे इस दौरे पे जो सिक्किम प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ के लोग थे, तो एक जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके तहत कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ये कई सारे परियोजनाओं को काम कर रहे हैं। और ये मंत्री जी का ये दौरा निश्चय ही ये कह पाएंगे कि जो काम हो रहा है उसमें डेफिनेटली उसमें तेजी लाने की एक काम होगा।
1: जी, जैसा कि आपने स्काई वॉक प्रोजेक्ट की बात की, तो केंद्रीय मंत्री ने नामची पर्यटन सर्किट भालेडुंगा और स्काई वॉक प्रोजेक्ट भी जैसा आपने बताया भी, और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया। इन परियोजनाओं से सिक्किम में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को किस तरह बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे मैं पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो नाथुला का प्रोजेक्ट था मानसरोवर, वो किसी कारण जा नहीं पाए वहां पे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस साल जून महीने से अगले महीने से फिर नाथुला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है। और पिछले साल लगभग 5-6 साल के एक गैप के बाद इस रूट से फिर से शुरू हुआ, इस बार भी होना है और इसके लिए काम चल रहा है। वहाँ जो पर्यटक जो आते हैं या जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री आते हैं पूरे देश भर से, तो उनका रहने का एक व्यवस्था है वहां पे, क्योंकि जो दूर से आते हैं और कि वो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे है, तो इसके परिस्थिति से उनको रूबरू किया जाता है कि कैसे हो आप, कैसे सांस ले, कैसे आप नॉर्मल खाए पिए। तो एक्लेमेंटेशन के लिए यह बनाया गया है जैसे आपने जिक्र किया। और जो भालूडंगा जो नामची में स्काई वॉक है ये 3200 मीटर पर वहां पे होगा, और एक बार ये बन जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ और एक पेलिंग बोल के जगह है सिक्किम में गेजिंग जिले में, वो पेलिंग में एक स्काईवॉक है ही, तो वहां भी वो स्काईवॉक भी देखने के लिए लोग आते हैं। और ये दूसरा बन जाएगा नामसी, तो नामसी में जो भालेडुंगा स्काईवॉक है मैंने बताया पीएम डिफेंस स्कीम के तहत है, ये भी अगर बच जाए तो डेफिनेटली लोग फिर और ज्यादा लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का और एक बिंदु होगा यहाँ पे। तो जैसे हम जानते हैं ये सिक्किम में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जो लोग देखने आते हैं, लेकिन हम लोग मोटा मोटी 8-10 जगह को ही जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और जैसे जिसको हम कह सकते हैं आंतरैप, तो वहां भी बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश भर में जो देखने के लिए आ सकते हैं और लोग आते भी है। हालांकि हाँ, सबसे ज्यादा फोकस वो 8-10 जगह होते हैं जो हम लोग जिसमें ज्यादा चर्चाएं होती है। तो ये एक बार बन जाए स्काईवॉक तो बहुत लोग डेफिनेटली तो देखने के लिए लोग आएंगे।
1: और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कई पूर्वोत्तर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार ने विकास को लेकर क्या खास संदेश दिया?
0: यही है कि जैसे बता मोदी जी आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, सिक्किम किसके लिए जाने जाते हैं, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ के क्लीनलीनेस के लिए जाने जाते हैं, यहाँ लोग खेल कूद में सबसे आगे हैं। इसी को बढ़ावा देकर आज भी डोनर मिनिस्ट्री के तरफ से कई सारे परियोजना का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास रखा गया सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये इसको हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर, और निश्चय ही जो ये प्रोजेक्ट होगा इसमें सिक्किम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना और जरूरी है। हालांकि ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जैसे बोलेंगे, जितने भी आप काम करेंगे लोगों को चाहिए कि और इसमें जोड़े। तो ये जो काम है जो कल सिक्किम स्थापना दिवस पर ये उद्घाटन किया गया या शिलान्यास रखा गया, आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ के स्टूडेंट भी है और बाहर से भी जो स्टूडेंट है पढ़ने के लिए, सबके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और जैसे भारत सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और जितने भी केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ अधिकारी दौरे पे आते हैं, तो जो कहते हैं कि पूर्वोत्तर को सिक्किम से जोड़ के पूर्वोत्तर को कहते हैं अस्त लक्ष्मी, अस्त
1: जी
0: लक्ष्मी के विकास जो सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रयत्त है, और इसी को हम इसी कड़ी में जोड़ के देखना चाहेंगे। ये एक सतत कार्य है जो आने वाले दिनों में भी होता रहेगा और यहाँ के लोगों की विकास के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा।
1: विकास परियोजनाओं से जुड़ी जो खास फोकस हमें देखने को मिल रहा है सिक्किम में, उसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोता, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सामिनी, आप सुन रहे थे पूर्व उत्तर डायरी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

संजोग फिल्म का नगमा भी आपने सुना किशोरदा की आवाज़ में। इससे पहले हमने आपको रंगोली फिल्म का नगमा सुनवाया। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में शर्मीली फिल्म से है।

0: कहीं झलक ही।
1: आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में नगमा, फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: अगली पेशकश फिल्म का नाम है हाय मेरा दिल।
1: दुनिया कहती मुझको पागल, अरे मैं कहता दुनिया को पागल। हाय हाय मेरा दिल।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का नगमा अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म का नाम है ज़बरदस्त।

जबरदस्त फिल्म का नगमा भी आपने सुना इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए मोहतरमा स्नेहा शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा, उन्वान है मैं फरिश्ता बन गया।

0: बस बस, और नहीं सहा जाता। भला हद है गुलामी की। ना जाने क्या सोचकर अब्बा हजूर ने इस बेगैरत नवाब के घर मुझे पैदा किया।
1: सोचा होगा कि मेरा लाल मुंह में सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा होगा।
0: यहां तो भरपेट रोटी को भी तरस गया हूं। बाजार का चप्पा चप्पा मेरी जिंदगी पर लानत भेजता है। दुकानदार मुझे देखते ही चावल और चीनी की बोरियों के पीछे छुप जाते हैं। मेरा बस इतना ही कसूर है कि मैं वकील अफजल नवाब के घर का खानदानी नौकर हूं। हाय, कॉलोनी के दूसरे साहब लोगों के नौकर को देखो,
1: इधर मालिक घर से रुखसत हुए, उधर नौकर मालिक बन बैठे,
0: और एक हम हैं, ये फटा नेकर और सदियों पुरानी बंडी पहने घूम रहे हैं। सच, अब जुओं और खटमलों को भी इन कपड़ों में रहने में शर्म आती है।
2: रहमत, रहमत।
0: लो, आ गया कमबख्त।
2: अरे कहाँ है रहमत?
1: इधर हूँ, इधर खुले आसमान के नीचे सितारों को कोस रहा हूँ। आइए।
2: क्या बक रहे थे तुम?
0: जो सुन रहे थे जनाब।
2: क्या कहा?
0: जी मैं कह रहा था, फरमाइए।
2: तू बाजार गया था?
1: अब आ गया हूँ।
2: क्या क्या पकाया है? मेरा मतलब खाने में क्या क्या है?
1: बड़े पतीले में 2 किलो उबला पानी, छोटी देगची में 1 किलो उबला पानी, और कढ़ाई में।
2: ये क्या बकवास है, पानी में कुछ नहीं डाला?
1: मैं खुद बैठ जाऊं।
2: लाहौल बिला कुव्वत। अरे तुझे खाकर बीमार होना है क्या? सब्जी तरकारी वगैरह कहाँ है?
1: आपने मुझे सिर्फ 15 रुपए दिए थे। ये लीजिए, जो मैंने 15 रुपए की शॉपिंग की है खुद ही देख लीजिए।
2: ये क्या, 1 आलू, आधा टमाटर, 1 पुड़िया आटा, और सुनो इन 2 नन्ही पुड़ियों में क्या है?
1: चाय की पत्ती और चीनी।
2: मुझे शक है रहमत के तुम कहीं हेरा फेरी ना करते हो।
1: हेरा फेरी ना करते हो? कर दो केस, ले जाओ अदालत। अरे देते हैं 15 रुपए और खाना चाहते हैं बिरयानी। वकील हो ना, इल्जाम तो लगाएंगे ही।
2: तौबा, क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है?
1: जब मुवक्किलों से भारी भरकम फीस लेते हो तब महंगाई याद नहीं आती।
2: चुप, ये बिजनेस की बात है, लेकिन 15 रुपए
1: जनाब में? जब मैं बाजार से 2 रुपए का आटा, 1 रुपए की चीनी, 1 रुपए की चाय की पत्ती लाता हूँ तो मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है। सब मेरी तरफ यूं देखते हैं जैसे मैं कटोरा लिए पीर की दरगाह से आ रहा हूँ।
2: खामोश। अरे पिछले हफ्ते 25 रुपए का राशन डलवाया था, कहाँ गया?
1: मेरा निकाह था, उसमें लग गया होगा। उफ, हद है कंजूसी की भी। बस करें, अब ना होगी ये नौकरी, हद होगी इंसानियत की। जब से होश संभाला है तनख्वाह की शक्ल नहीं देखी।
2: एहसान फरामोश, सर छुपाने को छत और पेट में डालने को निवाले मिल रहे हैं, तब भी 1.5 गज लंबी जबान।
1: बस करें मालिक, मैं तो यहाँ एक ही आसरे पर बैठा हूँ कि आपका कौन है, कब्र में पैर लटके हैं, जाने कब अल्लाह मियां को प्यारे हो जाए। आपके बाद तो सब कुछ वाहिद साहब का होगा, तब शायद मेरे दिन फिर जाए।
2: ना शुक्रे, अरे मर जा कहीं जाकर।
1: जा रहा हूँ, ये लो।
2: ये क्या है?
1: खुद ही बदन से नाप लो।
2: ये तो पाजामे का कपड़ा लगता है। क्यों रहमत, मेरे बेटे पाजामे का कपड़ा है ना?
1: आपके कफन का है
2: क्या?
1: जिंदगी भर की कमाई का ढेला ढेला जोड़कर यह कफन खरीदा है। मैं खुद तो इस घर से बेघर होकर दरिया में डूब जाऊंगा, लेकिन मालिक की लाश का फजीता हो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने जीते जी आपकी बिना कफन की लावारिस लाश को ख्वाब में भी नहीं देख सकता।
2: ठीक।
1: हाय, लोग क्या कहेंगे?
2: अबे क्या कहेंगे लोग?
1: अफजल वकील उर्फ शहर के नामी गिरामी कंजूस नवाब बिना कफन के हवेली के बीचों बीच खड़ पड़े हैं। हाय, मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं इस घर का पुश्तैनी नौकर। हाय, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
2: खामोश। अबे तू इस घर का मुंह लगा नौकर है, वरना कमबख्त ना मुराद, इतनी बेहयाई।

0: जी चाहता है दफा 302 लगा के तुझे फांसी पर चढ़वा दूं। तूने तूने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा?
1: नहीं, मैं तो आज ही आ गया इस हवेली में, मैं तो चला भाई साहब के पास।
0: अबे अबे कूड़ मग्स, उसके हॉस्टल जाकर उसकी पढ़ाई में रुकावट ना खड़ी कर। डॉक्टरी कर रहा है मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर चश्म, कल को वो डॉक्टर बनेगा, मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे।
1: सीधा कहो, ईद के लिए बकरे को हलाल करने से पहले मोटा कर रहे हो।
0: लानत है तेरी जबान पर, अगर तेरा नाम मेरे खानदान की पुश्तैनी इज्जत के साथ ना जुड़ा होता
1: तो मेरा सिर कलम करवा देते। क्यों?
0: एक दिन तो तूने मेरे हाथों ज़िबा होना ही है रहमत, पर इससे पहले मेरी एक बात सुन ले। इधर आ, राज की बात है।
2: क्या आज मुर्ग मुसल्लम पकेगा?
0: चिब्बे भुकड़ है, खाने के सिवा कुछ सोचता ही नहीं तुझे? अरे बेवकूफ, हमारे दिन फिरने वाले हैं।
1: जी हाँ, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं।
0: भाई क्या बकवास कर रहा है?
1: बकवास नहीं, पर यकीन नहीं होता।
0: अरे नामाकूल, बेअदबी बहुत करता है। सुन, वो बन्ने मियाँ है ना?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वो सीतापुर ट्रेवल्स वाले?
0: हाँ हाँ, वही। वो अपनी साहबजादी को इस घर की मलिका बनाने को तैयार है।
1: आहा, क्या कहने, खंडहरों की मलिका।
0: अबे चुप, तब हवेली ऐसे थोड़ा ना रहेगी। अरे डॉक्टर के साथ बेटी के निकाह का ख्वाब देखने वाले के भी तो कुछ अरमान होंगे, फिर देखना बेटा।
1: लेकिन मालिक, हवेली के मच्छर, मक्खियां, खटमल, तिलचट्टे, चमगादड़ वगैरह सब घर से बेघर हो जाएंगे।
0: और फिर तू रोज खाएगा मथुरा के
1: पेड़े,
0: हापुड़ के
1: पापड़,
0: इलाहाबाद के
1: अमरूद,
0: बनारस के
1: पान।
0: बस भी कर शैतान, लेकिन अभी तू वाहिद को कुछ नहीं बताएगा।
1: अच्छा,
0: मेरा लगते जिगर सीधा साधा है, उसूलों का पक्का है, मुल्क के लिए जज्बाती है, गरीबों का मसीहा है।
1: हुजूर, आप ही का ही है, सच यकीन नहीं होता।
0: रहमत रहमत, ये आज का गर्म खून है, मुझे देख, खून पसीने की कमाई को कैसे सेंध सेंध कर रखा है।
1: जानता हूँ हुजूर, जो वक्त पर अपनी औलाद को दमड़ी देकर राजी नहीं, उसकी कमाई का क्या फायदा।
0: वाह, तो जब से पढ़ रहा है स्कॉलरशिप ले रहा है, बचपन से अब तक किताबें, फीस, सभी कुछ उसे अपने स्कूल से मिला है। हाँ। और अब डॉक्टरी की तालीम में भी सारी सहूलियात मिली हुई हैं। जैसे ही साहबजादे डॉक्टर बन जाएंगे, जमाना मेरे कदमों में होगा और मैं एक आलीशान नर्सिंग होम अपने फर्जंद के लिए बनवाऊंगा।
2: अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। इस नर्सिंग होम में गरीबों का इलाज होगा, बेबस बेसहारा मुफ्त में दवाइयां लेकर आपको दुआएं देंगे। आह मेरे आका, मुझे माफ कर, मैंने अफजल नवाब जैसे नेक इंसान को हमेशा शैतान क्यों समझा।
0: नामाकूल, मुझे शैतान कहता है? वैसे भी रहमत, ये नर्सिंग होम मेरे पैसों से नहीं बनेगा।
1: क्या? तब क्या बेरी के झाड़ पर बैठी चुड़ैल आपको पैसे देगी?
0: क्या बोले जा रहा है?
1: कहेगी, ए लो वकील साहब, मेरी हरियाणा की लाठी निकली है, आपने फर्जंद की प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा अस्पताल खोल ले।
0: कमकल, अबे इस नर्सिंग होम के पैसे तो लड़की वाले देंगे।
1: क्या?
0: हाँ।
1: यानी के सीतापुर ट्रेवल्स वाले?
0: तेरे मुंह में घी शक्कर?
1: अजी घी शक्कर तो बाद में देना, अभी तो मुझे खाना खिलाइए।
0: अच्छा,
1: बहुत भूख लग रही है।
0: ओहो रुक रुक, ये ले पैसे और मेरे लिए बाजार से खाना लिया जा।
1: और मैं?
0: कितना अंदाज समझ है रहमत, अरे आज जुमेरात है, पीर की दरगाह पर नहीं जाना क्या?
1: समझ गया, जुमेरात है, बाबा सुकून दे।
0: हाँ जा बेटा जा।
3: अल्लाह मियाँ के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे।

0: रहमत मियां, अरे रहमत मियां, अरे भाई कहां हो रहमत मियां? लो ये रहे।
1: अरे रहमत मियां, ये क्या हो रहा है?
2: अरे वाहिद मियां सलाम।
1: हाँ
2: वाहिद साहब, देख नहीं रहे, कटोरे में से चिल्लर निकाल कर गिन रहा हूँ।
1: कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई तुम आए दिन वैसे भी एक नया तमाशा खड़ा किए रहते हो। अच्छा ये बताओ अब्बा जान कहाँ है?
2: साहब तिजोरी पर है, माफ करिए, वकील साहब अंदर वाली कोठरी में बैठे रोकड़ा गिन रहे हैं।
1: ओफो, अब्बा न जाने कब बदलेंगे।
2: क्या बात है मियां, भरी जवानी में ये फूल सा खिला चेहरा सूखे चुहारे जैसा क्यों हो गया है?
1: अब तुम्हें क्या बताऊं रहमत मियां।
2: ठीक है जनाब, हम ठहरे इस घर के नौकर, अब भला हमें अपनी पोशीदा बातों में कौन शामिल करने लगा?
1: अरे रहमत मियां, अरे भाई देखो तुम ऐसा ना कहो, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है। दरअसल रहमत मियां मैं काफी परेशान हूं।
2: हैं? वजह जान सकता हूं आपकी परेशानी की?
1: रहमत मियां मेरा एक जिगरी दोस्त है राहुल, वो बहुत बीमार है। उसके सिर में ट्यूमर है।
2: क्या आप डॉक्टरों के होते क्या वो ठीक नहीं हो सकता?
1: अरे भाई होने को तो वो खुद भी डॉक्टर है, पर उसका केस काफी सीरियस है, हम सब के हाथों की पहुंच से बाहर। एक नामी तजुर्बेकार डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है और उसने ऑपरेशन करने की सलाह भी दी है।
2: फिर मुश्किल क्या है, कर दो ऑपरेशन।
1: रहमत मियां हम सब डॉक्टर्स ने फंड इकट्ठा किया है, लेकिन लेकिन अभी भी 10,000 रुपए और चाहिए।
2: 10,000 रुपए?
1: जी।
2: देखा जाए तो ये रकम आपके अब्बा हजूर के हाथ का मैल है, अगर देना चाहे तो।
1: जानते हो मेरी पॉकेट मनी कितनी है?
2: जानता हूँ, 10 रुपए।
1: और जानते बूझते हुए भी ये कहते हो कि अब्बा से कुछ मदद मिल जाए। सच, घर आने की तबीयत भी नहीं करती, सबके सामने मजाक बनता है सो अलग, इधर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, अब मैं करूं तो क्या करूं?
2: वैसे वकील साहब अपनी कमाई पर भले ही सांप की तरह फन मार कर बैठे रहें, पर आपके दादा की दौलत पर कब्जा करके बैठना कहां की इंसानियत है?
1: देखो ट्यूशन से मैंने जो भी कमाया उसका भी एक एक रुपया इलाज में लगा दिया।
2: वाहिद मियां जब सांप टेढ़ी उंगली से, उफ तौबा, मेरा मतलब है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। मेरा खानदानी भेजा कुछ तदबीर करने के लिए बेचैन हो रहा है।
1: अरे रहमत मियां, रहमत मियां, हाँ? मेरे दोस्त को जिंदगी मिल जाए तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे और उसकी जवान बीवी की दुआएं तुझे फरिश्ता बना देंगी, फरिश्ता।
3: वाहिद, वाहिद,
1: अरे
3: वाहिद,
1: अरे रोशनी तुम यहाँ?
3: आई एम सॉरी वाहिद, तुमने घर आने के लिए मना किया था लेकिन लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा। वाहिद राहुल इज वेरी सीरियस है, कुछ करो वाहिद, कुछ करो। वैसे मैंने डैडी को पैसों के लिए लिख दिया है लेकिन पैसे आने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, तब तक तुम।
1: मैं किस कदर शर्मिंदा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। काश मैं कहीं से कुछ इंतजाम कर सकता।
2: ये रोशनी बीबी भी आपकी तरह?
3: जी मैं भी मेडिकल में हूँ, इन्हीं की तरह डॉक्टर बनूंगी।
1: अरे मेरी तरह क्यों, मुझसे बेहतर ही साबित होगी, मैं जानता हूँ।
2: रहमत यहाँ तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। वाहिद मियाँ आज वकील साहब आपकी शादी की बात कर रहे थे, यानी कि आपका रिश्ता किसी ऊंचे खानदान में हो जाए तो।
1: नामुमकिन, मुझसे पूछे बगैर अब्बा कोई कदम नहीं उठा सकते।
2: अजय कदम तो उठा ही लिया है, कोई सीतापुर ट्रेवल्स हैं, उनकी साहबजादी इस घर की मलिका बनने जा रही हैं।
1: हरगिज नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा।
3: लेकिन वाहिद आपको इसमें एतराज क्यों है?
1: ये तुम कह रही हो रोशनी?
3: जी हाँ मैं ही कह रही हूँ,
1: ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे।
3: अच्छा वाहिद मेरा घर कहाँ है?
1: सीतापुर में।
3: और मेरे डैडी क्या करते हैं?
1: अरे भाई उनकी कोई प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी। गॉड, अरे अरे रोशनी, तुम सीतापुर ट्रेवल्स
3: जी?
1: अरे
3: सही फरमाया जनाब, मैं ही तो हूँ जो आपकी इस हवेली की होने वाली मलिका।
1: ओह रोशनी,

0: मैं कितना खुशकिस्मत हूँ।
1: अरे वाह, क्या इत्तफाक है, इधर आप दोनों को अल्लाह मियां ने मिला दिया और उधर मेरे दिमाग के सब दरवाजे, रोशनदान, खिड़कियां दना दन खुलकर 10,000 रुपए जुटाने की तरकीब बता रहे हैं।
2: क्या सच?
1: हाँ, बस अब आप देखते जाएं इस रहमत का शैतानी दिमाग क्या गुल खिलाता है।
3: देखिए रहमत मियां, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी?
1: वाहिद मियां, बेफिक्र होकर दोस्त की तीमारदारी करें, मैं अभी 1-2 घंटे के बीच 10,000 रुपए लेकर अस्पताल में हाजिर हुआ।
2: ओह मेरे अच्छे रहमत।
1: रोशनी बीबी, आप अपने होने वाले शोहर को जरा प्यार से थाम कर ले जाएं, वरना ये यूं ही अच्छी रहमत, प्यारे रहमत, मेरे रहमत कहते रहेंगे और मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगा।
4: वाहिद, हाँ? चले, वरना कामयाबी में खलल पड़ सकता है।
3: अरे भाई नहीं नहीं नहीं, हमें रहमत मियां पर पूरा भरोसा है। रहमत मियां, हमारा काम हो जाना चाहिए।
1: हाँ, क्यों नहीं,
3: चलो भाई।

0: मर गया, अरे लुट गया मेरे आगा, तेरे दिन कभी नहीं फिरेंगे, हम दोनों भूखा ही मरेंगे। आज ये सब भी देखना था क्या, या मेरे मालिक मुझे ऐसा होने से पहले उठा क्यों नहीं लेता।
1: अबे बेसुरे बकरा, इसके बकरे की तरह क्यों मिमी आ रहा है? अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी तुमने
0: नवाब साहब?
1: अबे तूने मुझे नवाब साहब कहा?
0: जी नवाब साहब।
1: अबे आगे बोल आगे।
0: हाँ, कहने से पहले ये जबान कट क्यों नहीं जाती?
1: रहमत रहमत बोलता है या उठाऊं ये छड़ी?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करना, लेकिन इतना जरूर है सुनकर आप भी हाय हाय ना करने लगे तो मेरा कसूर नहीं।
1: अबे पहेलियां ना बुझा, ये मगरमच्छ के टसुए मेरे फायदे के लिए बह रहे हैं, मुझे इस बात का शुबा है।
0: वकील साहब दिल थाम कर सुनिए, वाहिद मियां आपके लखते जिगर किसी रोशनी नाम की डॉक्टरनी से निकाह करने वाले हैं।
1: क्या कहा?
0: सोलह ने सच कहा मेरे मालिक, कह रहे थे मेरे किसी जिगरी दोस्त की तबीयत खराब है, मुझे 50,000 रुपए उसके इलाज के लिए चाहिए।
1: अच्छा,
0: मेरा बाप तो कंजूस मक्खी चूस है,
1: बहुत अच्छे,
0: दमड़ी नहीं देगा। तो उस डॉक्टर ने और उसकी सहेलियों ने 10,000 रुपए जमा करके वाहिद मियां को दे दिए।
1: अच्छा,
0: लेकिन साथ ही ये शर्त रख दी कि वाहिद मियां रोशनी से निकाह कर लें।
1: मैं उस उल्लू के पट्टे को जेल भिजवा दूंगा, फांसी चढ़वा दूंगा।
0: मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा मतलब है आप वाहिद को कुछ नहीं कह सकते।
1: हाँ।
0: इश्क करना कोई जुर्म नहीं।
1: इश्क इश्क
0: जी, वाहिद मियां और रोशनी आपस में
1: मैंने इनके इश्क का भूत ना उतार दिया।
0: बात सिर्फ इश्क ही नहीं है मेरे आका, बात दौलत की भी है। 30-40 हजार में छोकरी ने आपकी करोड़ों की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खरीद लिया। हाय, आज अगर आप सांप की तरह तिजोरी पर फन मार कर ना बैठे होते
1: तो
0: वाहिद मियां 50,000 का दाना चुग कर आपके ख्वाबों को कब्र में दफन ना कर पाते।
1: अच्छा।
0: हाय, अब सीतापुर वालों की इकलौती साहबजादी के करोड़ों रुपए खाक में मिल गए।
1: बस करो रहमत, बस करो, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। बोलो बोलो, क्या हुआ वाहिद के दोस्त को?
0: जनाब ब्रेन ट्यूमर।
1: ब्रेन ट्यूमर?
0: जी हाँ, लाखों रुपयों की जरूरत है।
1: अच्छा,
0: ये लड़के तो बस 40-50 हजार में ही खुश हो रहे हैं। वैसे लीडर तो अपने वाहिद में ही है ना, मोटा और मीठा दाना डाले हुजूर, तो आपकी मुर्गी आपके कब्जे में आ जाएगी। दोस्त की जिंदगी के सामने डॉक्टर की मोहब्बत का भूत उतर जाएगा।
1: ठीक,
0: मेरा यकीन करें मालिक।
1: तेरी बात में दम है, मैं अभी 1 लाख का इंतजाम किए दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर ही वाहिद मेरे कदमों में पड़ा मिलना।

0: चाहिए, समझे तुम?
1: घंटा तो दूर की बात है हुजूर, इस पुश्तैनी गुलाम का यकीन करें, नस नस में बिना खाया नमक दौड़ रहा है। बस चंद मिनटों की मोहलत दे मेरे आका, मैं यूं गया और यूं आया।

0: अब्बा हुजूर आप फरिश्ता हैं।
1: अरे
0: हुजूर, मैं आपके कदमों की खाक हूँ अब्बा हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ अब्बा हुजूर।
1: वाहिद
0: अब्बा हुजूर, कानी लंगड़ी लोली भेंगी मोटी पतली जैसी भी बीवी दिलवाएंगे उसे मुमताज महल समझकर सिर पर बैठाऊंगा अब्बा हुजूर।
1: अरे उठो उठो मेरे नूरे चश्म, जरा तैयार हो जाओ, शाम को सीतापुर ट्रेवल्स के मालिक नवाब बनने मियां आ रहे हैं अपनी साहबजादी के साथ।
0: जी सर। अब्बा, राहुल का ऑपरेशन हो गया है।
1: अच्छा,
0: उम्मीद है जल्दी ही उसे होश भी आ जाएगा।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: अब्बा हुजूर, उसकी बीवी आपके बहुत एहसान मंद है।
1: अच्छा, अरे वाहिद, पता नहीं 1,00,000 रुपए देने के बाद मैं खुद को क्यों इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। बरसों के बाद एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर फैल गया है। अस्पताल में भी तेरे दोस्त की बीवी का मासूम बेबस चेहरा देखकर सारी रात मैं सो नहीं सका।

0: मालिक मालिक, नवाब बन्ने मियां अपनी साहबजादी के साथ तशरीफ ले आए हैं।
1: अरे जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ, जाओ।
0: राहुल को होश आ गया है, ऑपरेशन कामयाब रहा।
1: अच्छा,
0: उनकी बीबी निशा भी आई हैं।
1: अरे रामा, तुम उन्हें भी इज्जत के साथ अंदर ले आओ, जाओ जाओ।
0: अभी लेके आया।
2: आदावर से वकील साहब।
1: आदावर से, आदावर से।
2: ये है मेरी सब कुछ।
1: अच्छा,
2: मेरी नूरे चश्म।
1: हाँ, तशरीफ रखिए।
2: रोशनी। वकील साहब
1: जी,
2: एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया।
1: हाँ, हाँ?
2: वो ये है कि ये डॉक्टरी पढ़ रही हैं।
1: डॉक्टरनी? रोशनी। अच्छा अच्छा।
3: नवाब साहब
1: जी,
3: मैं निशा आपकी बहू आदाब बजा लाती हूँ। आप फरिश्ता है वकील साहब।
1: अरे कैसी बातें करती हो बेटी, वाहिद और राहुल में कोई फर्क नहीं है।
3: अरे डॉक्टर रोशनी, आप भी यहाँ हैं?
0: अल्लाह मियां, मामला संभालो।
2: भाभी, रोशनी को तो आना ही पड़ा ना।
3: ये लीजिए, आज नहीं तो कल, आखिरकार तो इन्हें इस हवेली में आना ही था ना।
1: रहमत रहमत नामाकूल भांड, मुझसे दगा है। तुम जानते थे कि रोशनी कौन?
0: बस करें हुजूर, अब आप ये ना भूलें कि आप फरिश्ता बन चुके हैं।
4: अब्बा अब्बा, मुझे आप पर फक्र है। अब्बा
1: फक्र है।
2: भाई देखो, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये बताएं कि आपको हमारी साहबजादे का साथ तो कबूल है ना?
0: कबूल कबूल।
1: अबे चुप।
4: जी नवाब साहब, अब्बा की मर्जी के आगे भला मेरी क्या मजाल।
1: तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं।
4: मौजूर
0: मालिक।
1: खामोश। ये निकाह तभी हो पाएगा जब नवाब बनने मियां मेरे साथ गरीबों के लिए एक अस्पताल खोलने में मेरी मदद करेंगे।
0: हुर्रे
2: हुर्रे।
0: मेरे मालिक, आज मैं वाकई आपका सही मायनों में गुलाम हो गया। मुझे जो कुछ मर्जी कह डाली है, कहिए, मुझे गाली दीजिए।
1: अरे कम अक्ल, मुझे इस मकाम तक पहुंचाने वाला तू ही तो है। उठ उठ। अरे तेरी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। अरे मेरे दिल में, तूने ही मुझे सिखाया है।

0: देने में कितना सुख है, किसी की मदद करने से दिल को कितनी तसल्ली मिलती है, चैन मिलता है। क्यों?
1: हम अस्पताल खोलेंगे और एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे और जिसके ट्रस्टी हमारे रहमत मियां होंगे।
2: वाह! रहमत मियां!

अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा स्नेहा शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान था मैं फरिश्ता बन गया। पेशकश परवीन सलाम फरीदी की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे श्याम अरोड़ा, पवन कौशिक, नीरू अग्रवाल, एसपी कोवाडी और बनवारी लाल झोल। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस समाप्त कर रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA माहिदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वज़ीर आज़म मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खलीजी इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले का मनसूबा मुलतवी कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू हो रहे अपने 2 रोजा चीन के दौरे पर रवाना हो गए। और सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने कैलिफोर्निया में एलोन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादे हाकून और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनस गेर स्टोर ने भी सरबरा मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के निफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत और EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें। जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तहत अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेज़ी से वसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत की उमंगों भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया। सरबरा मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज़्यादा शुरका और 50 से ज़्यादा कंपनियों के CEOs ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड पंजुम की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने वज़ीर आज़म के नॉर्वे दौरे के बारे में जोर देकर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुल कहल समंदरी पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इटली की वज़ीर आज़म मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे।

ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की कलीदी शराकत दारी को मजबूत करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत नॉर्डिक तीसरी सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोबा जाति तावुन में मददगार साबित होगा। साबिका सरबरा कॉन्फ्रेंस साल 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में हुई थी। सरबरा कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों में तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक, इख्तरा, पायदारी, काबिल तजी तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के निफाज के साथ सरबरा कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के राबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत $19 अरब है। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी तावुन में भी मददगार साबित होगी और आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़राए आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मंसूबे को मुलतवी कर दिया है, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि कतर के अमीर तमीम हमद अस्सानी, सऊदी अरब के वलिया शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुलतवी कर दें। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और मगरबी एशिया के मुल्कों के दरमियान जल्द ही एक काबिल कबूल समझौता हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुजवजा समझौता इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान के पास न्यूक्लियाई हथियार ना हों। अलबत्त सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमरीका की फौजें फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज चीन के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे। ये दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के अख्ताम के एक हफ्ते बाद हो रहा है। जनाब पुतिन आज शाम तक चीन पहुंच जाएंगे। उनके इस दौरे को करीबी नज़र से देखे जाने का इम्कान है, क्योंकि चीन और रूस के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। क्रेमलिन ने कहा है कि जनाब पुतिन अपने चीनी हम मनसब के साथ अहम इलाकाई और आलमी उमूर समेत दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताउन पर तबादला ख्याल करने का इरादा रखते हैं। ये दौरा चीन रूस दोस्ती माहदे के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है, जिस पर साल 2001 में दस्तखत किए गए थे। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने हाई प्रोफाइल कानूनी मुकदमे में अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले को ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। ये मुकदमा मसनूई जहानत के मुस्तकबिल से मुतालिक सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई थी, जिस पर सभी की निगाह थी। ऑकलैंड की विफाकी अदालत के जजों ने मुत्तफिका तौर पर पाया कि एलोन मस्क ने कानूनी मुकदमा दायर करने में काफ़ी ताखीर कर दी। जजों ने एलोन मस्क के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ओपन एआई ने कॉरपोरेट मुनाफे की बजाय इंसानियत के फ़ायदे के लिए मसनूई जहानत को डेवलप करने के अपने असल मिशन को तर्क कर दिया है। एलोन मस्क ने दलील दी थी कि ओपन एआई ने अपने उन गैर मुनाफा बख्श नज़रियात को तर्क कर दिया है जिसकी बिना पर यह कायम किया गया था, और इसके बजाय ओपन एआई ने अपनी तवज्जो सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने पर मरकूज कर रखी है। एलोन मस्क और ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन के दरमियान इस अदालती ड्रामे के अलावा इस मुकदमे ने उस बढ़ती कशीदगी को भी बेनकाब कर दिया है कि किसे मसनूई जहानत एआई को कंट्रोल करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को किस रफ्तार के साथ बढ़ना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की हैं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, लचकदार
عوامی نظام صحت

0: और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जे पी नड्डा आलमी सेहत के 79वीं असम्बली में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगी। अमरीका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर एटलांटा में G20 वज़रा खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबरा इजलास की तेज़ी से तैयारी कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वज़रा खारजा शिरकत करेंगे ताकि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ को आगे बढ़ाने के G20 के बुनियादी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। ये सरबरा इजलास अमरीका के क़याम के 250 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात के साथ मुनक़िद होगा। G20 में अमरीका, भारत, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत बड़ी मईशतें शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी GDP के तकरीबन 85% और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA माहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खलीजी इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले का मनसूबा मुलतवी कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन आज से शुरू हो रहे अपने 2 रोज़ा चीन दौरे पर रवाना हो गए। और सैम ऑल्टमैन और ओपन AI ने कैलिफोर्निया में एलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। DD फ्री डिश पर भी उर्दू सर्विस की नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब हैं। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

लैला मजनू फिल्म का नगमा अभी अपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना। हमारे आज की प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में समात फरमाइए। फिल्म का नाम है पुकार।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फिल्मी दो गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम।
1: हिंदुस्तानी उलूम और तसानीफ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कदीम ज़माने से हिंदुस्तान में एक मखसूस निज़ाम तालीम मौजूद रहा है। इस निज़ाम में नज़री और अमली उलूम को एक साथ पढ़ाया जाता था। बहुत से इल्मी शोबे ऐसे थे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के वैदिक मज़हब से भी था। दौरे वुस्ता में निज़ाम तालीम और मदरसों की रिवायत को ऐसा इस्तेहकाम मिला कि हिंदुस्तान के बेशतर शहर और कस्बे कुछ मखसूस तालीमी इदारों के बायस बेहद मकबूल रहे। हिंदुस्तान की कदीम तारीख साज यूनिवर्सिटियों में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यूनान और चीन के उलमा तक तालीम हासिल कर चुके थे। बैरिनी ममालिक से तलबा की आमद का यह सिलसिला तारीख के तमाम अदवार में जारी रहा और मदरसों की रिवायत फरोग पाती रही। सन 1690 में कप्तान हैमिल्टन खलीज फारस के रास्ते से हिंदुस्तान आया। उसने सबसे पहले हिंदुस्तान के उस हिस्से को देखा जो सिंध के नाम से मौसूम था। सिंध का ये इलाका अब पाकिस्तान में है। इसी इलाके में तारीख का कदीम शहर ठट्टा मौजूद था। कप्तान हैमिल्टन ने अपने सफरनामे में लिखा है, ठट्टा शहर उलूम फिका फलसफे और सियासियात के लिए मशहूर है। इन उलूम में तालीम और तदरीस के लिए तकरीबन 400 मदरसे इस शहर में मौजूद हैं। जर्मनी के मुमताज मुस्तशरिक मैक्स मुलर ने हिंद के सरकारी कागजात का जायजा लेने के बाद लिखा है, बरतानवी हुकूमत से कबल बंगाल में 80,000 देही मदारिस मौजूद थे। दूसरे लफ्जों में इसके माना ये हुए कि आबादी के हर 40 अफराद पर एक मदरसा कायम था। 1857 के अहद के एक मुवर्रिख लाला सेलचंद ने अपनी फारसी किताब तफरीहुल अमारात में लिखा है, दिल्ली और आगरा हिंदुस्तान के दो ऐसे शहर हैं जहां की तालीमी दर्जगाहें बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। इन तालीम गाहों के लिए शीराज से उलमा बुलाए जाते हैं और दूसरे मुल्कों के तलबा तहसील इल्म के लिए यहां आते हैं। हिंदुस्तान के मुगल हुक्मरानों को निज़ाम तालीम और तालीमी तर्जगाहों का ऐसा विरसा मिला है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नए मदारिस कायम किए हैं। इल्म के शोबों की तख्सीस की गई है और हमारे शहरों में खूबसूरत इमारात के साथ साथ इल्म फन की जिंदा और ताबिंदा तहरीकें हिंदुस्तान में इल्म के शानदार मुस्तकबिल की जमानत हैं। तुज़ुक़ जहांगीरी में भी इस सिलसिले का एक हवाला इस तरह मौजूद है, आगरा की आबादी सन्नाओं और तलबा से नीज आलिमों से भरपूर है। तालीमी निज़ाम को कदीम बुनियादों पर कायम रखते हुए नई जरूरियात का हामिल बनाया गया है। हिंदुस्तान में इल्मी मदारिस की रिवायत सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रही, देही इलाकों में भी घरेलू सतह पर और मदरसों की सतह पर तालीम का सिलसिला जारी रहा। सर थॉमस

0: श्रेया घोषाल और शान की आवाज़ों में ये नगमा था तुम सा नहीं देखा फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया।
2: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले

0: 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले दो देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडार होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी, उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो हैं वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं, तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा, और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से

0: कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है पूरा दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी बल दिया है, और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
0: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है कोर, वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं। इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय संघ के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए, और उसी तरीके से 20 साल के करीब हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया। और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में, और उसके बाद यूके के साथ किया, और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर लिए हैं। तो ये खास तौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था, वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी।
1: जी
0: तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है,
1: जी
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती हैं कि भारत की जो मार्केट है खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और
1: जी
0: वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां
1: जी
0: पे।
1: जी प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है, काफी लंबा, लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारे दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके

0: बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो यह है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है। और उसमें यह भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है, तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है, और प्लस के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो
1: जी
0: इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं,
1: जी
0: तो यूरोप को अच्छी तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी।
1: जी
0: भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर दस्तयाब हैं। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खलीजी इत्तेहादियों की दरखास्त पर ईरान पर हमले का मंसूबा मुलतवी कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू हो रहे अपने 2 रोजा चीन के दौरे पर रवाना हो गए। और सैम ऑल्टमैन और ओपन AI ने कैलिफोर्निया में एलोन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीहद शहजादा होकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकत दारों को चाहिए

टोक्यो भारत और EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के मौके के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें। जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तई अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया। सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शर्का और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तई खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब हेराल्ड शाह 5 की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे को जोर देकर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की कलीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसूबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोबे जाति ताउन में मददगार साबित होगी। सबका सरबराह कॉन्फ्रेंस साल 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों में तवज्जो दी जाएगी, जिनमें तकनीक और इख्तरा, पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तजारत और सरमायाकारी के राबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्याल का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरखास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मंसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गया है जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि कतर के अमीर तमी हम्माद अलसानी, सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊद और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुलतवी कर दें। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और मगरबी एशिया के मुल्कों के दरमियान जल्द ही एक काबिल कबूल समझौता हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुजवजा समझौता इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार न हो। अलबत्ता सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमरीका की फौजें फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अमरीका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर अटलांटा में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबराह इजलास की तेजी से तैयारी कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वजराए खारजा शिरकत करेंगे ताकि आलमी इस्तेकाम और खुशहाली के फरोग को आगे बढ़ाने के जी

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत एफटा यानी ईएफटीए मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खलीजी इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले का मंसूबा मुलतवी कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू हो रहे अपने 2 रोजा चीन के दौरे पर रवाना हो गए। और सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने कैलिफोर्निया में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। दिन के 1:15 होने को है, पहली मजलिस की नशरियात यहीं इख्तिताम पजीर होती है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ उर्दू सर्विस आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1969 की एक भारतीय हिंदी हॉरर फिल्म थी। इसमें अभिनय किया था सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारों ने। फिल्म की कहानी एक ऐसे राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो कि लाल दुल्हन के परिधान पहने हुए महिलाओं का अपहरण और हत्या करता है। दोस्तों, जानी दुश्मन 25 मई 1969 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म समीक्षकों से इसे मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। साथियों, व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था।

दोस्तों, ये अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और बात करें इस फिल्म के अभिनय की, तो सुनील दत्त थे लखन के रूप में, संजीव कुमार थे ठाकुर के रूप में, जितेंद्र अमर के रूप में थे, शत्रुघ्न सिन्हा शेरा के रूप में, स्पेक्टर के रूप में थे विनोद मेहरा, चंपा के रूप में थी रेखा, रेशमा के किरदार में थी रीना रॉय, और लाखन की छोटी बहन के रूप में थी गौरी नीतू सिंह। योगिता बाली ठाकुर की दुल्हन के रूप में थी, शांति के रूप में बिंदिया गोस्वामी थी जो कि शेरा की छोटी बहन बनी थी, सारिका बिंदिया के रूप में थी, विक्रम मंकादर शंकर के रूप में थे और प्रेमनाथ पुजारी के रूप में था। दुल्हन जिसका अपहरण होता है और वो जो अपहरण करते हैं उसके रूप में थे अमरीश पुरी, रजा मुराद ठाकुर ज्वाला प्रसाद के रूप में थे, शक्ति कपूर एक दुल्हन के साथ घोड़े पर सवार व्यक्ति के रूप में थे, मैकमोहन टैक्सी ड्राइवर के रूप में था और जगदीप नाथुराम के रूप में थे।

दोस्तों, अब लेते हैं आपके संदेश जो कि आपने हमें बड़े प्यार से भेजे हैं। सबसे पहला संदेश आता है हमारे पास वीरम गांव गुजरात अजीत भावसार प्रमिला भावसार जी का। अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और केथल हरियाणा से मधु नायक जी का। और अगला संदेश जो आया है हमारे पास गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी का। इन्होंने भी सही फिल्म पहचानी है और आप सभी ने हमें फिल्म को पहचान कर संदेश भेजे हैं। अगला संदेश है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर निर्मला नवाकर विशाल नवाकर जी का। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हमारे पास जो हमारा अगला संदेश है वो है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों, इस फिल्म के अधिकांश जो दृश्य थे वो जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र उधमपुर जिले के चेनानी और पटनी टॉप हिल स्टेशनों जैसे स्थानों पर फिल्माए गए थे।

0: अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरा दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच शामिल होणगे। पेट्रोल ते डीजल दियां कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर दा वादा कीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तियां नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते बिना छड्डण ते अपने पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है। पंजाब विच दो वख वख सड़क हादसों विच पंज लोकां दी मौत। पंजाब ते हरियाणा च आउंदे दिनां च लू दी स्थिति बनी रहेगी। ज्यादातर जिलियां विच पारा होर वधण दी संभावना। ते IPL क्रिकेट विच अज राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होणगे। इस सम्मेलन दा उद्देश तकनालोजी, नवियावणयोग ऊर्जा, रक्षा, स्थिरता अते व्यापार वर्गे खेतरां विच नॉर्डिक देशां नाल भारत दी रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंज नॉर्डिक देशां दे अपने हमरुत भवन दे नाल अज तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होणगे। इह सम्मेलन 2022 विच डेनमार्क दे कोपनहेगन विच होए। पिछले सम्मेलन तों बाद भारत अते नॉर्डिक देशां विचकार वधे होए खेतरी सहयोग नूं अगे होर वधाएगा। इस दौरान तकनीक अते नवीनता, स्थिरता, नवियावणयोग ऊर्जा अते डिजिटाइजेशन दे खेतरां ते ध्यान दित्ता जाएगा। TEPA दे लागू होण नाल सम्मेलन डूंगे व्यापार ते निवेश संबंधां नूं वधाउण दी कोशिश करेगा। इस ब्लॉक नाल भारत दा दुवल्ला व्यापार इस समें 19 अरब डॉलर है। इह सम्मेलन खेतर नाल साडे बहुपक्खी सहयोग नूं वधाउण विच मदद करेगा। इह आपसी हित दे आलमी अते खेतरी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा मौका भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन दे मौके ते डेनमार्क, आइसलैंड अते फिनलैंड दे प्रधानमंत्रियां नाल दुवल्लियां मीटिंगां भी करनगे। प्रधानमंत्री अज शाम दो दिना सरकारी दौरे लई इटली दे रोम पहुंचणगे। इस दौरे दा उद्देश व्यापार, निवेश अते तकनीकी नवीनता विच दवल्ले सहयोग नूं मजबूत करना है। भारतीय भाईचारे दे मैंबरां विच खुशी ते उम्मीद देखण नूं मिल रही है। अज अते भलके तक होण वाला इह दौरा इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दे निजी सदे ते हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम नाल मुलाकात कीती अते दोवां देशां विचकार रक्षा सहयोग नूं मजबूत करन ते सहमति प्रगटाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच रक्षा मंत्री ने कहा कि दोवां देशां विचकार वधाई गई व्यापक रणनीतिक भाईवाली महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अते वियतनाम सांझियां कदरां कीमतां दे आधार ते रक्षा, सुरक्षा ते खेतरी स्थिरता विच नजदीकी सहयोग सांझा करदे ने। श्री सिंह ने हनोई विच वियतनामी रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग नाल एक दवली मीटिंग भी की थी। दोवां धिरां ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सनद, सिखलाई अते खेतरी स्थिरता विच सहयोग नूं मजबूत करन ते चर्चा की थी। दोवां आगुआं ने वियतनामी हवाई फौज दे अफसर कॉलेज विखे स्थापित एक भाषा प्रयोगशाला दा उद्घाटन कीता। इस मौके AI अते क्वांटम टैक्नोलॉजी दे खेतर विच इक समझौता पत्र MOU दा वटांदरा कीता गया। इस तो पहला श्री सिंह ने वियतनाम के संस्थापक राष्ट्रपति हो ची मिन नूं उनां दी 136वीं जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। उनां कहा कि हो ची मिन दा दृष्टिकोण अगवाई अते विश्वव्यापी एकता प्रति अटुट वचनबद्धता पीढ़ियां नूं प्रेरित करती रहेगी। पेट्रोल अते डीजल दियां कीमतां विच अज करीब 90 पैसे फी लीटर दा वादा कीता गया, जो कि इक हफ्ते तों वी घट समें विच दूजा वादा है। दिल्ली विच पेट्रोल दी कीमत हुण 98 रुपए

0: और उसके लिए हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है। ये करीब 3 से 4 दिन का समय है, इसमें बारिश की कोई संभावना नहीं है, ड्राई कंडीशन रहेंगे।
1: आईपीएल क्रिकेट विच आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स नाल होएगा। ए मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे तो खेडिया जाएगा। आखिर से खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होंगे। पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर का वादा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तियां नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते जाण तक ना छड्डण दे अपने पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई हो वापस शेल्टर्स में भेजने के अपने हुक्म को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेती फरीदे रिक्सन, फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पेतिरी ओरपो, आइसलैंड की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा क्रिस्टन फरोस्ता दोतिर और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ओल्फ क्रिस्टर्सन भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिले तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरतहाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़े होगी। एक मजमून में जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खास तौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरतहाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इक्तसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज़े मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाया हुआ है, दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बैन अल-अक़वामी ताउन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई हैं। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनूब की एक जिम्मेदाराना आवाज़ के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाज़े संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दत तराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। سپریم کورٹ نے آج اپنے پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکہ لگائے جانے یا ان کی نسبندی کی

0: जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वह इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि यह लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक इकदार और दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक आला सतह की एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मकाम पर शुरू हो गई है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़रा आला सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये फी लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल की कीमत 96.07 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की कीमत 96.11 रुपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवेज ने चेन्नई के नवाही रेल नेटवर्क को उसा देने के लिए अर्ककोनम चेंगल पट्टू लाइन को दोहरा करने के प्रोजेक्ट के लिए 993 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। रेलवेज की वजारत ने कहा है कि यह 68 किलोमीटर तवील रेल लाइन अहम चेन्नई नवाही सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है जो चेन्नई के साहिल को ताम्बरम, चेंगल पट्टू और अर्ककोनम से मिलाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कौमी राजधानी में अगले 3 रोज तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री के दरमियान रहा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। कल रिज इलाके में वाक़ IMD स्टेशन में दर्जा हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस जबकि सफदरजंग स्टेशन में 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन में 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: मिजोरम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का काम शुरू हो गया है। SIR से मुतल्लिक एक रोजा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मिजोरम के आला इंतखाबी अफसर डॉक्टर लाल ओजामा ने आम लोगों और इंतखाबी कमीशन की उम्मीदों को पूरा करने की गरज से इज्तमाही कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी हैं। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फाइनल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتے فریدے ریکسن، فن لینڈ کے وزیراعظم، آئس لینڈ کے وزیراعظم اور سویڈن

0: by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टर्न म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय

0: योग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई

0: लगातार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स।

0: से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे, वो भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपनी बेमिसाल सुंदरता, मनमोहक मुस्कान और बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था। तो चलिए, इतनी जानकारियों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कलाकार के बारे में बातें हो रही है। तो आइए, आप सभी के लिए पेश है ये गीत। गीत सुनकर गेस कीजिए हमारे आज के इस कलाकार को।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हाँ।

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आज की जो हमारी कलाकार हैं वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला हैं। जी हाँ, मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ बॉम्बे चली गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 1942 में आई बसंत से हुई। लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की। 1950 के दशक में देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक, मधुबाला ने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कॉमेडी फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक नाटक तक शामिल थे। छोटी उम्र से ही फिल्मों की शौकीन होने के कारण वह अक्सर अपनी माँ के लिए अपने पसंदीदा दृश्यों का अभिनय करती थीं और अपना समय नृत्य करने और फिल्मी किरदारों की नकल करने में बिताती थीं।

श्रोताओं, आप में से कई सारे लोग मधुबाला जी का असली नाम शायद ही जानते होंगे। उनका असली नाम मधुबाला नहीं बल्कि मुमताज जहां बेगम दहलवी था। बतौर अभिनेत्री फिल्मी करियर की शुरुआत करने पर उनका असली नाम बदलकर स्टेज नेम मधुबाला रख दिया गया। मधुबाला जी ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया। उनके पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण उनकी छोटी बहन जाहिदा को छोड़कर मधुबाला एवं उनकी अन्य बहनें कभी स्कूल नहीं गईं। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी एवं पश्तो सीखी। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए 7 वर्षीय मधुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया, जहां वह ख्वाजा खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाती थी। उन्होंने वहां कई महीनों तक काम किया और बॉम्बे में बॉम्बे टॉक स्टूडियो के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हुई, जिन्होंने उन्हें 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका दिया। श्रोताओं, मधुबाला की प्रमुख फिल्मों में 1949 में आई फिल्म महल, 1951 की फिल्म तराना, मिस्टर एंड मिसेस पचपन जो 1955 में रिलीज हुई थी, 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज, 1960 की फिल्म बरसात की रात, काला पानी एवं सबसे प्रतिष्ठित फिल्म मुगल-ए-आज़म शामिल हैं। 1949 में आई फर्स्ट क्लासिकल हॉरर फिल्म महल जब रिलीज हुई, तब उसमें बेहतरीन अभिनय के कारण मधुबाला जी रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा ही, साथ ही साथ मधुबाला जी को एक नई पहचान भी दे दी।

ये है। इस फिल्म में सिर्फ उनका अभिनय ही नहीं बल्कि कला के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है। इसमें अनारकली की भूमिका उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म समीक्षकों को तथा दर्शकों को भी ये मेहनत और लगन साफ साफ दिखाई पड़ी। असल में ये मधुबाला और इनके ऑपोजिट दिलीप कुमार साहब की मेहनत ही थी जिसने इस फिल्म को सफलता के चरम पर पहुंचाया। इस फिल्म के लिए मधुबाला जी को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। मधुबाला जी का लगातार गिरता हुआ स्वास्थ्य उन्हें अभिनय करने से रोक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने इस फिल्म को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। फिल्म के निर्देशक वास्तविकता लाना चाहते थे। वे मधुबाला की बीमारी से भी अनजान थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग के लिए असली जंजीरों का प्रयोग किया। नतीजा ये निकला कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की लोकप्रियता के वजह से इस फिल्म को 2004 में पुनः रंग भर के पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया।

श्रोताओं, अगर बात करें मधुबाला जी के पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला जी की मुलाकात हुई और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे करीब 9 साल तक एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में रहे। इस जोड़ी ने तराना, संग दिल, अमर और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। मधुबाला और दिलीप कुमार जी की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे चर्चित रही। जैसा कि हमने बताया कि ये रिश्ता लगभग 9 साल तक चला, जो अंततः पारिवारिक और व्यक्तिगत अहम की टकराहट के कारण अधूरा रह गया।

श्रोताओं, दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला जी ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता एक बेहद दुखद और भावनात्मक रिश्ता था। मधुबाला जी वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VCD नाम जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसे आम बोलचाल में दिल में छेद होना कहते हैं। इस कारण से उन्हें बेहद तकलीफ होती थी तथा सांस लेने में परेशानी होती थी। उस दौर में इस बीमारी का इलाज ना होने के कारण

महज 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पर आज भी मधुबाला जी हमारे दिल में बसती हैं। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और टैलेंट जो हमने फिल्मों में देखी है, वो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

0: का हम सुतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी अतमाद, मुश्तरक अकदार और दिफा और सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने हनोई में वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ भी दोतरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई साझेदारी में इजाफे का जायज़ा लिया और बहरी सलामती, दिफाई सनत, तरबियत और इलाकाई इस्तेहकाम में मुश्तराक को मज़ीद मुस्तकम करने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले जनाब सिंह ने वियतनाम के बाबा कौम होशीमिन को उनके 136वें यौम पैदाइश पर उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। अमरीका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर अटलांटा में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबराह इजलास की तैयारी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे ताकि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के G20 के बुनियादी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। यह सरबराह इजलास अमरीका के क़याम के 250 साल पूरे होने की तकरीबात के साथ मुनाकिद होगा। G20 में अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत बड़ी मईशतें शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी GDP के तकरीबन 85% और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दो रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे। यह दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे के अख्ताम के एक हफ्ते के बाद हो रहा है। जनाब पुतिन आज शाम तक चीन पहुँच जाएंगे। उनके इस दौरे को करीबी नज़र से देखे जाने का इम्कान है, क्योंकि चीन रूस के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। क्रेमलिन ने कहा है कि जनाब पुतिन अपने चीनी हमनसब के साथ अहम आलमी और इलाकाई उमूर समेत दोनों मुल्कों के दरमियान माशी तआवुन पर तबादला ख्याल करने का इरादा रखते हैं। यह दौरा चीन रूस दोस्ती माहदे के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है, जिस पर 2001 में दस्तखत किए गए थे। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने हाई प्रोफाइल कानूनी मुकदमे में अरबपति कारोबारी एलन मस्क के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले को ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। यह मुकदमा मसनूई जहानत के मुस्तकबिल से मुतालिक सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई थी, जिस पर सभी की निगाहें थीं। ऑकलैंड की वफाकी अदालत के जजों ने मुत्तफ़िका तौर पर पाया कि एलन मस्क ने कानूनी मुकदमा दायर करने में काफ़ी ताखिर कर दी। जजों ने एलन मस्क के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ओपन एआई ने कॉरपोरेट मुनाफे के बजाय इंसानियत के फ़ायदे के लिए मसनूई जहानत को तैयार करने के अपने असल मिशन को तर्क कर दिया है। एलन मस्क ने दलील दी कि ओपन एआई ने अपने उन गैर मुनाफे बख्श नज़रियात को तर्क कर दिया है जिसकी बिना पर यह कायम किया गया था, और इसके बजाय ओपन एआई ने अपनी तवज्जो सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने पर मरकूज़ कर रखी है। एलन मस्क और ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन के दरमियान इस मुकदमे ने उस बढ़ती कशीदगी को भी बेनकाब कर दिया है कि किसी मसनूई जहानत को कंट्रोल करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को किस रफ्तार के साथ बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी पहले की इन हदायात को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि अवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस ना छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क़यादत में एक बेंच ने उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुकाम को यह हदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ بینچ نے خبردار کیا ہے کہ جو افسران ان ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہیں گے انہیں توہین عدالت اور تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن آج سے شروع ہونے والے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون مسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش دوستانہ فلم کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

0: कलामी शायर और अफसाना प्रोग्राम के सभी सामेईन को नईम का आदाब। रोशन चेहरा, भीगी जुल्फें, दूं किसको किस पर तरजीह, एक कसीदा धूप का लिखूं, एक गजल बरसात के नाम। इसी शायराना अंदाज को कुछ और वसत, कुछ और रोमानियत देते हैं और आपको सुनवाते हैं कलामी शायर। आज के कलामी शायर में अपना कलाम पेश कर रहे हैं जनाब अफजल मंगलोरी। आइए महजूज होते हैं उनके कलाम से।
1: गजल का मतला समात फरमाएं। दरून खाना दिल चाहता हूँ, दरून

हूँ। और ये भी शेर अर्ज है कि है मेरे अज़्म की जिद आ गई से, है मेरे अज़्म की जिद आ गई से, है मेरे

हूँ। और मक्ता समाज फरमाए इस गजल का कि बंदाज है दिगर मक्तल में अफजल,

सईदी, जिससे आराक हस्ती चमकने लगे, जिससे मेरे कलम को जुबां मिल गई, मेरे एहसास को जिसने बख्शी।

0: है।
1: और आखिरी बंद समाप्त फरमाए, मेरे धड़कन के दर्पण है दस्तक तेरी, मेरी सांसों के फूलों में तेरी महक, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ, है खुदा जो खुदा बस खुदा।

0: कलामी शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब अफजल मंगलौरी। उम्मीद करते हैं आपको ये कलाम ज़रूर पसंद आया होगा। और अब चलते हैं एक और सिंफ की जानिब, उर्दू की एक ऐसी सिंफ जो आपके जज्बात और आपके ख्यालात का इजहार करने का बहुत बेहतरीन जरिया है, और वो है अफसाना निगारी। और आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहतरमा जिलानी बानो का तहरीर करदा अफसाना वादा। तो आइए सुनते हैं ये अफसाना।
1: अम्मू अम्मू, अभी आप बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। हम तो समझे के अम्मू के आसपास खड़े उनके तीनों बेटे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे सब घबरा गए। अम्मू जिंदा हैं। हम समझे के हमने उनके मरने का दुख कितनी आसानी से सह लिया। अम्मू सबकी तरफ बड़े दुख के साथ देख रही थी। उनके सबसे बड़े बेटे ने कितनी जल्दी सफ़ेद कपड़ा डालकर अम्मू का मुंह छुपाना चाहा था। अगर अम्मू हाथ उठाकर चादर ना हटा देती तो शायद वो सब दूसरे कमरे में जाकर उन्हें दफन करने की तैयारी शुरू कर देते। वो सब नज़रें झुकाए खड़े थे, जैसे अम्मू ने देख लिया कि उनके मरने पर किसी की आंख से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। 2 बरस हो गए जब डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर अम्मू के सारे बदन में फैल गया है, किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता है। जब से ये बात उनकी दोनों बहुओं ने सुनी थी, वो अम्मू का और ज़्यादा ख्याल करने लगी थी। हर महीने फ़ोन पर अम्मू की खैरियत पूछती। दूसरी बहू अमेरिकन थी, वो इंडिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी वो हर साल आती, किसी 5-स्टार होटल में ठहरती, हैदराबाद की सैर तफरी से फुर्सत मिल जाती तो किसी दिन अम्मू की मिजाज पुरसी के लिए भी आ जाती। तीनों बेटे उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल भेजते थे। अम्मू के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर, बेहतरीन इलाज, घर में हर तरह का आराम, दिन रात खिदमत करने वाली ख्वाजा भी, जिसे दूर बैठी बहुएं इनाम और इकराम से नवाजती रहती थी। शिकागो में एक दिन सुबह सवेरे ख्वाजा बी का फ़ोन आया। बेगम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर साहब बोले उनके बेटों को फ़ोन कर दो, सबको जल्दी आ जाओ बोलो। इस फ़ोन से सारे घर में हलचल मच गई, सबके प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। उफ़ो, अम्मू हमेशा इसी तरह परेशान करती हैं, भला ये कोई मौसम है इंडिया जाने का? गर्मी के मारे सब मर जाएंगे हम। उनकी बहू नसीम घबरा गई। हेलो हेलो, चारों तरफ से फ़ोन आने लगे। न्यूयॉर्क से जमशेद कह रहा था, भाईजान ख्वाजा बी का फ़ोन आया है कि 24 घंटे, लेकिन मुझे इस वक्त लीव लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन जमशेद, तुम्हें याद है कि हम सब ने अम्मू से वादा किया था कि हम चारों भाई मिलकर उनकी डेड बॉडी उठाएंगे, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा, रशीद ने उसे समझाया। फिर दुबई से तीसरे भाई खुर्शीद का फ़ोन आया। भाईजान, हम सब मिलकर अमेरिका तफरी करने जा रहे थे, अभी निशी को भी साथ ले जाऊं, इंडिया में तो गर्मी बहुत होगी, आप वहाँ किसी 5-स्टार होटल में हमारे लिए रिजर्वेशन तो करवा दीजिए। हाँ भाई, मेरे लिए भी इस मौसम में इंडिया जाना बहुत मुश्किल है। अम्मू अच्छी भली होंगी, ज़रा दिल घबराया तो ख्वाजा भी से फ़ोन करवा दिया। खुर्शीद, अभी मैंने डॉक्टर आरिफ से बात की, वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। तो फिर मैं आ जाऊँगा, दिल्ली के एक सेमिनार का इनविटेशन भी आया है। अरे फिर तो हम 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे ना डेड, पिंकी ने खुश होकर कहा। हाँ बेबी, हम चारों ने अपनी अम्मू से प्रॉमिस किया है कि हम उनकी डेड बॉडी आफ्टर डेथ, क्या ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया डेड? उलझी सांसों के दर्द को दिल में थामे यही बात अम्मू भी सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में वो अकेली लेटी दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का अब कोई असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में न था। कांपते हाथ से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। पानी पानी, ख्वाजा भी कहाँ मर गई? किसका फ़ोन आया है, किसका खत आया? دروازے پر کون آیا ہے؟ خواجہ بھی کمرہ بند کیے اپنے میاں کے ساتھ سوتی رہتی تھی۔ بڈھی کو چلانے کی عادت ہو گئی ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی یہاں، آپ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو جی۔ امو کے میاں کی وکالت بس یوں ہی چلتی تھی، مگر امو نے جائیداد بیچ کر چاروں بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا۔ اچھی ڈگریاں ملتے ہی ان سب کے پنکھ نکل آئے اور انہوں نے امریکہ کی طرف پرواز کی۔ امو کو یہ بات اچھی نہ لگی، اتنی دور؟ اللہ میاں کے پچھواڑے ہم سب امریکہ میں جا بسیں گے اب؟ ہم سب؟ تمہیں کون لے جائے گا امریکہ؟ بچوں کے ابا نے ہنس کر کہا، امریکہ میں ماں باپ نہیں رہتے ہیں، وہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ اچھا، تو ماں باپ کہاں جائیں؟ امو نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا۔ کوڑے کی ٹوکری میں، ابا نے خفا ہو کر کہا تھا۔ ویران گھر کے آنگن میں بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈالتے میں امو سوچتی تھیں کہ کوڑے کا ڈھیر ہی بن گیا ہے یہ گھر، بار بار لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرے میں ماچس نہیں ملتی، پوسٹ مین کوئی خط پھینک جائے تو وہ کسی کیاری کے پیچھے پڑا مہینوں کے بعد ملتا ہے۔ ویسے بھی ان کے بیٹے اب خط لکھنے کی پرانی رسم بھول چکے تھے، کبھی ضرورت ہوتی تو فون کر لیتے۔ دودھ والا دودھ پھاٹک پر رکھ کر چلا جاتا ہے تو روز کتا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کسی آنگن میں بچے کی گیند گر جائے تو وہ اندر آنے سے پہلے امو کی صورت دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ کسی رشتہ دار کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ امو کے پاس آ کے بیٹھے۔ کتنی بار وہ فون پر کہتی تھیں، رشید اب میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، مجھے روز بخار آ جاتا ہے، کھانسی بہت بڑھ گئی ہے، اکیلے گھر میں میرا بہت جی گھبراتا ہے۔ مگر امو آپ کی بیماری کا علاج یہاں بہت مہنگا ہے، پھر گھر میں کوئی نہیں رہتا، آپ کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ رشید امو کو اپنی مجبوری سناتا تھا۔ اچھا تو پھر ہنی اور طارق سے کہو مجھ سے فون پر بات کر لیں، بچوں کے دیکھنے کو میرا بہت جی چاہتا ہے۔ بچوں کو یاد کر کے انہیں رونا آ جاتا تھا۔ وہ بات یہ ہے امو کہ بچوں کو اردو نہیں آتی، اس لیے وہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ امو فون رکھ دیتی تھی، میری بات کوئی بھی نہیں سمجھتا، نہ بچے نہ ان کے ماں باپ۔ جب تینوں بھائی امریکہ چلے گئے تو امو ابا

0: और दोस्तों अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए हमारा ईमेल का पता आप नोट कर लीजिए, प्रोग्राम कलाम शायर और अफसाना, प्रोग्राम इंचार्ज उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। और अब अपने दोस्त नईम को दीजिए इजाज़त, आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बचपन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

डर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसिकार शिव हरी। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अपना पन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

ए ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराए की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करिंदा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे नाल एक वार्ता दे नाल। वार्ता दा शीर्षक है संस्कृति दी संवाहक असाडी भागीरथी नदी ते सूफी संगीत। एक देश दी अर्थव्यवस्था विच हूँ देश दी नदियां दा बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। दुनिया भर दी सारी पुरानी सभ्यतावां दा विकास नदी दे किनारे ही थिया है। जिथा जल है उत्थां जीवन है। असाडे भारत देश दे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन्हां दा विकास कोई ना कोई नदी दे आसे पासे ही है। वध तो वध आबादी भी नदी आले शहर विच ही हुंदी है। असाडा भारत देश ते नदियां दा देश है ही। गंगा ते सिंधु नदी दे किनारे ही बहु पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी ते हड़प्पा सभ्यता दा विकास थिया। देश दे तकरीबन सारे वड्डे शहर दा विकास

0: सिंचाई, मछली पालन, बिजली बनावण कीते भी थींदा है। उहे ते नदी तट ते मौजूद हर पासे ही पवित्र स्नान वास्ते पानी दा इस्तेमाल थींदे, खास तौर ते गंगोत्री, उत्तरकाशी, देवप्रयाग विच वड्डी तादाद विच प्रार्थना करन कोलों पहले तीर्थयात्री डुबकी लावण कीते आंदे हन। खास मौके ते सामूहिक स्नान भी थींदे। भागीरथी नदी दे सिर्फ कुछ ही जहातु पीवण वाली पानी को कढ़ण दी इजाजत है, पर हिंदी सहायक नदियां दे पानी दा वड्डा हिस्सा सिंचाई ते पीवण कीते इस्तेमाल थींदे। मछली पालण दी भी भागीरथी दे कुछ हिस्से विच ही इजाजत है, खास तौर ते टिहरी जलाशय विच। भागीरथी नदी दे जल दी खासियत ते काबिलियत को प्रभावित करन वाली भी कुछ वजह हैं। रोज़मर्रा दी जिंदगी विच इस्तेमाल थीवण वाली शय प्लास्टिक वाले रैपर ते बोतल दा तट ते जमा थीवणा, धावण दे बाद कपड़े धोना, साबण दा इस्तेमाल, मल मूत्र दा त्याग, ये सबो वजह शामिल हैं। साइंसदान दी रिसर्च अखेंदी है जेकर वेस्ट पानी को 1.100 दे अनुपात विच नदी दे पानी विच मिलाया वंजे ते भागीरथी नदी दी गुणवत्ता हुंदी काबिलियत तब्दील कहना थी सी। मौजूदा समय विच वेस्ट पानी दा अनुपात इतना ही है, ही करके भागीरथी नदी ते कुछ खास प्रभाव कहना थी सी। लेकिन भागीरथी नदी के कुछ किनारे, खासकर गंगोत्री, उत्तरकाशी, धरासू, देवप्रयाग विच मानव बस्तियां ते रावण वाले लोगों की तादाद वधण दे नाल भागीरथी नदी ते असर पैदा पाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगोत्री दे साल विच 1 वारी ते देवप्रयाग विच 1 साल विच 4 वारी भागीरथी नदी दे जल दी गुणवत्ता बारे जानकारी इकट्ठी करेंदा है। भागीरथी नदी दे उद्गम वाली जहाँ एक संवेदनशील क्षेत्र है, इत्थां भीड़ भाड़ कन्नों एहतियात रखण वास्ते ते आसे पासे दी सुरक्षा वास्ते वन विभाग रोजाना सिर्फ 150 बंदे को गौमुख, भोज, बासा वंजन दी इजाजत देंदा है। इतना ही नहीं, गौमुख वंजन वाले तीर्थयात्री वास्ते हिमनद कन्नों 500 मीटर का फासला जरूरी है। भागीरथी नदी असाडे कीते एक सांस्कृतिक धरोहर का स्वरूप है। ये बी नदियां कन्नों अलहदा है। हिंदे विच थीवण वाले प्रदूषण को रोकण कीते सरकार लगातार कोशिश करेंदी पई है। सरकार की कोशिश के नाल असाडा सब का भी जाति फर्ज है कि असा अपनी धरोहर पवित्र पूजनीय भागीरथी नदी को साफ सुथरा ते प्रदूषण कन्नों आजाद रखूँ। हुणे आप सुनते पे आवे एक वार्ता संस्कृति दी संवाहक असाडी भागीरथी नदी। आओ हुण सुनते हैं सिराय की सूफी गीत।
1: मैं रीना कौल आप सबको राम राम ते नमस्ते करेंदी हाँ। अज मैं हाजिर हाँ आप सब दे सामने सिराय की सूफी संगीत दा एक प्रोग्राम घिन के। ओ सूफी संगीत जेड़ी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है, ते उम्मीद करेंदी हाँ तो आपको ये प्रोग्राम पसंद हो सी। मैं

0: रोधी परी इनी ताकी आई कि पहली बस दे मल्लू मल्ली एन प्रॉपर पहुंच गई। पहली बस भी बुरी सी, दूजी बस जद मल्लू मल्ली अगे लंघन लगी तो वह भी तेज हो गई ते वह भी अगे लंघन लगी। हुण मुकाबला शुरू सी, दोवें विच हुण मर मिटन की बाजी लगी हुई सी। दोवें बसां नालों नाल बराबर बराबर जा रही सन, बहुत ही थोड़ा फर्क सी। दोवां दीआं सवारियां भी एक दूजे नूं तकदियां ते अंदर झाती मार दियां। जापदा सी दोवें बसां नालों नाल खड़ियां ने, पर धरती नूं पता सी कि असली हालत की सी, जां पहियां नूं ते होर मशीनी पुरजे नूं पता सी। दरखत बूटे छेती छेती एक नसे जांदे सन जिवें तूफान वगदा जां तेज़ हनेरी झुलदी होवे। दैतां दीआं चिंगियाड़ां वांग हारन चीख रहे सन। बिना शक हर तरह यह बहुत ही भैड़ा समा सी, राकश मत प्रधान सी। धरती पुट दीआं जांदीआं बसां बहुत ही नेड़े नेड़े सन, सिर्फ फुट जां सवा फुट लई दोवें विचकार फर्क सी। पर एक समा आया कि हौली हौली यह फर्क भी घट के थोड़ा हो गया, एक फुट तो अद्धा फुट, फिर तीन ज चार इंच, कदे तीन कदे चार, कदे तीन कदे चार। एक समय तो लगा कि सिर्फ एक इंच है। हुणे बसां छूईआं तो हुणे फटी फटी होईआं। सवारियां जो शुरू शुरू च हासा समझ रही सन, हुण गंभीर होईआं ते त्रेलो त्रेली होण लगियां। आखिर हो की रहा है? दो उक्का मूल ड्राइवर अपना मन परचाउंदे ने ते इन्हे लोकां दी जिंदगी नाल होली खेडना चाहुंदे ने। वह बंदे सन जां भूत ने? दोहां विचों किसे एक दी आदमी पर खा ले सी, वह कोई अवान सन। आखिर उस सवारी ने शोर मचाउणा शुरू कीता। ड्राइवर किथे सुनदे सन, वो अपने अपने व्हीलां उत्ते एकन तने बैठे सन जिवें भेड़िए हुंदे ने। भेड़िया वांगी एक दूजे वल कौड़ा कौड़ा झाकदे दो मील के तीन मील ए दौड़ लगी आई सी। टांगा साइकिल गड्डा पैदल किसी नहीं देखिया। पता नहीं वो अपने आप नूं किवें बचांदे रहे। पिछले अड्डों अगला अड्डा लगभग 5 मील सी। मील कु सफर रहा तो शहर करके दोवें बसां थोड़ा हौली हुईआं ते फिर अपने आप ही वो अगे पिछे चलन लगियां। किहड़ी बस अगे सी हुण इस दा फिक्र नहीं सी। दोवां ने एक समय हुण अड्डे च जा रहना सी ते थोड़ी धूड़ उड़ाउणी ते फिर खड़े हो जाना सी। सवारियां ने दोवां विच ही थोड़ा थोड़ा बह जाना सी, किसे उधर जाना सी किसे इधर जाना सी। अगड़ पिछड़ दोवें बसां अड्डे विच जद आईआं तां कुछ सवारियां दोवां दे ड्राइवरां नूं आखण लगियां,
1: बे भरावा तेरी मत मारी उह मार देना सी सानू। हैं ना मतलब की सी इह? इह कैसी भैड़ी गल आ, ना तुसीं सज नाल चलाउंदे हो, की तुहाडा दिमाग फिरिआ आ?
0: ड्राइवर सुणदे नहीं सन, बसां विचों लै के उह दोवें हसण लगे ते फिर कट्ठे जा खलोए। एक सवारी ने आख्या,
2: ना आखिर तुसे कीता की है?
0: एक कंडक्टर बोलिया,
3: की गल है महाराज?
2: रस्ते विच की करदे सी? एक्सीडेंट करना सी?
3: एक्सीडेंट ना और कुछ?
2: एनी गैर जिम्मेवारी?
1: नो हद्दी कर दती ना ड्राइवरा ने, तो मसी शुक्र कीता सी सही सलामत पहुंच गए सारे।
2: अक बोल दे किदां?
0: ड्राइवर मुस्कुराए ते उतां वल नूं वेखण लगे। सवारी उहनां दीआं नज़रां विच एक हकीर कीड़ा सी जिस नूं पता ही नहीं सी कुछ। आखिर वो ड्राइवर सन, उन्होंने सब ही पता सी कि एक्सीडेंट की होंदा है, सवारियों नूं की पता है। दोवें जिहड़े एक दूजे नूं भेड़ियां वांगू तकदे ते दुश्मन समझ रहे सन, हुण कोलों कोल खलोते ते रल के चाह पी रहे सन। उन्होंने याद ही नहीं सी कि पिछे की कुछ होया सी।

लो जी नजराना प्रोग्राम दी पहली पेशकश गुरदास मान दी आवाज ते अगला गीत सुनो खे गिप्पी गरेवाल जहरा एस खान ते दनिश बाग जी इन्हों दे नाल रोमी इस गीत की मिली जुली फरमाइश दोहां गीतां दी सानू मिली है जी मलोट तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल जिला मुक्तसर पिंड मोहला तो पाल गिल गुरदयाल गिल साधु गिल दिशा मोहला दर्शन बराड ते मलकीत कुरियाणा होरां दी कनेरा मोहला पटियाला तो फरमाइश भेजी मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन बत्ता पलक बत्ता करण बत्ता गीतू बत्ता हार्दिक निहारिका ते वंश बत्ता पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो फरमाइश भेज रहे ने गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद ते बेबी गुरशबद पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका पंजाब तो फरमाइश कर रहे ने मनजीत कौर बठिंडा हरदीप कौर प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह चेयरमैन पोता गुरशबद ते समूह बराड़ परिवार मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र आशा रेडियो श्रोता संघ तो फरमाइश आई अभिजीत गवाणकर राही श्रीमती सरिता गवाणकर प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत गवाणकर प्रणीता गवाणकर आकार हाइट्स बहादुरा नगर तो बहादुरा नागपुर तो शैलेश गवाणकर वैशाली गवाणकर श्वेता सुमित गवाणकर ते कुमारी धोनी गवाणकर परी सुनते हैं जी थोड़ी सब दी फरमाइश से नजराना प्रोग्राम दी अगली पेशकश बहुत सारी आवाज़ें

क्या बात है, बहुत ही सोहना गीत। ते नजराना प्रोग्राम दी आखिरी पेशकश चलदे चलदे चकला बाजार समाणा पप्पू राजा खुश दिल संगीता जंदल हसमुख जिंदल होरा दी फरमाइश महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत होरा दी शिवजोत सिंह हरसिमरन राजप्रीत बाबा त्रिलोक सिंह पिंड कुड़ियाना जिला फासिलका तो पिंड पक्षी खुरद फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल गुरलीन ते पूरा गिल परिवार इन्हों सब की फरमाइश से नजराना प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कुलविंदर बिल्ला की आवाज़।

1.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:30 वज चुके ने। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: हां जी, मैं गया रुड़िया राम जी, लंघ आईए।
3: आजू सरपंच साहब
2: आ गए जी। रुड़िया राम जी, जय हिंद।
3: जय हिंद जी। सरपंच साहब, की हाल चाल है तुहाडा?
2: बहुत वधिया।
3: चलो तगड़ा चाहिदा है। गल है कि एक जिदा कहते हैं कि शिष्टाचार है या साडा सभ्याचार है और ये पूरी दुनिया के बीच ही है, एक दूजे

7% अनाज है जिहड़ा सही संभाल ना होण कारण ओह नुकसान हो जांदा है जां अजाई चलिया जांदा है। सो जे असी उत्पादन दे मुकाबले नुकसाने हुए अनाज की कीमत का अंदाजा लाइए तो 1 करोड़ रुपए बनती है। सो किसान वीरों इन्नी मेहनत नाल पाली हुई फसल जेकर साड़ी थोड़ी जी अणगहली कारण नुकसानी जाती है सो तो यह साढ़े लिए कोई बहुत ही सियाणप वाली गल नहीं सगों लाणत वाली गल है। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि सानू यह जानकारी होवे कि अनाज की ठीक संभाल किवें करनी है ता कि असी इस नू होण वाले नुकसान तो जिहड़े बचा सकीए ते नाल दी नाल इस दे म्यार दे उत्ते भी कोई माड़ा असर ना पवे। इस संबंधी भी सानू जिहड़ा यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सो एक अंदाजे मुताबक कणक की उपज का तकरीबन 45% हिस्सा जिहड़ा पिंडां दे विच किसी ना किसी रूप में रख लिया जाता है। हुण आपां जे आले दुआले झात मारीए तो कणक की वाढ़ी जिहड़ी है लगभग मुकम्मल हो चुकी है ते बहुत जिहड़ा सही वेला है ढुकमा समा है अनाज नूं स्टोर करन दा। सो आपां जिहड़ा अनाज है यह मुख तौर पर एक तो अपने खाण वास्ते या मजदूरां दे खाण वास्ते स्टोर करते हैं, दूसरा असीं अगले साल बीज वजों वरतण वास्ते भी अनाज नूं स्टोर करते हैं, तीसरा असी डंगरां दी खुराक वास्ते भी अनाज नूं स्टोर करते हैं। तो इस तो अलावा कई किसान वीर जिहड़े ने ओह कुछ कणक नूं इस वास्ते भी स्टोर करके रख लैंदे आ तां कि आउण वाले समें विच जदों मंडियां दे विच तेज़ी हुंदी है तो चंगा भाव मिल जांदा तो इसलिए हुण ओह स्टोर करके रख लैंदे आ। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे असी किसी भी रूप दे विच अनाज नूं स्टोर की कर रहे हैं किसी भी काम वास्ते रख रहे हैं पर उसनू कीड़ा ना लगे तो उस दे म्यार उत्ते कोई माड़ा असर ना पवे। इसलिए जरूरी है कि असी उहदी जिहड़ी सांभ संभाल है वह सही ढंग नाल उसकी स्टोरेज करिए। सो अनाज नूं रखण दे तरीकियां बारे कुछ जानण तो पहला ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अनाज नूं होण वाले नुकसान दे कारणां बारे सानू जिहड़ा उह पता होवे। नमी ते तापमान ये दो इहोजे तत्त ने जिहड़े कि संभाले हुए दाणियां विच होण वाले परिवर्तन ते निर्भर करदे ने। सो गर्मी दी रुत्त खास तौर पर बरसात दे मौसम दे विच जिहड़ी है उस टाइम अनाज दी संभाल जिहड़ी है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मौसम दे विच बहुत जरूरी हो जांदा है कि असी जिहड़े संभाले हुए दाणे है उस विच तापमान ते नमी नूं वधन तो रोकीए तां कि साडा जिहड़ा अनाज है उह सही रहे। सो इसलिए थोड़ियां जिहियां जिहड़ियां जरूरी गल्लां जिन्हां दा सानू ध्यान रखना चाहिए है वह सब तो पहला तो यह है कि दाने जदों असी स्टोर करने हैं तो कोशिश करो कि उहदे विच जिहड़ा हर तरह का कख है जां धूड़ है जां कोई नदीना दे बीज है जां टुटे हुए दाने ने तो उन्हां नूं चंगी तरह पक्खा ला के साफ करके अलग कर देना चाहिए है। तो जिहड़ा अनाज है उसनू सुका के रखना चाहिए क्योंकि दाणियां दी नमी एक खास प्रतिशत तो जेकर घट है तो वह कारण बनती है अनाज दे विच तब्दीली आउण दा जां उसनू कीड़ा लगण दा। सो साडे जिहड़े पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे माहर ने वह सिफारिश करदे ने कि जिहड़ी वध तो वध नमी है कणक दे विच 10% होनी चाहीदी है, झोने दे विच 14%, मक्की दे विच 13%, सोयाबीन दे विच 11% ते जौ दे विच जिहड़ी है इह 13%। सो हुण वारी आउंदी है अनाज संभालण दे तरीकियां दी। आम आपां देखदे हां कि घरां दे विच अनाज जिहड़ा जां तां बोरियां दे विच स्टोर कीता जांदा है जां खुले भंडारां दे विच कीता जांदा है जां एक आधुनिक तकनीक जिहड़ी अज कल चलदी है उहनां नूं आपां सीलबंद बैग कहिंदे हां जिन्हां नूं अंग्रेजी दे विच हरमैटिक बैग भी आख्या जाता है। सो उहदे विच भी जिहड़े आ इह अनाज जिहड़ा स्टोर कीता जांदा है। सो जेकर असीं बोरियां दे विच अनाज स्टोर करना है बोरियां दे विच असी बहुत लंबे समय तक अनाज नूं नहीं रख सकते पर हाँ जदों तक मौसम विच खुशकी रहे उन्नी देर तक असी दाणियां नूं बोरियां दे विच रख सकते हैं। सो जेकर जे असी बोरियां दे विच अनाज रखना तो कुछ जिहड़ियां गल्लां दा ध्यान है रखना वह जरूरी है। सब तो पहला तो जिहड़ा मैं पहला भी कहा कि इसनों सही नमी तक सुका के रखना चाहिए साफ रखना चाहिए तो कोशिश करो कि अनाज नूं हमेशा नवीं बोरिया दे विच स्टोर करो पर जेकर फिर भी किसी कारण करके तुहानूं पुरानियां बोरियां वरतनियां पै रही ने तो बोरिया नूं हमेशा सोध के फिर उहदे विच अनाज पाउणा चाहिए। तो दूसरी गल ये है कि इसनों किसी लकड़ी के चौकटे या फट्टियां दे
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ

0: के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ओरपो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।
2: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसके प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप कृषि जगत कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ। और इस समय हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो संचालन कर रहे हैं वो है नरेश पारासर, हमारे साथी। तो जो हमारा फ़ोन नंबर है, एक बार हम आपको बता दें, फ़ोन नंबर है 2342-1082, 2342-1083। और जो दिल्ली से बाहर के निवासी हैं वो पिन कोड लगाना ना भूलें, 011। तो बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ, और आपकी कोई समस्या है गन्ने से

0: संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।
1: डॉक्टर मिश्रा जी, आपका फोन इन में एक बार पुनः स्वागत करते हैं।
2: मेरा भी सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: डॉक्टर साहब, फोन आ गया तो पहले फोन ही ले लें।
2: चलिए, आज तो सवाल निश्चित रूप से, आज किसान हमारे बड़े जागरूक हैं जो बार बार हमारे फोन पे बात कर रहे हैं।
1: जी हेलो,
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं सतीश बोल रहा हूँ सर।
1: सतीश भाई कहाँ से?
3: हरियाणा से।
2: जी बताएं सतीश,
1: हरियाणा में कहाँ से, बताओ जगह बताओ।
3: डिस्ट्रिक्ट भिवानी गाँव का।
1: भिवानी से, बताइए क्या सवाल है?
3: सर बात बढ़िया लगती है आपकी, बहुत ही बढ़िया लगती है, किसान तो अनपढ़ होते हैं।
1: जी धन्यवाद।
3: क्योंकि जी विकास तो जरूरी है ना, दवाइयों से किसी भी चीज का विकास हो फसल का।
1: जी जी,
3: इसलिए जी सप्ताह बीच में सुना तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है।
1: चलिए धन्यवाद आपका। आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
3: हाँ जी, इवन सारे सुनता हूँ, लगा देता हूँ।
1: चलो
3: कल
1: सुबह भी सुनना, कल सतीश भाई कल भी सुनना, कल हमारा सुबह फोन इन कार्यक्रम है, बात फूलों की जो कार्यक्रम है ना।
3: हाँ जी,
1: वो होगा सुबह 10:10 से लेके 11 बजे तक। इसी
3: मैं तो पहले ही थोड़ी बहुत लगा देता हूँ, सुनना कल हो गया।
1: हाँ तो ठीक है, कल हमारा ये भी कार्यक्रम सुनना।
3: जी निश्चिंत होकर रहिए इस जन्म में।
1: जी जी जी, और कोई सवाल है गन्ने से संबंधित आपका?
3: जी थोड़ी गर्मी की शिकायत है, इसलिए कल वगैरह हो रहे
2: हैं। थोड़ा बहुत अगर कनसुआ का प्रकोप है तो आप थोड़ा वेट करिएगा और पानी लगाइएगा, रुख कंट्रोल हो सकता है हो जाए। और मैं ये तो आपको कहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ अगर थोड़ा सा भी आपको रुझान है और आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपसे सुझाव दूंगा कि नीमाष्टक एक इसका वो बनता है, नीमाष्टक का अगर आप छिड़काव करते रहेंगे, और नीमाष्टक जो है कई एक सतपर्णी अर्क है, जैसे कई एक आपके पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में मिक्स करके और उनको सड़ा करके फिर आप फसलों पर प्रयोग किया जाता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप जो आपकी कनसुआ है या थ्रिप्स हैं, ऐसे जो छोटे छोटे कीट हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, जिसमें आपका आक है, जामुन है, आपका नीम है और आपके अमरूद है, इनके पत्तों को लेकर के 1.5-2 किलो पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में सड़ाया जाता है, और सड़ाने के बाद में फिर उनको छान करके 1 किलो 1 लीटर ये आपका सतपर्णी अर्क और उसमें 5 लीटर पानी के सादा के सादा पानी के में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे कीड़ों से आप निजात पा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो फिर आपको थाइमेथोक्सम है या आपका एमिडा क्लोरोपेड है, इनमें से कोई सा भी एक कीटनाशक 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय पे छिड़काव करेंगे तो उससे भी आपके ये कनसुआ जैसे बीमार रोग है वो कीट हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं।
1: तो सतीश भाई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर प्रकोप कम है तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है उसके हिसाब से कीजिए, रासायनिक दवाओं पे मत जाइए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे ही, अभी जो है हमने पहले भी बात की थी इस विषय पे, ज़रूरत पड़े तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग आपको करना है। अगर जैसे नुस्खा जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे अगर नियंत्रण हो जाता है,
2: और फिर इसका ये ऐसे नुस्खा भी अगर आप चाहते हैं तो आपका नज़दीकी कृषि विभाग है या नज़दीकी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ से भी आप इसको विस्तृत जानकारी, क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव होता है इसलिए हम विस्तृत आपको बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कर सकते, लेकिन एक एक संक्षेप में आपको बता दिया कि नीमाष्टक है, सतपर्णी अर्क है, ये ऐसे जो है कीटों के लिए विशेष करके जो चूषक कीट है या काटने वाले कीट है इनको, इनकी रोकथाम किया आप इनसे कर सकते हैं और इससे हमको फसलों को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, छिड़काव करने के वाले के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा वातावरण भी शुद्ध और रहता, वो भी दूषित नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े किसान अगर आप जागरूकता लाएं प्राकृतिक खेती की तरफ से की तरफ भी, तो इससे हम काफ़ी हद तक रासायनिक दवाओं को उसका क्या जो वो है उसका भी हम
1: पैसे भी बचेंगे डॉक्टर साहब, वातावरण भी बचेगा, अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी और जो हमारी धरती माँ है उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
2: ये भी तो ये हम बीच बीच में किसानों को ये इसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश करते कि किसान भाई नीमाष्टक है, सतपर्णी अर्क का भी प्रयोग करें।
1: सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल था मेरा वो तो अधूरा ही रह गया, आपने बताया कि जो एक तो नकदी फसल है, नकदी के यानी जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर वो तो मिलेगा ही मिलेगा,
2: मिलेगा ही मिलेगा।

0: ने वो अगर मिल में पहुंचा दी, पर्ची आपकी बन गई, तो वो आपके खाते में आना ही आना है।
1: हाँ, खाते में सीधा पैसा आता है, तो किसान को इसमें हिसाब रखने की कोई वो नहीं रहती है, सीधा उसके खाते में पैसा आ जाता है। तो एक एश्योर एक अमाउंट जो उसको एक एकड़ है या एक हेक्टेयर है या एक बीघा है, तो उसको सीधा पैसा उसको खाते में मिल जाता है।
0: डॉक्टर साहब एक फोन और आ
1: फिर आ गया परेशान किसान का भाई।
0: हेलो
2: हेलो,
0: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: हाँ, हरियाणा से वेद प्रकाश नंबरदार, आप दोनों को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, वैसा नमस्कार आपको।
0: हरियाणा में कहाँ से हो वेद प्रकाश जी?
2: हाँ, जिला चरखी दादरी बिरी कला।
0: चरखी दादरी जी, बताएं क्या सवाल है?
2: एक जैसे ईख में ज्यादा पानी आने से कुछ नशा सा फूटता है ना, एक नंबर दो, नीचे से कुछ पोरी रेड और काली हो जाती है, फिर उनमें तरेड़ फट जाती है, और फिर तरेड़ फटी तो उसके अंदर लाली दिखती है। क्या जी?
1: देखो ऐसा है कि गन्ना हमारा एक अपना सेल्फ मतलब उसके प्रोपेगेशन का एक माध्यम भी है। तो जब वो गन्ना कहीं पे उसको पानी ज़्यादा मिलता है या पानी डूबा जाता है, तो उससे नीचे की जो आंखें होती हैं वो स्प्राउट जम जाती है, क्योंकि उसका पत्ता ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से आंख फूटना शुरू हो जाती है, और आंख जब कोई स्प्राउट करती है तो उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और ये मतलब लक्षण जो है आपका गन्ने की उसकी क्वालिटी को, उसके अगर बीज के लिए कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब कर देता है। आप नीचे का गन्ना अगर जम जा नीचे जड़ें निकल जाती हैं, तो उसको गन्ने के बीज के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पर गन्ना, लेकिन ये भी बात है कि अगर गन्ने के स्थान पर अगर आप वहाँ पर धान की, जहाँ पर पानी ज़्यादा आ जाता है वहाँ पर धान की फसल लेंगे, तो थोड़ा सा आपको ये इस चीज़ से बचाव हो सकता है। धान का चयन कर सकते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है। तरेड़ वाली बात आती है, देखिए इसमें ऐसा है कि आप गन्ने की बुवाई के समय पर ही कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल दोनों में से कोई सी भी एक दवा का अगर आप रुकाव करके चलते हैं 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ये जो कीट है आपका जड़ बेदक है, गुरदासपुर बोअर है, इनसे किसी हद तक आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: वेद प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो
1: जी।
3: हेलो,
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार सर,
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल से।
1: जी हाँ, बताएं सचिन जी।
3: अरे सर, मैं हम ये जानना चाह रहे थे कि गेहूं काट के हमने गन्ना बोया था,
1: बिल्कुल ठीक है,
3: तो उस पे वो कुछ कल्ले तो जमी आए हैं ऊपर ऊपर के, लेकिन जो नीचे जड़ का गन्ना था वो नहीं जमा, तो उसका कोई इलाज है?
1: देखिए ऐसा है कि इसका इलाज ये है कि आपने, हम लोग बार बार कहते हैं, हमारा वहाँ पर आपके संभल में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि विभाग भी है, गन्ना विभाग भी है। आपने देखिए, हम लोग फिर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि गन्ने में का नीचे का 1/3 हिस्सा कभी भी बीज में इस्तेमाल ना करें। जो भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी उनसे पुरजोर कोशिश है, अनुरोध है कि नीचे का गन्ना का 1/3 हिस्सा बुवाई गन्ने के बीज में इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो आपके जो सचिन भाई हमारे बता रहे हैं उसी तरह की समस्या उनके सामने खड़ी होगी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने कहीं पे आपको जो आपके जनपद में पौध बनाता है, जो ट्रे में पौध तैयार करता है बर्ड चिप के माध्यम से, वहाँ से आप पौध लेकर के और पानी जब चलाएं, जब भी पानी आप लगाएं, उस समय पे जो खाली स्थान बना हुआ है उन पे उन पौधों को रोपित कर देंगे, तो आपकी गैप फिलिंग जो है, जो खाली स्थान बना है वो उनकी पूर्ति हो जाएगी, और आपको प्रति एकड़ या प्रति बीघा जो पौधों की संख्या होनी चाहिए वो पौधों की संख्या आपको मिल जाएगी। और अगर आप बीज डाल के करेंगे तो फिर उनमें बहुत अंतर हो जाएगा, वो आपका कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का जो गन्ना है उसमें उस अंतर की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे।
0: सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब फिर कोई फोन आए उससे पहले अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ा लेते हैं।
1: तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो उनको पैसा मिल जाता, दूसरा अब हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें,
0: जी जी,
1: देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें गन्ना हमारे लिए क्यों नगदी फसल के रूप में है, तो किसान को तो एक नगद पैसा मिल गया,
0: मिल ही जाता है जी।
1: हाँ, दूसरा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो गन्ने पर पूरी तरह से निर्भर है, हम केवल गन्ने को चीनी के रूप में ही न देखें, या गुड़ की खंडसारी के रूप में ही ना देखें। गन्ने के ऐसे कई एक चीज उत्पाद बनते हैं जो कि हमारे दैनिक कार्यों में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक आइटम्स में या अन्य कोई चीजें हैं।
0: डॉक्टर साहब, आप तो सुना के जो गाड़ियां वाड़ियां चलेंगी उसमें भी तेल,
1: हाँ,

0: भाई एथेनॉल गवर्नमेंट ने 20 से 25% तक ब्लेंडिंग करने की, यानी उसको मिलावट करने की परमिशन दी हुई है।
1: जी, जी.
0: तो अब आप देखेंगे कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि चीनी या गुड़ जो है वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट रह गया है। अब आप ये देखेंगे जितना भी एल्कोहल बनाया जाता तो एल्कोहल बेस्ड जितनी भी मेडिसिन है उनमें हमारा गन्ने का ही एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए गन्ने के ऊपर हमारी जो देश की इंडस्ट्री है वो भी निर्भर है। अगर गन्ना का प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता, पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का एवरेज प्रोडक्शन है वो काफ़ी नीचे गिरा है, और उसके पीछे कारण रहा कि जो 0238 जैसे हमारे अभी किसान भाई बता रहे थे, वो गन्ने उसने हमारे किसानों को की पैदावार को काफ़ी प्रभावित किया। उसके पोका बोइंग का प्रकोप ज़्यादा होता है, उसके अंदर रेड रॉट की समस्या आती है, और परिणाम ये होता है कि किसान को उत्पादन कम मिलता है।
1: एक फोन और आ गया डॉक्टर साहब, बात करते हैं। हेलो
2: हेलो जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी,
1: कौन सा बोल रहे हैं?
2: पवन जिला संबल उत्तर प्रदेश
0: जी। हाँ, पवन जी बताएं।
2: अभी हमने इसमें 238 में फटेरा और डीएपी और यूरिया डाला है
0: जी,
2: तो वो बिगड़ी बहुत है, क्या घनी हो सकती है उससे डीएपी और यूरिया फटेरा?
0: नहीं देखिए ऐसा है कि घनी नहीं कर सकते हैं आप, ये देखिए एक चीज देखेंगे कि आपका गन्ना कब का बोया हुआ है।
2: पेड़ी है।
0: देखिए आपको एक, मैं किसानों से फिर मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो किसान भाई जब गन्ने की बाबक फसल काटते हैं तो काटने के साथ ही उसके बराबर में जहां कहीं थोड़ा सा खेत चाहिए, आपको बहुत ज्यादा खेत नहीं चाहिए, और उसके ऊपर के 3-4 गन्नों की एक अगर आप पौध डाल देंगे तो वो उसी से क्या फायदा आपको होगा कि जो गन्ने आपके पिछले बाबक फसल में खाली स्थान हो गया था उन खाली स्थान की आप भरपूर की उसकी फिलिंग करके पूर्ति कर सकते हैं। तो ये मैं अभी पीछे भी आपके संबल जनपद के ही किसान भाई को मैं बता रहा था, आप भी वैसे ही कर सकते हैं कि जिन किसान भाई जो आपके जनपद में कोई पौध तैयार करता है गन्ने की ट्रे में, आप वहां से पौध लेकर के उन स्थान पर उसको पानी जब चलाते हैं, शाम पानी चलाएं तो उसी समय पर उनको रोपित कर दें तो उससे गैप फिलिंग की पूर्ति हो जाएगी।
1: पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया फोन के लिए, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
3: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: राकेश भाई बताएं क्या सवाल है?
3: मेरा ये सवाल है कि कौन कौन से गन्ने की जो किस्म होते हैं, और ऐसा हमारे लिए कौन सा गन्ना है तो हम अपने प्रदेश में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तापमान थोड़ा कम रहता है,
1: काफी कम रहता है आपका।
0: हाँ देखिए आपका, अब आप जनपद बताएं कि शिमला में आपका कौन सा एरिया है जहाँ पे आप गन्ना लेना चाहेंगे?
3: कोटखाई क्षेत्र।
0: देखो मुझे अब बहुत ज़्यादा आपके वहाँ का टेम्परेचर का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने उस जनपद में, क्योंकि जनपद में हर जगह पर कृषि विभाग है और कृषि विज्ञान केंद्र है, पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि वहाँ पर नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, या कृषि विभाग या गन्ना विभाग कोई भी है आपका, उनसे एक बार सलाह जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके गन्ने जिले के अंदर या आपके एरिया में तापमान 25 डिग्री से नीचे आपका है, अगर तापमान रहता है तो गन्ने की खेती आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गन्ना जैसे 25 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा गन्ना आपका डोरमेंट हो जाएगा, यानी सुषुप्तावस्था में चला जाएगा और गन्ने की बढ़वार आपकी नहीं हो पाएगी। गन्ने के लिए औसत तापमान वो 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में मिलना चाहिए, अगर ये तापमान नहीं रहता पूरी साल में तो गन्ने की बढ़वार आप गन्ने की खेती उस जिले में नहीं करेंगे कर पाएंगे।
1: पवन राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है पहले भी राकेश भाई से बात हुई है हमारी गन्ने के बारे में, तो 25 से नीचे वाले में तो थोड़ा परेशानी वाला समय बन जाएगा।
0: देखिए अपने यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा दिसंबर का और जनवरी का महीना होता है जहाँ तापमान औसत तापमान जो है 15 डिग्री के नीचे आ जाता है, वैसे ही गन्ना डोरमेंसी में चला जाता है।
1: जी, जी,
0: और वो डोरमेंसी आपकी हमारी 15 फरवरी के आसपास तक रहती है, 15 फरवरी के बाद में वो डोरमेंसी ब्रेक होती है, सुषुप्त अवस्था खत्म होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे गन्ना करना कोई उनके लिए लाभकारी नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना हमारा हिली एरिया है, चाहे वो हिमाचल का है या हमारा जम्मू कश्मीर है या हमारा आपका उत्तरांचल का एरिया है या अन्य कोई प्रदेश है, तो वहाँ पे अभी कोई मेरी ऐसी जानकारी में कोई प्रजाति नहीं है
1: जो तापमान को झेल सके
0: और पैदावार दे सके।
1: जी जी जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो गन्ना है वो खाली मीठे के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसको इंडस्ट्री से जोड़ा।

0: गया है, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हो रहा है, तो ना केवल हमारे किसानों की और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने गन्ने की फसल की वो देखभाल अच्छे से करें। जैसे आप बात करते रहते हैं किसानों से,
1: जी
0: केवीके के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, हर बार आप बताते हैं कि भाई ध्यान रखो। जैसे अभी एक किस्म की बात आई है,
1: जी
0: हाँ, इतनी दिनों से मैं सुन रहा हूँ इस बात को कि
1: जी
0: आप इसको अवॉइड करो, इसको
1: हाँ
0: अवॉइड करो,
1: बिल्कुल।
0: तो लेकिन किसान भाई फिर भी मान नहीं रहे हैं।
1: नहीं
0: कारण क्या है डॉक्टर साहब,
1: देखिए,
0: क्यों नहीं सुन
1: किसान
0: रहे?
1: किसान क्या है, देखिए कभी कभी किसान के साथ में एक टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटीज, यानी उसके पास में कभी समय नहीं होता है, और कभी कभी उसके पास में नई कोई प्रजाति है उसकी बुवाई की उपलब्धता नहीं हो
0: जी
1: पाती है,
0: जी
1: तो फिर ये देखता है कि अरे यार ठीक है चलो मेरे पास जो वैरायटी है मैं उसी को बुवाई कर देता हूँ। तो वो एक लेजीनेस भी किसान की परिलक्षित होती है। मैं यहाँ पे एक नरेश जी एक और बात आपके सामने शेयर करना चाहूँगा,
0: जी
1: जो अभी आपने देखा होगा भारत सरकार जो है बहुत जोर शोर से सीएनजी को प्रमोट कर रही है,
0: जी
1: और वो सीएनजी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के बाद में जो उससे वेस्ट निकलता है इसको FOM के रूप में जाना जाता है,
0: जी
1: उसको कहते हैं FOM, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैनोर लिक्विड और सॉलिड दोनों में
0: जी
1: आता है,
0: जी
1: और ये पूरे कंट्री के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जहां CNG बन रही है उसके अंदर बनाने के लिए के गोबर और वेस्ट के साथ साथ में शुगर मिल की निकली हुई जो मैली है, प्रेस मड है,
0: जी
1: उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस प्रेस मड को जो पहले किसान कोई लेता नहीं था, क्यों किसान उसको फर्मेंटेड नहीं कर पाता
0: जी
1: है, तो ज्यादातर क्या होता था कि भट्टों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था ईंट को पकाने के लिए,
0: जी
1: लेकिन अब अपने नॉर्थ के अंदर या साउथ महाराष्ट्र के अंदर CNG पंप जो प्लांट लगे हुए हैं उन प्लांटों में इसको एक सिलेरी के रूप में इस्तेमाल करा करके CNG गैस बनाई जाती है, और उससे जो वेस्ट निकलता है उसको एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की आपकी खाद
0: खाद
1: बन
0: तैयार हो।
1: करके तैयार
0: तो
1: हो
0: डॉक्टर साहब
1: जाती
0: ये
1: है।
0: तो ऐसा ही हो गया जैसे बायोगैस प्लांट हो गया है,
1: हाँ
0: आप
1: मतलब
0: सैलरी
1: बिल्कुल
0: हम इस्तेमाल
1: बायोगैस,
0: करते हैं,
1: हाँ तो उस बायोगैस में केवल गोबर रहता
0: गोबर
1: था,
0: रहता है।
1: अब इसके साथ में गोबर के साथ साथ में प्रेस मड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मतलब हमारे लिए एक बहुत अच्छी किस्म वो चीज़ है, और ये हर जनपद में मैं समझता हूँ कि एक ही दो प्लांट लग रहे हैं और आसपास के जनपदों में, और उनको बड़ा सब्सिडी दी जा रही है, और किसानों के लिए भी उनसे कहा भी गया है कि इसको सब्सिडी पे किसानों के में सिलेरी के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी और सॉलिड के रूप
0: सॉलिड के
1: में
0: रूप
1: अगर
0: में
1: आप डालते हैं तो उससे क्या है कि आपके खेत का ऑर्गेनिक मैटर जो है जीवांश है वो भी बढ़ता है, और आपकी रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता भी हमारी कम होती है, क्योंकि भारत सरकार ये चाह रही है कि जो रासायनिक उर्वरक है उनको संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए, और उसके साथ साथ में हमारे अन्य वैकल्पिक चीजें हैं जैविक हैं या प्राकृतिक खेती है उनके ऊपर भी हमारा किसान आए, जिससे हमारा
0: निर्भरता वहां से कम
1: निर्भरता
0: होनी चाहिए।
1: निर्भरता कम हो,
0: जी
1: क्योंकि देखा है आप देखेंगे कि अपने देश के अंदर 600 से 650 लाख मिलियन टन रासायनिक उर्वरक का कंजम्पशन किया जाता,
0: जी
1: खपत होती है,
0: जी
1: और उसमें से जो इतना कंजम्पशन है जबकि जो प्रोडक्शन हो रहा है लगभग 500 550 लाख मिलियन टन ही उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो बाद में हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर देश को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है डॉलर में, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ये आह्वान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँ, जैविक खेती की तरफ जाएँ, और वैज्ञानिक विधि से रासायनिक उर्वरकों का जो हम प्रयोग है संतुलित मात्रा में प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, जितनी वैज्ञानिकों ने इसको रिकमेंड किया है, तो जिससे देश को भी आर्थिक रूप से बोझ नहीं पड़ेगा, उसकी सब्सिडी पे नहीं पड़ेगा, और देश की आर्थिक स्थिति में सुधारने में हमारे किसान भाइयों का भी एक भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि अपनी चाहे वो गन्ना फसल है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे अन्य कोई फसल है, संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करेंगे।
0: बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। अब चलते चलते देखिए, गर्मी की जो बुआई की बात हुई थी, बीच में भी हुई है,
1: जी
0: तो गर्मी की जो फसल है वो हमारी स्वस्थ रहे, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले, इसके लिए कुछ मोटी मोटी खास बातें किसानों को बता दीजिए।
1: देखिए मेरे जो हमारे किसान भाई इसमें बहुत प्रश्न आए थे, पिछेता गन्ना बोया हुआ है,
0: जी
1: ग्रीष्मकालीन गन्ना बोया हुआ है, सबसे पहला मैं उन किसान भाइयों से कहूंगा कि पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर उनकी मिट्टी दोमट है मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है तो पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर पानी उनके की नहीं आपने उन्होंने दिया 10 से 12 दिन के अंतराल पर, तो उससे क्या होगा, गन्ने का जमाव है और ब्यांत दोनों ही प्रभावित होगा।
0: तो डॉक्टर साहब मोटा मोटी देखें, जैसे अब तापमान है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हवाई परियोजना का हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
2: केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के, इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
1: श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
3: नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
1: राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
5: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, कभी पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूं इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सकें, बाद में जिन्हें रिसाइकिल करके फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
4: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम

0: मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों की सराहना की। इसके साथ ही श्री संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी जो व्यवहारिक, वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशियंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहां प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार

0: बिहार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366

8.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जहां हर धड़कन के साथ बजते हैं मोहब्बत के सबसे खूबसूरत गीत। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, और अगले 45 मिनट तक हम बात करेंगे प्यार की, यादों की और उन एहसासों की जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो चाय की एक प्याली लीजिए, दिल को थोड़ा आराम दीजिए और खो जाइए इस सुरीले सफर में। पहला प्यार जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास होता है, जब किसी का चेहरा हर वक्त आंखों के सामने रहने लगे तो समझ लीजिए दिल को प्यार हो गया।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम जी की थी। प्यार में इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ ही लेता है। एक मुस्कान, एक मैसेज या सिर्फ उसका नाम सुनना भी दिल को खुश कर देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जब वी मेट से और आवाज थी मोहित चौहान की। श्रोताओ, अगर इस वक्त आपको किसी की याद आ रही है तो दिल से उन्हें एक मुस्कान जरूर भेजिए, हो सकता है वो भी आपको ही याद कर रहा हो। श्रोताओ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना वजह दिल से जुड़ जाते हैं, शायद उसी एहसास का नाम प्यार है।

आई लव यू कहने का नाम नहीं, किसी का ख्याल रखना भी प्यार ही होता है। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो हमने लिया था फिल्म एजेंट विनोद से। आवाजें थी हमसे का अदिति सिंह और जॉय की। जब किसी की आदत दिल को लग जाए तो हर पल बस वही याद आता है।

न चांद चाहिए न सितारे चाहिए, बस तुम साथ हो तो हर नजारा प्यारा होना ही चाहिए। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से, और आवाज आतिफ असलम की। प्यार में कभी खुशी होती है तो कभी थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन यही एहसास उसे और भी गहरा बना देता है। सच्चा प्यार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल में साथ चलना जरूर जानता है।

हर दिल चाहता है कोई ऐसा हो जो उसे समझे, अपनाए और कब भी अकेला महसूस ना होने दे। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो थी फिल्म तमाशा और आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की थी। कुछ लोग जिंदगी को सच में खास बना देते हैं और तब दिल कह उठता है, तुम मिले तो जीना आ गया।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। ये जो गीत हमने सुना वो हमने लिया था फिल्म तुम मिले से। आवाज़ नीरज श्रीधर की थी। तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, अब हर खुशी में बस नाम तुम्हारा है।

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता से चाहता है से, और आवाज थी श्रीनिवास की। कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं, है ना।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का खूबसूरत सफर गीत मालिका के साथ। उम्मीद है ये सुरीली शाम आपके दिल को छू गई होगी। अपने प्यार को हमेशा संभाल कर रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, अब आपसे इजाजत चाहती हूं। शुभ रात्रि और मीठे सपनों के साथ फिर मिलेंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा

0: मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा

की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education

0: Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। रात के 9:15 हुए हैं। अब हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात दस्तियाब हैं। आइए अब आपको इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे एक फनकार प्रोग्राम के तहत तलत अजीज की आवाज में गाई हुई कुछ गजलें। 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 9:55 पर सेहत के हवाले से कुछ बातें हम करेंगे। 10 बजे आप सुन सकते हैं ड्रामा प्यास। इसे तहरीर किया है रतन सिंह ने, पेशकश प्रेम वोहरा की है। तामिल इरशाद इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा 10:30। दौराने प्रोग्राम 11 बजे आप सुन सकेंगे खबरें बड़े सगीर से। 11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 11:45 पर बज़्मे मौसिकी में आप सुन सकते हैं मानिक वर्मा से राग शुद्ध कल्याण में ख्याल। 12:00 12:10 पर क्लासिक की मौसिकी में सारंगी पर राग हंस ध्वनि पेश करेंगे मुनीर खान। 12:30 का वक्त रहेगा आखिरी शब प्रोग्राम का। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे मजलिस खत्म हो जाएगी।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। एक फनकार प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है हिना मौज। मेरा आदाब कबूल कीजिए। आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपको सुनवाएंगे तलत अजीज की आवाज में गाई हुई कुछ गजलें। लीजिए समाप्त कीजिए ये पहली गजल एक फनकार प्रोग्राम के तहत।

0: इस गज़ल के साथ ही आज का एक फ़नकार प्रोग्राम ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब वक्त है खबरों का।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर अजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है। जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तजारती मुआहदे इसी जानब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तजारत और इकतसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहिदा मौक़िफ़ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है। इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंद, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तई अपने अज़्म का इआदा किया। भारत की आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वजीर आजम मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज देर गए रोम पहुंचेंगे। वजीर दाखला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खित्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरक तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।

0: देश मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जुनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम मराठवाड़ा और उड़ीसा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्रैकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलावी मैचों की आइंदा सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे और केएल राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हमनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आई सामीन, अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। आज हेल्थ टिप्स में आपके साथ है हिना मौज। सामीन, आज हम बात करेंगे खवातीन के लिए बेहतरीन होम वर्कआउट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की मसरूफ जिंदगी में हर औरत अपने घर, नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियों में इतनी मशगूल हो जाती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अच्छी सेहत ही खुशहाल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिट रहने के लिए हमेशा जिम जाना तो जरूरी नहीं होता। घर पर भी कुछ आसान एक्सरसाइजेस करके खुद को फिट और एक्टिव रखा जा सकता है। सामीन, तो आइए जानते हैं खवातीन के लिए कुछ आसान और असरदार होम वर्कआउट्स, जिसके लिए उन्हें घर में ही सब चीज़ें मुहैया मिल सकती हैं और बाहर जाने की, किसी जिम में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्म अप की। वार्म अप क्या चीज़ है? किसी भी एक्सरसाइज से पहले जिस्म को तैयार करना बेहद ज़रूरी होता है। 5 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग, गर्दन और हाथ पैरों की मूवमेंट कीजिए। इससे जिस्म में लचक आती है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद आप घर में ही स्क्वैट्स कर सकते हैं। स्क्वैट्स जो होते हैं वो टांगों और कमर को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज मानी जाती है। इसे रोजाना 10 से 15 बार करने से जिस्म की ताकत बढ़ती है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। और योग और सूर्य नमस्कार के बारे में तो सब जानते हैं कि ये कितना फायदेमंद है। योग जो होता है वो जिस्म और जहन दोनों को सुकून देता है। सूर्य नमस्कार पूरे जिस्म की बेहतरीन एक्सरसाइजेस मानी जाती हैं। इसे रोज करने से वजन कंट्रोल में रहता है और जहनी तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद आप प्लैंक्स कर सकते हैं। प्लैंक्स जो होते हैं वो पेट और कमर की, जो आपकी मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं। शुरुआत में 20 सेकंड तक प्लैंक कीजिए और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि डांस वर्कआउट जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, मुफीद है, जो लोग डांस करना पसंद करते हैं। अगर आपको डांस पसंद है तो ये एक बेहतरीन और शानदार वर्कआउट साबित हो सकता है आपके लिए। सिर्फ 15 से 20 मिनट डांस करने से जिस्म एक्टिव रहता है और मूड भी अच्छा हो जाता है। सामीन, फिट रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि सही ग़िज़ा और पूरी नींद भी बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और बहुत ही अच्छा खाना खाने की कोशिश कीजिए और हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए। याद रखिए, सेहतमंद औरत ही सेहतमंद खानदान की बुनियाद होती है।

और ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम अपने घर में करके फिट रह सकते हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। लेकिन इससे पहले कि आप इन सब चीज़ों पे अमल करें, एक बात ये कहना ज़रूरी है आपसे कि अगर किसी भी तरीके की मेडिसिन पर आप हैं, कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या फिर किसी और तरीके की जो रेगुलर आप खाते हैं, रोज़मर्रा खाते हैं, तो उसमें आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने से या फिर किसी भी तरीके की ग़िज़ा खाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप जब अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे तो वो आपको सही तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं और आप क्या करें वो भी आपको बता सकते हैं। बहरहाल, हमारी तरफ से उम्मीद करते हैं कि ये जो टिप्स आपको दिए गए वो आपकी सेहत के लिए कारगर साबित होंगे। सेहतमंद इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वो काम कर सकता है जो वो चाहता है। तो खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आज के लिए हमारे सेहत के हवाले से बस यही बातें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है ड्रामा प्यास। इसे तहरीर किया है जनाब रतन सिंह ने। पेशकश प्रेम बोहरा की है।

0: अरे
1: पानी की घोड़ी बचावा
2: गोरी गोरी मैं प्यासा हूँ ऐ पनघट की गोरी मैं प्यासा हूँ
1: पानी के घोड़े पर बैठे हो और प्यासे हो
3: पानी के घोड़े पर बैठे हो और प्यासे हो
2: हाँ पानी के घोड़े पर बैठा हूँ और प्यासा हूँ
1: मैंने पानी का घोड़ा पहली बार देखा है
3: हमने भी पानी का घोड़ा पहली बार ही देखा है
1: कितना अजीब है
3: हाँ कितना अजीब है
4: पानी का घोड़ा किस देश में होता है
1: पानी का घोड़ा धरती पर कैसे चलता है
2: मैं प्यासा हूँ मेरी प्यास मिटाओ गोरी मुझे पानी दो
1: आओ राही मैं पानी पिलाती हूँ पहले बताओ राही पानी का घोड़ा कैसे दौड़ता है
3: हाँ
1: पहले बताओ पानी का घोड़ा कैसे दौड़ता है
2: जितनी तेज मेरी प्यास होती है मेरा घोड़ा उतना ही तेज दौड़ता है
1: और तुम्हारी प्यास कितनी तेज है
2: बहुत तेज बहुत तेज पानी पिलाओ मेरा गला सूख रहा है
1: अच्छा ओक फैला मैं पानी देती हूँ
2: और पानी और गुरी और
1: अरे राही के हाथ रेशम के हैं
4: राही के हाथ रेशम के हैं
1: ये तो बड़ी नरम है बड़ी नाजुक
2: और पानी और गुरी और
1: मेरे घड़े का सारा पानी पी गया और अभी तक प्यासा है
2: हाँ, बहुत प्यासा हूँ
1: लो राही लो मेरे घड़े का पानी पियो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी
2: लाओ और पानी और गोरी और
1: अरे राही के बाल सोने के हैं
4: बाल और सोने के
1: हाँ सोने के और बड़े चमकदार और बड़े खूबसूरत बड़ी नरम जैसे रेशम के गुच्छे
2: और पानी गोरी और पानी
4: दूसरी गोरी का भी सारा पानी पी गया और अभी भी वो खिलाए है
2: और पानी और
1: मालूम होता है राही बहुत दूर से आया है बहुत ज्यादा प्यासा है लो राही

0: और पानी पियो, मेरे घड़े से पियो।
1: और पानी
0: और अब तो सिर्फ एक घड़ा पानी और बचा है।
2: ये भी राही को पिला दो, हम कुएं से और निकाल लेंगी।
0: हाँ, पनघट से राही प्यासा नहीं जाना चाहिए।
2: लो राही पियो।
1: लाओ और पानी।
2: अरे
1: और
2: ये राही तो एक एक करके हम सबके घड़ों का पानी पी गया और अभी तक प्यासा है। इसे और पानी मत देना, इसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी।
0: हाय बेचारा प्यासा है, पनघट पर आकर कोई राही प्यासा चला जाए तो कुआं का पानी सूख जाया करता है।
2: हाँ बहुत पाप लगता है, राही हमारा सारा पानी पी गया और अभी तक प्यासा है। हम क्या कर सकते हैं, ये अपने घोड़े का पानी क्यों नहीं पीता, इसका घोड़ा भी पानी का है।
0: हाँ राही तुम अपने घोड़े का पानी क्यों नहीं पीते।
1: गोरी घोड़े का पानी पी गया तो फिर मैं सवारी काहे की करूँगा।
2: हाँ बेचारा अपना सफर कैसे करेगा।
0: ओह हमारा सारा पानी पी गया और बेचारा है।
2: राही के लिए बुरा बोल नहीं बोला जाता।
0: तो तुम ही इसकी प्यास मिटा दो ना।
2: मैंने तो उसे पानी पिलाया है। पानी तो इसे हम सब ने पिलाया है।
0: हाँ, लेकिन इसकी प्यास मिटती नहीं, न जाने कैसी प्यास है।
2: राही तुम कहाँ से आए हो और किधर जाना है।
0: तुम्हें इतनी प्यास कहाँ से मिली है राही।
2: तुम उसे बोलने भी दोगी या पूछती ही जाओगी।
0: हाँ हाँ
2: बताओ राही तुम कहाँ से आए हो, किधर जाना है।
1: मैं अपनी प्यास आसमान से लेकर उतरा हूँ।
2: वहाँ भी तुम्हारी प्यास नहीं मिटी, आसमान में पानी था।
1: था।
2: वहाँ पनघट पर गोरियाँ पानी भरती थी।
1: हाँ भरती थी।
0: वो भी तुम्हारी प्यास नहीं मिटा पाए।
1: नहीं मेरी प्यास वहाँ नहीं बुझी।
2: तो तुम आसमान से धरती पर क्यों आए।
1: अपनी प्यास बुझाने।
2: तुम्हारी प्यास आसमान पर भी तो मिट सकती थी।
1: मैं वहाँ का सारा पानी पी गया। सारा पानी पी गया।
2: तुम्हारा मतलब है वहाँ के पनघट सूख गए।
1: सिर्फ पनघट ही नहीं, वहाँ की सारी नदियाँ, सारे नाले, सारे दरिया, सारी झीलें।
2: तुम्हारा मतलब है वहाँ के सारे समंदर सूख गए।
0: तुम वहाँ का सारा पानी पी गए
2: और तुम अभी तक प्यासे हो और अब अपनी प्यास लेकर हमारे गांव में आए हो।
3: हाँ, हमारा कुआं भी सूख गया।
2: हाँ,
3: कुआं सूख गया।
2: कुआं सूख गया।
3: हाँ।
2: अरे हाँ, अरे देखो देखो कुएं का तला दिखाई दे रहा है।
0: कुआं तो वाकई सूख गया।
2: हाँ। और हमारे घड़े खाली हैं।
0: अब हमारी प्यास कैसे मिटेगी।
3: अब हमारी प्यास कैसे बुझेगी।
0: राही तुम हमारा सारा पानी क्यों पी गए।
2: राही कहाँ है।
0: अरे राही कहाँ चला गया।
3: चला गया।
0: कहाँ चला गया। कहाँ चला गया।
2: चला गया
0: और अपनी प्यास हमें दे गया।
2: हाँ चला गया
0: और अपनी प्यास हमें दे गया।

0: दादी लोरी में मुन्ने को पानी पिला रही है। दादी लोरी में मुन्ने की प्यास बुझा रही है।
1: घड़े हमारे खाली हैं। मुन्ना पानी कैसे पिएगा?
2: 100 साल तक कैसे जिएगा?
3: मुन्ना पानी पिएगा, 100 साल तक जिएगा।
2: अब अरे लड़कियों, मुन्ने के लिए पानी लाओ।
1: हमारे घड़े खाली हैं दादी।
2: घड़े खाली हैं? वो क्यों?
1: कुआं सूख गया दादी।
2: वो कैसे जी लड़कियों, ये अंधेर कैसे हो गया?
1: दादी, पनघट पर एक राही आया था
4: और वो सारा पानी पी गया
2: है।
1: अब हम पानी कहाँ से पिएंगे दादी?
5: अब हम कैसे जिएंगे दादी?
2: अरे ठहरो लड़कियों, अब मुझे कुछ सोचने दो।
6: भाई सब चुप करो
2: ना। तुमने क्या कहा, पनघट पर राही आया था?
1: हाँ दादी, और वो सारा पानी पी गया।
2: क्या वो पानी के घोड़े पर सवार था?
4: हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम दादी?
2: टोको मत, पहले ये बताओ उसके बाल सोने के थे?

0: उसके हाथ रेशम से थे?
1: थे, मैंने उन्हें छूकर देखा था।
2: तुझे लाज नहीं आई ये बात कहते?
0: इसमें लाज की क्या बात है री, रेशम से हाथ देखकर छूने को किसका दिल नहीं करता। हाँ,
3: उसके हाथों को छुआ तो तुम सब नहीं होगा।
0: बोलो, चुप क्यों हो?
2: हाँ, छुआ था। हाँ हाँ दादी,
3: वो ही तो मैं कहूँ, कुआं सूख कैसे गया?
2: ऐसा क्यों हुआ दादी?
3: ना महरम हाथों को छूने से जिंदगी का कुआं सूख जाया करता है बेटी।
2: हाँ। और क्या दादी?
3: और जिंदगी का कुआं सूख जाए तो अपने होंठ प्यासे रह जाते हैं।
0: वो भी तो प्यासा ही गया है दादी।
3: वो प्यासा तो है, मगर अपनी प्यास दूसरों को बांट रहा है। और फिर उसका क्या है? उसके पास सोने के बाल हैं, उसके रेशम के सिहात हैं, और उसके पास पानी का घोड़ा है सवारी करने को। वो तो घाट घाट जाएगा और पानी पिएगा।
2: अब हमारी प्यास का क्या होगा दादी?
1: हमारे घड़े खाली हैं,
0: हमारा कुआं भी सूख गया दादी, और हमारे पास पानी का घोड़ा भी नहीं है।
2: अब हम क्या करें दादी, बताओ ना।
3: जिधर वो गया है अब उधर ही जाओ।
2: वो किधर गया है री? तुमने देखा है वो किधर गया है?
0: तो क्या मैं उसे देख रही थी?
2: देख नहीं रही थी तो क्या कर रही थी?
3: अरे लड़कियों, झगड़ो मत, तुम चार हो, भेष बदल कर जाओ चारों तरफ।
2: वो हमें कहाँ मिलेगा दादी?
3: मैं बताती हूँ, दिन के वक्त वो मिलेगा किसी पनघट पर, और शाम के वक्त किसी पहाड़ की गोद में, उगे पेड़ों के झुंड में, और अगर वो जमीन में कहीं ना मिला तो धरती के आखिरी सिरे पर, वो समंदर के तट पर मिलेगा किसी जल परी से बात करता हुआ।
2: अच्छा दादी, वो मिल जाए तो हम क्या करें?
3: वो मिल जाए तो उसका पानी का घोड़ा छीन लो। उस घोड़े पर बैठकर तुम धरती के जिस हिस्से में जाओगी, वहाँ वहाँ जिंदगी देने वाला पानी कुओं में भर जाएगा।
0: उसने हमारा पीछा किया तो?
3: वो लोग जिनके हाथ पांव रेशम के होते हैं ना, उनके लिए एक कदम भी पैदल चलना महाल होता है। पानी के घोड़े के बगैर वो नकारा होते हैं।
2: इसका मतलब है हमने मिट्टी की मूरत को पानी पिलाया था?
1: हम लोगों ने तो उसकी शक्ल ही शक्ल देखी थी,
2: या फिर सोने के बाल।
0: वो मिल जाए तो मैं उसे घोड़े से उतार कर अपने खेतों में हल चलवाऊं।
2: हाँ। मैं तो
3: ओ, बातों में वक्त जाया ना करो लड़कियों, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएगा। चलो चलो, उड़ो उड़ो,
2: चलो चलो चलो।

0: ये बाग बड़ा खूबसूरत है और मैं प्यासा हूँ।
1: और मैं?
0: तुम भी बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी खूबसूरत हो, और मैं प्यासा हूँ।
1: और हम?
0: तुम सब बड़ी खूबसूरत हो और मैं प्यासा हूँ।
1: तुम्हारी ये प्यास कैसे मिट सकती है राही?
0: मेरी प्यास?
1: इसकी प्यास मिटेगी पानी से।
2: मगर इसका तो अपना घोड़ा पानी का है।
1: इसकी प्यास मिटेगी दौलत से।
2: मगर इसके तो अपने बाल सोने के हैं।
1: इसकी प्यास मिटेगी किसी गोरी।
2: देखती नहीं इसकी आंखें हमें कैसे घूर रही हैं?
0: गोरी, मेरी आंखें पानी तलाश कर रही हैं।
1: हमारे जिस्म पानी की झीलें नहीं है जो हमें पट पट घूर रहे हो।
2: राही को सख्त बात कहना पाप है,
1: हमें राही की मदद करनी चाहिए।
2: मैं राही को पानी पिलाऊंगी।
0: हाँ गोरी, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मैं बेहद प्यासा हूँ।
1: राही, तुम अपनी प्यास लेकर हमारे बाग में क्यों आए हो?
0: अपनी प्यास मिटाने, तो मुझे पानी पिलाओगी ना?
1: हम सब मिलकर तुम्हारी प्यास बुझाएंगी। तुम्हारी प्यास मिटाना परियों का धर्म है।
0: आप जैसी सुंदर परियों के पास मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ।
1: हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे राही।
0: हाँ, मुझे पानी पिलाओ, मेरी प्यास जल्द मिटाओ।
1: तुम्हारा घोड़ा हमारी तरह हवा में उड़ सकता है?
0: हाँ।
2: तुम्हें हमारे साथ उड़ते उड़ते उस सामने वाले पहाड़ तक चलना होगा।
1: उस पहाड़ पर आकाश के सारे बादल आराम करते हैं।
2: उस पहाड़ की चोटी पर हम चारों मिलकर नाचेंगे।
1: हम नाचेंगे तो हमारे पंखों से टकराकर सारे बादल परस पड़ेंगे।
2: फिर तुम दिल भर कर अपने प्यास बुझाना।
0: चलो मुझे वहाँ जल्दी ले चलो।
1: हाँ, इसे बहुत प्यास लगी है।
2: बेचारे के होंठ सूख रहे हैं,
1: चेहरे का रंग फीका पड़ रहा है।
2: लो राही, हम उड़े।
1: तुम भी हमारे पीछे पीछे आओ,
2: मैं इसके साथ साथ उड़ती हूँ।
1: राही, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, सोने के हैं?
0: हाँ, तुम भी तो खूबसूरत हो।
2: राही के हाथ छूकर देखो, रेशम की तरह मुलायम है।
1: राही, तुम मेरे साथ साथ उड़ो, तुम्हारे साथ उड़ना बड़ा अच्छा लगता है।
2: ये राही बड़ा अच्छा राही है, जिधर से गुजरता है माहौल खूबसूरत हो जाता है।
1: वाकई बड़ा अच्छा राही है
2: और सुंदर भी।
1: अब हम पहाड़ पर आ गए राही।
0: गोरी, ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, यहाँ से तो धरती दिखाई नहीं देती।
1: और ये पहाड़ चारों तरफ से बादलों से घिरा है।
0: हाँ, अब तुम लोग नाचो ताकि पानी बरसे, मैं प्यासा हूँ।
1: नाचने के लिए तो हमारे पांव खुद बेचैन हो रहे हैं।
0: अब जल्दी नाचो, मुझसे मेरी प्यास बर्दाश्त नहीं होती।
1: हम नाचेंगे तो, लेकिन एक शर्त है राही।
0: अब जो कहना है जल्दी से कह दो, मेरे होंठ सूख रहे हैं।
1: रेशम के हाथों के इशारों पर जब हम नाचते हैं तो बेसुध हो जाते हैं,
2: हमें अपना होश नहीं रहता। और ये काली घटा तो हम पर पहले ही जादू किए दे रही है।
1: बस हमें यही कहना है कि जब तुम्हारी प्यास मिट जाए तो चुपचाप चले ना जाना।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
2: हाँ, ऐसा ना हो हम तो नाचती रह जाए और तुम अपनी प्यास मिटा कर 9-2-11 हो जाओ।
1: जब तुम्हारी प्यास मिट जाएगी तो हम सब तुम्हारे पानी की घोड़े पर बैठकर वापस चलेंगे।
2: हाँ, हमने पानी के घोड़े पर कभी सवारी नहीं की।
1: नाचने के बाद हम थककर चूर हो जाएंगे, तब हमारे लिए उड़ना मुश्किल होगा, इसलिए हमें अपने साथ लेकर चलना।
0: मुझे सब शर्तें मंजूर हैं, अब तुम नाचो, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है।
1: नाचती है।

0: नाचते बेदम हो गई।
1: मैं नाचते नाचते बेहाल हो गई।
0: जिसके लिए हम नाचते रहे उसकी प्यास मिटी के नहीं।
1: बादल तो सारे बरस गए और पानी की एक बूंद दिखाई नहीं देती।
0: तो क्या वो सारा पानी पी गया?
1: राही हो राही, तुम कहाँ हो राही?
0: राही राही, आवाज दो, तुम कहाँ हो?
1: मालूम होता है राही अपनी प्यास मिटाकर फिर रफू चक्कर हो गया।
0: हाँ? अपनी प्यास बुझा गया और हमें बेदम कर गया।
1: वक्त जाया ना करो, हमें उसका पीछा करना चाहिए।
2: हाँ, हाँ, दादी ने कहा था वो तुम लोगों को समंदर के तट पर मिलेगा।
1: हाँ, हमें अब समंदर के तट पर चलना चाहिए।
0: करो
1: चलो,
0: अगर उसने समंदर का सारा पानी भी पी लिया तो धरती प्यासी रह जाएगी।
1: हाँ, और अगर धरती प्यासी हो गई तो जिंदगी प्यासी रह जाएगी।
0: हाँ, चलो चलो
1: चलो,
2: अब हम उसको समंदर के तट पर ही पकड़ेंगे।
1: कोई उसके सोने के बालों पर मोहित नहीं होगी।
0: हाँ,
1: और हम में से कोई उसके रेशमी हाथों को नहीं छुएगी।
0: हम छूते थोड़ी हैं उसके हाथों को।
1: उसके हाथों की खूबसूरती हमारे दिलों को बेकाबू कर देती है।
2: और हमारा दिल उसके हाथों को छूने के लिए मचल उठता है।
1: लेकिन जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए अपने दिल पर काबू करना ही पड़ता है।
0: अपनी ख्वाहिशों पर काबू तो पाना ही होगा,
2: वरना उस राही का जादू हम पर फिर चल जाएगा।
0: अब की भी उसका जादू चल गया तो?
2: नहीं, अब की ऐसा नहीं होगा। हम अपने दिलों पर पूरा काबू रखेंगे।
1: धरती प्यासी नहीं रहेगी, जिंदगी प्यासी नहीं रहेगी।

0: इतने लंबे सफर के बाद समंदर तट पर पहुंचा हूं। यहां मैं जी भर कर पानी पीऊंगा, अपनी पूरी प्यास मिटाऊंगा।
1: राही किधर से आया है और किधर को जाना है?
0: ऐ जलपरी, मेरी आंखें तुम्हें ही खोज रही थी। तुम्हारे लिए ही मैंने इतना लंबा सफर तय किया है।
1: हाँ, हमें हमारी दादी ने बताया था कि तुम एक न एक दिन समंदर तट पर जरूर आओगे। हमें तुम्हारा ही इंतजार था।
0: ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत जलपरी मेरा इंतजार कर रही है।
2: राही, अदब से बात करो। ये आम जलपरी नहीं, इस समंदर के राजा की एक

0: चारों तरफ पानी है और मैं प्यासा हूँ। चारों तरफ पानी है और मैं प्यासा हूँ। चारों तरफ पानी है और मैं प्यासा हूँ। ये मैं आ गया काली बदली के नीचे और वो खड़ी है शहजादी की बांदिया।
1: हाँ, ये हमारी तरफ कौन आता है? अरे यहाँ तक बगैर इजाजत कौन आता है?
0: मेरे पास जलपरियों की शहजादी की निशानी है, ये सीपी, उसी ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। ये निशानी ले लो और मुझे जल्दी से मीठे पानी का रास्ता बता दो, मैं बेहद प्यासा हूँ।
2: हाँ, ये सीपी शहजादी की ही है,
1: हमारी मालजादी की है।
2: कहो राही, तुम क्या चाहते हो? बोलो, तुम क्या मांगते हो?
0: मैं प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा।
3: ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओगे?
1: हमारे ठंडे पानी से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी?
2: तुम इतने प्यासे क्यों हो राही?
0: मैं आसमान से अपनी प्यास लेकर उतरा हूँ, बेहद प्यासा हूँ। जल्दी बताओ पानी कहाँ है?
2: सबर राही, सबर। तुम्हें मालूम है कि हमारी शहजादी ने ये सीपी ही निशाने के तौर पर क्यों दी?
0: सीपी क्यों दी है? इसलिए दी है कि तुम लोग उसे शहजादी का हुक्म समझकर मुझे ठंडे मीठे चश्मे का रास्ता बता दो, उस चश्मे का जहाँ से तुम लोग शहजादी की रसोई के लिए पानी भरते हो।
3: नहीं राही, नहीं, शहजादी ने हमें इशारा दिया है कि इस राही की प्यास झूठी है।
0: नहीं नहीं नहीं, मेरी प्यास सच्ची है, मैं वाकई बहुत प्यासा हूँ।
1: राही, ये सीपी देखते हो, इसकी प्यास सिर्फ एक बूंद पानी की होती है।
2: राही, प्यास मिटाने के लिए तो एक बूंद पानी भी काफी होता है। इसके लिए समंदर में आने की जरूरत नहीं होती।
1: देखो राही, एक बूंद पानी पीकर ये सीपी अपनी कोख में एक मोती पैदा करती है।
3: यकीन न हो तो मैं सीपी का पेट चाक करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मोती कितना खूबसूरत है।
0: मोती वाकई बड़ा खूबसूरत है, मगर तुम लोग मुझे बातों में ना उलझाओ, ठंडे पानी का चश्मा दिखाओ।
1: इतने बेचैन ना हो राही, ठंडे पानी के लिए अभी तुम्हें थोड़ा और आगे जाना होगा। लो ये मोती ले लो और इस मोती के एवज अपने सोने के बाल हमें दे जाओ। जब तुम पानी पीकर लौटोगे तो अपने बाल हमसे ले लेना।
0: उफ, मैं क्या करूं, मैं बेहद प्यासा हूँ। आप लोग मुझे मोती ऐसे ही क्यों नहीं दे देती?
1: ऐसा नहीं हो सकता, ये मोती बड़ा कीमती है।
0: मुझसे मेरी प्यास बर्दाश्त नहीं हो

0: मेरे सारे सोने के बाल ले लो और मोती दे दो और बताओ अब मुझे क्या करना है, मुझे बहुत प्यास लगी है।
1: ये मोती लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर उस बदली के नीचे जाओ, वहाँ तुम्हें चार मोरनियाँ उड़ती हुई मिलेंगी, उनको ये मोती निशाने के तौर पर दे देना, वो तुम्हें ठंडे पानी पीने की इजाजत दे देंगी।
0: अच्छा, पानी का चश्मा वही है?
2: हाँ वही है।
0: अच्छा, जाता हूँ अभी। चल मेरे घोड़े, चल जल्दी चल, बेहद प्यास लगी है। मेरी प्यास मुझे कहाँ कहाँ भटका रही है, यहाँ तक कि मेरे सोने के बाल भी बांदियों ने ले लिए। एक दफा मेरी प्यास मिट जाए सोने के बाल तो मैं उन बांदियों से ले ही लूंगा, वो जाएंगे कहाँ। हाँ।
2: ठंडे पानी के चश्मे की तरफ ये कौन उड़ा चला आता है?
3: अरे इसके हाथ में शहजादी का दिया हुआ मोती चमक रहा है।
0: हाँ, मुझे शहजादी ने भेजा है, मैं बेहद प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा। ये लो मोती, शहजादी की निशानी।
1: ये मोती है तो शहजादी का ही। बोलो राही, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं?
0: मुझे जल्दी से ठंडे पानी का चश्मा दिखा दो, मैं बेहद प्यासा हूँ।
2: ठंडे पानी का चश्मा तो हम तुम्हें दिखा देंगे, लेकिन इस घोड़े पर बैठकर तुम वहाँ नहीं जा सकते। हा? तुम्हें इस घोड़े से नीचे उतरना होगा।
1: हाँ, घोड़े के सुमो से तो चश्मे का पानी अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, इसलिए।
0: मेरी प्यास मुझे क्या क्या दिन दिखाएगी, मेरे सोने के बाल तो बांदियों ने ले लिए, तो क्या अब मुझे पानी के घोड़े से भी नीचे उतरना होगा? क्या इस घोड़े से भी हाथ धोने पड़ेंगे?
2: हम तुम्हारा घोड़ा थामे रहेंगे राही, तुम पानी पीकर अपना घोड़ा वापस ले लेना।
0: मेरे पानी पीते पीते तुम लोग कहीं चली ना जाना।
1: नहीं जाएंगी राही, नहीं जाएंगी, तुम इत्मीनान से पानी पियो।
0: ये लो घोड़ा, अब बताओ पानी कहाँ से पीना है?
2: ये रही ठंडे पानी की धार, जी भर कर पियो।
0: मैं प्यास बुझाऊंगा, जी भर का पानी पियूंगा। ये ठंडा पानी है या खोलता हुआ खारी पानी? अरे अरे, मैं तो इसके अंदर डूबता चला जा रहा हूँ।
3: अरे राही, हमारे पनघट के ठंडे पानी से तुम्हारी प्यास नहीं मिटी थी, तो इस खारे पानी से कहाँ मिटेगी?
0: तो क्या तुम लोग वही पनघट की लड़कियाँ हो?
3: पनघट की लड़कियाँ भी हैं और ऊंचे पहाड़ वाली परियां भी।
1: तुम्हारी प्यास मिटाने के लिए तो हमने अपना सारा कुआं खाली कर दिया।
2: तुम्हारी प्यास मिटाने के लिए हमने नाच नाच कर बादल बरसाए और फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं मिटी। राही, अब अपनी प्यास लेकर डूबो खाली गर्म पानी में।
0: नहीं, मैं डूबूंगा नहीं, तुम्हारी शिकायत जलपरियों की शहजादी से करूंगा।
1: हमको धोखा देने वाले राही, वो जलपरी भी वही पनघट वाली लड़की है।
2: तुम्हें याद होगा पनघट पर हम चार ही थी और परियां भी हम चार ही थी
3: और जलपरियां भी हम ही चार थी
1: और अब हम चारों जाती हैं
2: और तुम्हारे पानी के घोड़े पर चढ़कर जाती हैं।
0: अरे, मैं तो समंदर की तरह डूब रहा हूँ, मेरी सांस बंद होती जा रही है, मेरी प्यास कहीं ज्यादा रख।
1: चल पानी के घोड़े धार, एक के हो जाओ पूरे चार।
2: हम पानी के घोड़ों पर बैठेंगी,
1: हमारे हाथों में सोने के बाल हैं
2: और हमारे नीचे पानी के घोड़े हैं।
1: मैं जाती हूँ उत्तर को, तुम जाओ दक्कन में।
2: मैं जाती हूँ पूरब को, तुम जाओ पश्चिम में।
1: इधर भी जाएं, उधर भी जाएं,
2: धरती की हम प्यास मिटाएं
3: और सूरज डूबने से पहले गांव में हम पहुँच भी जाएं।

अभी आपने सुना जनाब रतन सिंह का तहरीर करदा ड्रामा प्यास, पेशकश प्रेम वोहरा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है आप सबकी फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तामिल इरशाद प्रोग्राम के साथ मैं हिना मौज, मेरा आदाब कबूल कीजिए।

हावड़ा ब्रिज का ये नगमा, आशा भोसले की आवाज़, ओपी नैयर का संगीत। आपने ये नगमा सुना, फरमाइश देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नू लाल रजक के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी और भुवनेश्वरी देवी, लोहड्डा जिला बागपत से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। नई बस्ती गंजुनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी। महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलन सरकटे, वरुण जोलका से। दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू, और ये इन्होंने पैगाम भेजा है रघुवीर नगर से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और इनके अहले खाना। इंद्रजीत छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन। अगला नगमा साहिब बेबी और गुलाम फिल्म से है, आवाज़ गीता दत्त की है और मौसिकी हेमंत कुमार की। फरमाइश आप सबकी, मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल, कर्नाटका गुलबर्गा से। विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आपका

अहमदाबाद से हमें पैगाम आया है, तरुलता सागर चांद खेड़ा अहमदाबाद से शामिल हुए हैं, इनके साथ आनंद राज और सागर और इनके अहले खाना शामिल हैं। मीर हसन निंदवानी, यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हुसैन निंदवानी तंगवानी से, मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंत राव भोजने और निवृत्ति आडोकार शामिल हुए हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमल अनेजा। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नफ़ा।

अगला नगमा फिल्म इंसान जाग उठा, आवाज़ आशा भोसले और गीता दत्त की है। इसे लिखा है शैलेंद्र ने और मौसिकी एस डी बर्मन की। फरमाइश आप सबकी। हर गोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, प्रतीक्षा संधू। पटियाला से मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा और इनके साथी। कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा नई दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन। और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री छिपा कॉलोनी खंडवा से शामिल हुए हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरप्रीत पंचोलिया। राधे कुमार विद्यार्थी आपने ये कहाँ से भेजा है, इनके साथ हैं ये, इन्होंने भेजा है नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार और इनके साथी। राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर। नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, साई नगर आरवी महाराष्ट्र से। नाथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्रजीत शर्मा और इनके साथी ये शामिल हुए हैं मंडी हरजीराम मलोट से। विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से। गजानंद येले, नवदीप येले, मनीष येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। नजफगढ़ से शाहरुख, फारुख, शबनम और शहनाज। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कालका से शामिल हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। दिनकर सालवे, गंगा सालवे और इनके साथी। शुगर फैक्ट्री गेवराई से।

रिपीटेड मैसेज आप लोग बहुत भेजते हैं, इसलिए परेशानी होती है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। हस्सू बाबा मोहम्मद हसनैन, सफिया अरहान खोकर, और ये शामिल हुए हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नफा।

मोहम्मद यासीन अनजान गिरदी झारखंड से शामिल हुए हैं। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सितार परवीन और असमा नाज अंसारी, लाल बाबू दीवाना उमर राज और दिव्या भारती जेल रोड दिल्ली से। संबल से छोटे अंसारी का पैगाम हमें मौसूल हुआ है और अरुण कुमार मालवीय दर्द ये शामिल हुए हैं चौराहा गेबी चौराहा वाराणसी से। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। चमनपुरा उदयपुर से सबीहा खानम, फरीदा बानो, रईसा खातून। बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम, भाई कामरान खान, मोहल्ला पठान कुरावली से। अनंत वाडे, रमेश्वर वाडे और शुभम साक्षी ये शामिल हुए हैं वाडी खाम गांव से। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसविंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लाडो

कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। हरेन पांड्या, नरेंद्र पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या, गौहाटी असम से। अहमद भाई फूलवाले, सदफ आरजू फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से। और इनके साथ शमीम अहमद फूलवाले और इनके साथी शामिल हैं, छोटी बलिया मुंबई करजत से। शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार और इनके साथी शामिल हुए हैं, पीरह बाजार झुमरी तलैया से। आजाद नगर बेलगाम कर्नाटका से मोहम्मद अनीस दीवान, मोहम्मद दानिश दीवान, मोहम्मद फिरोज और इनके साथी। अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे और शुभम शुभम शामिल हुए हैं, कहाँ से? वाडी खामगाम से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासू, पाखुड़ झारखंड से। आप सबकी फरमाइश पर अगला नगमा फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ।

कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू कटीला से, दिल्ली यमुना विहार से अफसाना खातून, डोनट बापो और हेमा रानी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और इनके साथी शामिल हुए हैं जसपुर उत्तराखंड से।

सुभाष योगी, राजू मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी, हांसी से। तो आप सबकी फरमाइश पर फागुन फिल्म का ये नगमा।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। दौरान प्रोग्राम अब वक्त है सुनने का खबरें बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने ओसलो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोज़ा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं ने अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओसलो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है। जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समर आवर साबित होंगे।

0: करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सफारतखाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी योरी यूशोको के हवाले से कहा है कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनाकिद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम के अरसे में जनाब पुतिन का भारत का यह दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे, जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूबी मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में भी गर्मी की तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोज़ा बैन अलावी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे, जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, जबकि प्रिंस यादव को पहली मर्तबा ODI टीम में शामिल किया गया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों की तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद। इस प्रोग्राम का अगला नगमा फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। फरमाइश भेजी है छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री ने। सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। कल्पना ताई लोखंडे, शैलेंद्र शैलेश लोखंडे और लक्ष्मण राव लोखंडे यवतमाल महाराष्ट्र से। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल, गीतिका और इनके साथी। बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत ब्रिगु भाटापारा से। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा जिला मऊ से। सुनील सामंग और अंजलि सुनील शामिल हुए हैं महाराष्ट्र से। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्या और इनके साथी मऊ से इन्होंने शिरकत की है। जुबैर अंजुमन खान, सबीहा जुबैर, जुबैर अली खान ये शामिल हुए हैं कदवई नगर सिद्धपुरा से।

जूली जगदीश गुजराती, जैनीश गुजराती और लड्डू कुमारी सौराष्ट्र राजकोट से, सुब्रत चौधरी कोलकाता से, कंचन सुनार, कुसुम और सरोज सुनार सिटी सेंटर अहमदाबाद से, गांधीबाग अंकोलासे से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर, दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी और इनके साथी शनि मंदिर चौक खंडवा से, विनायक बेंदे, श्रीमती मंगला बेंदे, शुभम बेंदे अकोट से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाख, खदीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक के साथ इनके बहुत सारे साथी शामिल हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और गौसिया फातिमा,

मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा बेबी अवेरा बुराव के नगर श्रीरामपुर से। मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा ये शामिल हुए हैं रेलवे रोड गंजनवारा से। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, फलक तबस्सुम शेख, बेबी अलिजबा शेख। जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कुटेचा और इनकी फैमिली। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा।

अगले नगमे की फरमाइश हमारे पास आई है डाकघर निम्नाबाद ज़िला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और इनके साथियों की। बबलू ठेकेदार शेख शगीर, शेख वजीर और इनके साथी मुताला बाजार से। प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण और साथी भटिंडा पंजाब से। अल्तमश समीना फिरदौस जुमानगर खंडवा से। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि ने शमूलियत की है। सुरेश नारंग, आशु नारंग, विनोद पुरी सहारनपुर से।

आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश आशीष गौड़। महराज जहां और गुलाम साबर राही ताज मोहम्मद अंसारी आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। फैज़ अहमद अफसाना हुरैन फातिमा गायत्री कॉलोनी खंडवा से। दिलीप कुमार सोनी कमल किशोर शाह मुंदी चक भागलपुर बिहार से। इंदुकर विजय चौहान इंदुकर, तेजस्वी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान कोल्हापुर महाराष्ट्र से। अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर खंडवा संजय कॉलोनी से। दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, अक्षय रामेकर अमरावती महाराष्ट्र से। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा, फिल्म है जंगली।

जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। अमीर खुसरो रोड गंजडनवारा से डॉक्टर दबीर उल हसन, बेगम शबनम अनवर और भुवन प्रकाश गौतम। शाहिद अली, इफ़त फारूकी और हिफ्सा, चेन्नई से इन्होंने पैगाम हमें भेजा है। अलिंका डबवली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी। मल्लानपुर दांगा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक फूलवाले, ये शामिल हुए हैं निजामाबाद तेलंगाना से। कंडेला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। मल्लापुर दागा से, अच्छा आपका मैंने ले लिया था पहले, अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक, आपका भी रिपीटेड मैसेज है, बार बार ना भेजें और लोगों के मैसेजेस जो हैं वो फिर इधर उधर हो जाते हैं। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और इनके साथी, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, अजमेर शरीफ राजस्थान से। आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा से शामिल हुए हैं। नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़, लेक सिटी उदयपुर से। नसीब खान, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, चमनपुरा उदयपुर से। तो लीजिए, आप सबकी फरमाइश पर ये आखिरी नगमा फिल्म हम दोनों से।

0: इस नगमे के साथ आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
2: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम

0: अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
1: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ऑस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, एआई को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
0: अंशु जी, आप को मैं यहां पर रोकना चाहूंगी क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे।
0: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
1: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कहा हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इनके लिए एक

0: लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो
1: जी
0: भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें
1: जी
0: फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है। बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है
1: बिल्कुल।
0: जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: सो
0: जी
1: अंशु
0: सोनी,
1: जी, जो आप विस्तार की बात कर रही हैं, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा, जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है, उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ, उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं। ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
2: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
0: सोनू जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट हैं ये समाप्त हों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड इंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक की तमाम देश जो हैं सोनू जी वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
1: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
0: बिल्कुल सोनू जी, और यहां पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड

0: कहलाते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो 19 बिलियन USD से
1: जी
0: 20 बिलियन USD तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक 30 बिलियन USD तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से 100 बिलियन USD का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं, हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा, यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए FDI बढ़ाने, और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहां पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करें। तो यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
1: जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलेटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में वो 4 गुना बढ़ा है और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। अब जो ये बायलेटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहां इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
0: निश्चित
1: संक्षेप में बताएं। जी
0: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहां है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं। निवेश कर रहे हैं
1: जी। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहां की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है बज़्मे मौसिकी। आज इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे राग शुद्ध कल्याण में ख्याल, पेश करेंगे मानिक वर्मा।

0: राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुना भी आपने। फनकार थे जनाब मानिक वर्मा। प्रोग्राम था बज़्म में मौसिकी। अब वक्त है आलमी खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछले एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओसोलो में

नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हममनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत के टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, ने अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओसलो में कल तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछले एक दहाई में 200% बढ़ गई है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है। जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समर आवर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तजारत और इक्तसादी शराकत दारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों तरफ़ैन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौक़िफ़ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मेयार नहीं है। इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़राए आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका इकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कथीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तहत अपने अज़्म का इआदा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका इकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निपटने में इनकी अकदार मुश्तरक है। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि वो दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक मजबूत, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीक़ा कार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। अमरीका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर अटलांटा में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबराह इजलास के तेज़ी से तैयारी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे, ताकि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग को आगे बढ़ाने के G20 के बुनियादी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। यह सरबराह इजलास अमरीका के क़याम के 250 साल होने की तकरीबात के साथ मुनक़िद होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल पहली मरतबा इंतहाई ख़तरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। अदालत ने इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की हिफाजत की ज़रूरत का हवाला देते हुए ये फ़ैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कल उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मुकाम पर ले जाने या उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत की इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक
आज़ादी के साथ चलने फिरने का हक का भी इहाता करता है।

0: जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। भारत के इंतखाबी कमीशन ने आंध्र प्रदेश में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरेसानी SIR के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग तारीख के तौर पर मुकर्रर किया है। प्रोग्राम के मुताबिक तैयारी की सरगर्मियां, जिसमें तरबियत और प्रिंटिंग के काम शामिल हैं, 5 जून से 14 जून तक अंजाम पाएंगे। बूथ लेवल अफसरान की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक का काम 15 जून से 14 जुलाई तक होगा। पोलिंग मरकजों के मंतकी जवाज की जरूरत करार दिए जाने का काम भी इस मुद्दत के दौरान मुकम्मल हो जाएगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वह अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निपटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मसूफ नई दिल्ली में कल मुनक़दा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वूर के साथ काम कर रही है। वजीर दफा राजनाथ सिंह 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जनूबी कोरिया के सेवल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरे यूशोको के हवाले से कहा है कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक़िद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम के अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछले मरतबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे, जो दिसंबर 2025 में हुई थी। वजीर दाखला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने कल कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खित्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरक तौर पर एक साइंसी लाइहे अमल तैयार किया है। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलावी मैचों के आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे, जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, जबकि प्रिंस यादव को पहली मरतबा ODI टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुल्लानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ODI मैच खेले जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने ओसोलो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए क्लासिक की मौसीकी के तहत राग हंस ध्वनि सारंगी पर। फनकार हैं मुनीर खान।

प्रभु का घर। अभी आप इस फिल्म का नगमा सुन रहे थे, आवाज़ थी खुर्शीद की। अगला नगमा रतन फिल्म से है, आवाज़ जोहरा अम्बाला की है और मौसिकी नौशाद की।

फिल्म मिर्ज़ा गालिब में भी आपने सुरैया को सुना। अगला नगमा हॉस्पिटल फिल्म से है, आवाज़ कनन देवी की है।

0: क्या आओगे ना?
1: बोलो बोलो
2: आखिरी शब प्रोग्राम का आखिरी नगमा फिल्म मुमताज से है, आवाज़ खुर्शीद की है।

0: इसके साथ ही आज का आखिरी शब प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। अब वक्त है खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछले एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओसोलो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हममनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट

यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, ने अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओसोलो में कल तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछले एक दहाई में 200% बढ़ गई है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है। जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समर आवर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तजारत और इक्तसादी शराकत दारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों तरफ़ेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौक़िफ़ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मेयार नहीं है। इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़राए आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका इकदार उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तहत अपने अज़्म का अदा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज़्यादा ताउन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका इकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ात और आलमी रखना अंदाजी के चैलेंजों से निपटने में इनके इकदार मुश्तरक हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। अमरीका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर अटलांटा में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबराह इजलास की तेज़ी से तैयारी कर रहा है। अमरीकी वज़ीरे खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे ताकि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग को आगे बढ़ाने के G20 के बुनियादी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाज़त दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ़ और आवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कल उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आज़ादी के साथ चलने फिरने का हक का भी इहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। भारत के इंतखाबी कमीशन ने आंध्र प्रदेश में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग तारीख के तौर पर मुकर्रर किया है। प्रोग्राम के मुताबिक तैयारी की सरगर्मियां जिसमें तरबियत और प्रिंटिंग के काम शामिल हैं 5 जून से 14 जून तक अंजाम पाएंगी। बूथ लेवल अफसरान की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक का काम 15 जून से 14 जुलाई तक होगा। पोलिंग मरकजों के मंतिकी जवाज की जरूरत करार दिए जाने का काम भी इस मुद्दत के दौरान मुकम्मल हो जाएगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने
ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملے

0: संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ. निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार और उज्ज्वल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo, yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Minister of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital Rome on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. United Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across states to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Mr. Shah was addressing the media in Jagdalpur. He said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has said that India remains one of the safest and most inclusive homes for minorities. Mr. Rijiju stated this while addressing the Conference of State Minorities Commissions organised in New Delhi yesterday. Mr. Rijiju said, when we look at neighbouring countries in the Indian subcontinent, we often see minority communities facing existential challenges and seeking refuge in India. He said, from Afghanistan to Sri Lanka, minorities from across the region have looked towards India as a place of shelter, security and dignity. The Kremlin has confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. Russian embassy in South Africa and a social media post cited an aide to President Putin, Yuri Yushchenko, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium, Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Put into bat first, Lucknow Super Giants made 220 for 5 and stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और दोस्तों रात के 1:10:16 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसे लेकर हम आपके साथ हैं और हमें इस बात का पूरा एतबार है कि आप भी हमारे साथ ही होंगे।

दोस्तों, युग बदलने के साथ तकनीक भी बदली, लोगों के सोच भी बदली, लोगों के रहन सहन बदले, लोगों के बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन कुछ इमोशंस, कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं ऐसी हैं जो हम इंसानों में हैं और वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, सालों से रहती रही हैं, आगे भी कई सालों तक ऐसी ही रहेंगी।

दोस्तों एक दौर था जब हीरोइन को हीरो को बनाना होता था, तो वो बोलती थी बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा शायद, लेकिन उन गानों को याद करके हम उस वक्त को और समय के साथ कहीं ना कहीं अपने दिल को सुकून तो दे ही सकते हैं। और बस वही सुकून देने के लिए तो हम आपके साथ हैं रात के 1:21 पर।

और दोस्तों अगला खूबसूरत सा गाना हमने लिया है फिल्म इंतकाम से, जिसे आवाज़ दी है बहुत ही प्यारी आवाज़ ने लता मंगेशकर जी ने, और बहुत ही सच में खूबसूरत आवाज़ ने मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

दोस्तों, मोहब्बत में नज़रें मिलती हैं, एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि बाकी सारे एहसास उतने नहीं करीब हो पाते। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें और गहरी होती जाती हैं और चीज़ों को समझते जाते हैं, तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि दिल टूट सा जाता है।

दोस्तों, गानों के ज़रिए हम कितने एहसास, कितने जज्बात, कितने अरमान सब कुछ जान पाते हैं। और उन्हीं गानों के ज़रिए एक खूबसूरत सा नगमा है किशोर साहब की आवाज़ में, आप भी सुनिए।

दोस्तों, जीवन में बहुत सारे रंग आते हैं। जीवन में कभी हम बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं और कभी तो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा, जैसे कि इस वक्त हम हैं। लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, और अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी अकेलापन लगे तो हमेशा इस गाने को सुन के उस बात को महसूस कीजिएगा, तो आप यकीन जानिएगा कि आपको कभी अकेलापन तो नहीं लगेगा।

दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अकेले आए हैं और अकेले ही ये सफ़र तय करना है। लेकिन लेकिन लेकिन जनाब, अगर आपको राह में किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, तो हमेशा हमेशा हमेशा उनका साथ दीजिएगा। चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें आएँ, लेकिन साथ कभी नहीं छूटना

दोस्तों, ये तो आप मानेंगे कि ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत सख्त है, बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस कठिन ज़िंदगी में भी जो मुस्कुराते हुए चलते हैं, ज़िंदगी का साथ निभाते हुए चलते हैं, वही ज़िंदगी को अपनी सफल बना पाते हैं। और ये नहीं है कि आपको हर कोई दोस्त मिलेगा, हर कोई आपको अपना मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको यकीनी तौर पर, जो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा दुख देंगे, थोड़ा सा।

दोस्तों रात गहराती जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ देर का आपसे विदा लेना पड़ेगा आपसे, लेकिन हम आपके साथ हैं और इस एतबार के साथ कि आप ही हमारे साथ हैं लगातार।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सराजो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य

0: सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड that the relations between India and Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉड

0: गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजेकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और

0: आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।
2: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थे टीके रंगाराजन। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 29वीं तिथि। तदनुसार बीस मई 2026 सुबह के 4:53 और 56 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ

थद सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरुद्वारिआं गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िआ गया।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर न जाय, धोती टिका ते जप माली दाल मलेचा खाय, अंतर पूजा पढ़े कते बासन जुतुर का पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाए त्रंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे नवाज श्री भगाय तिन गलता, दिन कर ब्राह्मण पूरे ना दियो ना पिया वह ईसा, कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म तरम का डेरा दू नानक कूड़ दया परपूर, मत टिका तोड़ तो तीक खाई हाथ श्री जगत कसाई, नील बत्र पैरे प्रवान मलेस्तान ले पूजे प्राण, आपाखे आक कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार, मत पिटै वे मत पिटै अन साडा पिटै तन पिटै फिर करे मन जुठा चली परे, कहो नानक सच ते आई है सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी।

जित मुख सदा सलाइया बकारत चार नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सकवा के अपना।

और सबको आखे अपना जिस नाई सोचन कड़ी है, किता पो अपना पे ही लेखा संडी है, जा रहना नहीं ऐत जगता कायद गर्भ हंडी है, मंदा किसे ना खिए पर अखर है बुझिए, मूर्ख है ना ना लुजिए, मूर्ख है ना ना लुजिए।